सुप्रभात। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 वैशाख माह की 25वीं तिथि तदनुसार ईस्वी सन 2026 मई महीने की 15 तारीख। इस समय सुबह के 5:58 और 45 सेकंड हुए हैं। हम उपस्थित हैं आज की प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार थोड़ी ही देर में। इसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई,
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केन्द्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरूषों की

0: 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल के लिया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं खेती किसानी कार्यक्रम में जानकारी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के विषय में बता रही हैं अनीता तिर्की।
2: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी योजना है, क्योंकि कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियां भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 30% का योगदान देती है। कृषि सीधे तौर पर मिट्टी से जुड़ी है और किसानों की उन्नति सीधे मिट्टी पर निर्भर करती है। मिट्टी स्वास्थ्य तो देश स्वास्थ्य। उत्पादन बढ़ाने के लिए अंधाधुंध कीटनाशक, खरपतवार नाशक और उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग के कारण देश के अधिकांश भागों की मिट्टी में प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, द्वितीय पोषक तत्व जैसे सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरान, जिंक, कॉपर इत्यादि की मात्रा में निरंतर कमी आती जा रही है। इस स्थिति में मृदा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, साथ ही साथ उत्पादन और उत्पादकता दोनों घट रही है। तो मृदा जांच और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का लाभ किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में किसानों के लाभ हेतु राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। अपने देश में बहुत से अशिक्षित किसान भी हैं जो यह नहीं जानते हैं कि अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए किस तरह से फसलों का प्रबंधन होता है। किसान भाई मिट्टी के गुण और उसके प्रकार नहीं जानते हैं। वे अपने अनुभव से फसलों को बढ़ाना और फसलों का असफल होना जानते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते हैं कि अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए मृदा स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका एक ही नारा है, स्वास्थ्य धरा खेत हरा। जैसे अपने शरीर के लिए हम लोग डॉक्टर की सलाह मानते हैं, उसी तरह सारे नियम हमारी धरती माता के लिए भी लागू होते हैं। हम लोगों को मिट्टी की चिंता नहीं रहती है, जितना निकालना चाहिए हम निकाल लेते हैं। यूरिया डीएपी डालकर फसल ज़्यादा मिलती है लेते रहते हैं। मिट्टी की परवाह हम नहीं करते हैं, इसलिए आज समय की मांग है कि हम अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य की चिंता करें। 133 करोड़ आबादी का पेट हम तभी भर पाएंगे जब हम मिट्टी को स्वस्थ रख पाएंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सूचकों और उनसे जुड़ी शर्तों को प्रदर्शित करता है जो मिट्टी की जांच के परिणाम से प्राप्त होता है। इसमें मिट्टी जांच के अनुसार फसलों के लिए उर्वरकों के प्रयोग और मात्रा का संक्षिप्त ब्यौरा किसानों को उनकी भाषा में उपलब्ध कराया जाता है, ताकि भविष्य में किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता संबंधी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और फसल उत्पादन में कमी भी ना आए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान भाई हर तीसरे साल अपने खेत की मिट्टी जांच करके बनवाएं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आने से किसानों को कई तरह के लाभ मिलते हैं। इस योजना के जरिए किसानों को अपनी खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी मिलती है। इससे वे अपनी फसलों की सही ढंग से पोषक तत्वों का प्रबंधन भी कर सकेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर 3 वर्ष में दिया जाएगा, जिससे किसान अपने खेत की मिट्टी के बदलाव के बारे में भी जान सकेंगे। कार्ड के माध्यम से उर्वरक प्रबंधन से फसल उत्पादन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ कृषि लागत भी कम आएगी। इससे किसानों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और हमारे देश की उन्नति होगी।
1: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी हमारे श्रोता जानकारी ले रहे थे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के विषय में, बता रही थी अनीता तिर्की। और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं आज का चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का है।

0: आनंद ही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है, पर यह हमारा अंतिम गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है। जीवन आनंदमय हो और सतत आगे बढ़ता जाए, इसी कामना में तो सभी जिए जा रहे हैं। जीवन की ये यात्रा चार अलग अलग स्तरों से गुजरती है। हर स्तर पर विशिष्ट प्रेरणा और कार्यशैली की आवश्यकता होती है। हम प्रयास कर सकते हैं, पर सफलता ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। प्रथम स्तर है ईश्वर की पहचान। इस स्तर पर हमारा प्रयास अधिक से अधिक लोगों को, विशेष रूप से आध्यात्मिक साधकों को, इस शुभ कर्म पथ पर साथ लाने का होना चाहिए। दूसरा स्तर है सृष्टि से एकात्मता। इस स्तर पर चुनौतियां न केवल हमारी मानवीय और जैविक प्रवृत्तियों से आती हैं, बल्कि अजैविक शक्तियों से भी आती हैं। इस स्तर पर हमें सृष्टि की हर चीज के साथ एकात्मता का अनुभव करना होगा। हमें समझना होगा कि इस अस्तित्व का हर कण, हर परमाणु उसी परम सत्ता का अंश है। तीसरा स्तर है मानसिक अनुभव और सिद्धियां। इस स्तर पर विकास की गति तेज होती है और साधक कुछ सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ खतरा भी अधिक है। साधक को इन सिद्धियों का दुरुपयोग करने का प्रलोभन हो सकता है, इसलिए इस स्तर पर ईश्वर की कृपा और मजबूत मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इस स्तर पर परमात्मा परम गुरु बन जाते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। साधक को अनुभव करना होगा कि वो ईश्वर की इच्छा से ही इस धरती पर आया है और उनकी इच्छा की प्राप्ति के लिए ही प्रयास कर रहा है। चौथा स्तर है मन का एकाग्र होना। इस स्तर पर सभी लक्ष्य, पदार्थ, एहसास एक बिंदु में समाहित हो जाते हैं। मन एकाग्र हो जाता है और यही आनंद प्राप्ति का मार्ग है। इस स्तर पर साधक को पूर्ण आत्मज्ञान और आनंद की प्राप्ति होती है। ईश्वर में विश्वास, समर्पण और सही मार्गदर्शन के साथ हम सभी आनंद के इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का था। और अब आइए सुनते हैं आराधना कार्यक्रम में सबसे पहले देशभक्ति गीत संवेद स्वर में। गीत और संगीत कैप्टन राम सिंह का है।

श्रोताओं, आराधना कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत, और अब कुछ भगवान की बातें भी हम करते हैं और साथ में भक्ति गीत भी सुनते हैं। भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण है जो शुद्ध हृदय से उत्पन्न होती है और मन को भगवान के चरणों में स्थिर करती है। हम श्रवण भजन कीर्तन करते हैं और इसी के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं, और यही सच्ची भक्ति का मार्ग है।

भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं उस वक्त पहले मुझे खुद को जानना है, स्वयं को पहचानना है। अगर हम सब कुछ जान लेते हैं तो सच्चे ज्ञान का अनुभव हम कर लेते हैं, और जिसने स्वयं को नहीं जाना उसने सारी दुनिया को जानकर भी कुछ नहीं जाना। इसलिए हम जब भक्ति करते हैं तो भग करते हैं, और इसीलिए हम परमात्मा से जुड़ने के लिए भक्ति करते हैं।

इंसान को एक अनुशासित जीवन जीने के लिए परम शक्ति की भक्ति जरूरी है, और भक्ति एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास है जो व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ता है। यह हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है।

कहते हैं जो इंसान अस्त व्यस्त जीवन जीता है, समय और संयम का पालन नहीं करता, वो अंत में तनाव और अवसादग्रस्त होकर असफल जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति करके हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सहायक हो सकते हैं। भक्ति के माध्यम से हम अपने अंदर की शांति और संतुष्टि को बढ़ा सकते हैं और इस भवसागर से पार करने का रास्ता मिल सकता है हमें।

मनुष्य के जीवन की परीक्षा अनुशासन की मांग करती है। अपने लक्ष्य के अनुरूप दिनचर्या, अपने तन मन विचार भाव और व्यवहार का अनुशासन व्यक्ति को सांसारिक और आंतरिक दोनों रूपों में सशक्त बनाता है और अपने जीवन को गर्व से भरा हुआ रहने के लिए हमें अपने व्यवहार में विनम्रता जरूर रखनी चाहिए।

ईश्वर की भक्ति तभी पूर्ण होती है जब हम सेवा परमो धर्म के रास्ते में चलते हैं। जितना हो सके हमें दूसरों के प्रति प्रेम, दया और सेवा का भाव रखना चाहिए, तभी इस जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। और इसी के साथ आज का आराधना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रह पूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव गुरु गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे, घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झड़ते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सची है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं, मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है और अब आइए सुनते हैं आज रात तक प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। अभी से थोड़ी देर यानी 6:55 से आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। सुबह 7:05 का समय होता है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। इसके अंतर्गत आप जानकारी लेंगे गर्भधारण की तकनीक IVF, इसके बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर करुणा झा और इसके बारे में बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। सुबह सुरीली का कार्यक्रम होता है सुबह 7:15 पर। गांधी कथा हम आपको सुनवाएंगे 7:45 पर, संकलन गौरव शिखर राय का, प्रस्तुति नूतन प्रसाद की। लोक रंग हम आपको सुनवाएंगे संताली भाषा में, कलाकार होंगे मीतोन सोरेन और साथी। समय होगा 8:45। सुबह 9:00 रसरंजन कार्यक्रम आप सुनते हैं और 9:30 का समय होता है शास्त्रीय संगीत का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे राणा झा से राग तोड़ी में ख्याल गायन, विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है और बोल है अब मोरे राम विराम रे। उर्दू कार्यक्रम सुबह 10:00 आप सुनेंगे, इसके अंतर्गत चर्चा होगी सकाफती रंगारंगी और तरक्की की राहें और दहशतगर्दी समाज के लिए नासूर, कंपियर राजदास हुसैन और शगुप्ता बानो, प्रस्तुति प्रशांत गौरव की। जोहार रांची कार्यक्रम 10:30 से आप सुनेंगे, श्रोताओं के फरमाइशें गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनते हैं 11:30 से। महिलाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गृहलक्ष्मी दिन में 12:00 आज जानकारी होगी एक भेंट वार्ता में पीढ़ियों के बीच संवाद समय की जरूरत और अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी, प्रस्तुति है नूतन प्रसाद की। प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे उमंग दिन में 12:30 पर। अनुरंजनी कार्यक्रम में हम आपको आज सुनवाएंगे श्रीमती गिरिजा देवी से राग देव गांधार, समय होगा 1:20। सुबह 1:45 पर दिन में आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चंद गजलें भूपिंदर और मिताली सिंह की आवाजों में। नॉन स्टॉप अंताक्षरी और जय भारती कार्यक्रम होता है 2:30 पर। नॉन स्टॉप अंताक्षरी हम आपको सुनवाएंगे दिन में 3:00। रांची मेलोडीज का समय होगा 3:30 पर और 4:00 आप पुनः सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। सांझ सरगम 4:35 पर और युववाणी कार्यक्रम हम आपको सुनवाते हैं शाम 5:02 से। इसके अंतर्गत चर्चा होगी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज और प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की। श्रमिक लोक कार्यक्रम 5:30 से, इसके अंतर्गत चर्चा होगी सशक्त परिवार सुरक्षित बचपन, प्रस्तुति प्रशांत गौरव की। खेतीबारी कार्यक्रम शाम 6:02 से आप सुनेंगे, इसके अंतर्गत जानकारी होगी खरीफ दलहनी फसलों के लिए खेत की तैयारी और किस्मों का चुनाव, बताएंगे डॉक्टर नीरज कुमार, इनसे बातचीत करेंगे कृष्ण जीवन पौराणिक, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की। हमारी दुनिया कार्यक्रम में नागपुरी वार्ता सुनिए ग्रामीण युवा और स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की है और समय होगा 6:32 से। आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम आज आप सुनेंगे हो भाषा में 7:15 से, प्रस्तुति प्रदीप कुमार की। प्रायोजित कार्यक्रम सहिया आप सुनते हैं 7:45 पर। रजनीगंधा के अंतर्गत फिल्म संगीत का आनंद आप उठाइएगा रात्रि 8:00 और सुनहरी यादें कार्यक्रम में भी फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं रात्रि 10:00 से और 10:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का। इस अंतर्गत आप सुनेंगे सारंगी पर राग पूरिया कल्याण, कलाकार होंगे उस्ताद साबरी खान। ये थे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरू स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिन में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुओंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशू को ताउलो और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं अब आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आज जानकारी होगी गर्भधारण की तकनीक IVF के बारे में, बताएंगे डॉक्टर करुणा झा, इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार, जोहार। मित्रों, माँ बनना हर महिला का एक सपना होता है। समस्याओं को दूर कैसे करें, आजकल एक नई तकनीक ईजाद है जिसे हम कहते हैं IVF या कृत्रिम गर्भाधान या IUI। इसके सहारे भी इस पद्धति के द्वारा माँ बनने का सुख हमारी माताएं पा सकती हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि IVF तकनीक या IUI के द्वारा महिला माँ कैसे बन सकती है और क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं रांची के वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर करुणा झा। मैडम, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। माँ बनना हर स्त्री का सपना होता है, किसी कारणवश माँ नहीं बन पाती है तो कौन कौन सी समस्याएं आ जाती है और इस समस्याओं को कैसे इस तकनीक के द्वारा दूर किया जाता है?
2: नमस्कार। कि अगर कोई महिला माँ नहीं बन पाती है तो आपने सुना कि IVF एक तकनीक है, IUI भी एक तकनीक है जिसकी वजह से माँ बनने की सुविधा उसको मिल सकती है। इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी कभी कोई दंपति गर्भधारण करना चाहे तो उन लोगों की जांच होनी चाहिए, पति और पत्नी दोनों की, काफ़ी विस्तार में, ताकि पता चल सके कि कारण कहाँ है। क्योंकि हम हर एक महिला जिसे बच्चा नहीं ठहर पाता उसको सीधा हम लोग IVF नहीं करते। IVF एक ऐसी तकनीक है जो थोड़ी जटिल है और इसके साथ साथ में महंगी भी बहुत ज़्यादा है। चूँकि हमारे समाज में अधिकांश लोग इतने धनी नहीं होते कि वो आराम से 5 लाख रुपया निकाल सकें, तो ऐसी हालत में बेहतर होता है कि हम लोग बाकी और भी दूसरे तकनीक के बारे में सोचें जो सस्ती तकनीक है। तो अगर आप जांच करेंगे तो जांच करने पे पाएंगे कि तकरीबन 50-50% कारण दोनों ही पति और पत्नी में होता है। इसलिए ये ख्याल करना, ये सोचना कि स्त्री ही उसकी वजह होगी जिसकी वजह से बच्चा नहीं ठहर रहा है, ये बिल्कुल ही निहायत गलत बात है। पति का जांच हम लोग हमेशा पहले करते हैं, उसके धातु में बीज किस तरह के हैं, सही संख्या में है कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं, गतिमान है कि नहीं, इन सब चीज़ की जानकारी हम लोग लेते हैं। और अगर कहीं गड़बड़ी लगी तो हम लोग विस्तार में फिर उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पुरुष में हम लोगों को जांच करना पड़ता है धातु का, जबकि स्त्री में हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि क्या उसे उनकी उम्र कितनी है, क्या उनके हर एक महीने में अंडा बन रहा है, अंडाणु बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और क्या उसकी अंदर के पूरी योनि से लेकर के पूरी गर्भाशय और दोनों नलियां, फेलोपियन ट्यूब्स, वो पूरे खुले हुए हैं कि नहीं। क्योंकि जब तक ये तीन कारक सही ना हो तो बच्चा ठहरना संभव नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ होती है कि सारी चीज़ें ठीक हो इसके बावजूद उम्र, अगर महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा 40 के करीब पहुंच जाए तो वैसी हालत में भी उसके अंडाणुओं की शक्ति बहुत घट जाती है और मुश्किल से कुछ अंडे बन पाते हैं जिसमें फिर बच्चा ठहरना मुश्किल होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये तीनों कारण हम लोगों को ढूंढना पड़ता है और विस्तार में जांच करके देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी स्त्री की दोनों ही नली बंद हो, बिल्कुल बंद हो, जो खोली नहीं जा सके, तो उसको तो IVF करना ही पड़ेगा। और अगर किसी पुरुष के धातु में बीज नहीं है या बहुत कम है तो उनको भी, कम वालों को तो चलिए हम लोग IVF से बच्चा ठहरवा सकते हैं। वो सिंपल IVF नहीं होता है, IVF कहते हैं हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का अर्थ होता है जबकि हम लोग बच्चा ठहरने के प्रोसेस को, इस विधि को शरीर के बाहर हम लोग उसको करें, अपनाएं। यानी हम लोग लेबोरेटरी में स्त्री के शरीर से अंडे को निकालते हैं और उसको हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में डाल के रखते हैं, पति के धातु को लेते हैं, फिर उसकी खास किस्म की सफाई होती है, फिर उसको भी हम लोग टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और साथ मिलाते हैं। दोनों जब मिल जाए तो मिलने के बाद उसे भ्रूण बनता है। ये भ्रूण कम से कम 3-4 दिन 5 दिन का हो जाए तो फिर हम लोग महिला के यूट्रस में, बच्चेदानी के अंदर में उसको डाल देते हैं। ये IVF का तरीका हुआ। लेकिन जिनके बहुत कम धातु में बीज है, ऐसी हालत में बच्चा नहीं ठहर पाता है, तो हम लोग उनको ICSI करते हैं। इक्सी का अर्थ होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगर मान लीजिए किसी पुरुष के धातु में सिर्फ एक या दो बीज है लेकिन वो स्वस्थ है, तो हम लोग उस बीज को वहाँ से निकालते हैं और उसकी सफाई करके उसको सीधे एक सिरिंज में ले करके एक अंडे के अंदर में एक स्पर्म डाल देते हैं, उसको सीधे अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से वो भ्रूण बन जाता है। और ये जो भ्रूण बनता है फिर इसको हम लोग महिला के गर्भाशय में डाल के आगे बढ़ने का इंतज़ार करते हैं। ये भ्रूण धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते अगर स्वस्थ रहा, हर एक हालात अगर अनुकूल हुए, तो फिर वो शिशु बन जाता है। तो ये मैंने आपको बताया IVF और ICSI के बारे में। ये दोनों बहुत ही महंगे तकनीक हैं, खुद हैं तो बहुत अच्छे, क्योंकि जिनको दूसरी तरह से कोई बच्चा ठहरने की कहीं आशा ही ना हो और उन्हें बच्चा अपना बच्चा हो सके तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसमें खर्च करीब समझ मान लीजिए कि आपको चार पाँच लाख के आसपास पड़ जाता है। क्या आपको लगता है कि आप इतना खर्च कर सकते हैं? आप सभी शायद नहीं। घर बेचना पड़ेगा, सामान बेचना होगा, कर्ज लेना पड़ेगा। सो बेहतर है कि हम लोग इससे हल्के तकनीक की तरफ जाएं। जैसे कि मान लीजिए किसी स्त्री की नली पहला जांच है जिसके लिए, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टरोसेल्पिंगोग्राफी, यानी नीचे यूट्रस के अंदर हम लोग दवा डाल करके एक्सरे लेके देखते हैं कि नलियाँ ठीक हैं कि नहीं, दोनों नली ठीक है, एक नली ठीक है या बिल्कुल ही बंद है। होता क्या है कि ये जो टेस्ट हम करके देखते हैं जिसमें नली बंद आती है, बहुत वक्त ऐसा होता है कि उसमें नली बंद होती नहीं है, लेकिन इस तकनीक में गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से गलत रिपोर्ट भी आता है। तो हम लोग लेप्रोस्कोपी करके देखते हैं जिसमें पेट के अंदर एक पतली नली जाती है और उसकी वजह से वहाँ अंदर में हम सारी चीज़ें देख सकते हैं और फिर देखते हैं नली खुली है कि बंद है। और नली अक्सर उसमें हम देखते हैं 50% से ज़्यादा हालात में कि नली खुली होती है लेकिन रिपोर्ट में नेगेटिव लिख देते हैं, या नली खुली हुई आती है दिखती है लेकिन वो बंद होता है। इसीलिए हम लोग कोई भी सर्जरी करने के पहले, IVF जैसी तकनीक को अपनाने के पहले, हम लोग एक लेप्रोस्कोपी करके देख लेते हैं और दूसरा है हिस्टरोस्कोपी, जिसकी वजह से हम लोग यूट्रस के अंदर वो पतली नली डाल के उसके अंदरूनी हिस्से को देख लेते हैं जहाँ बच्चा ठहरेगा, जहाँ भ्रूण जाकर के आराम करेगा और वो बढ़ पाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अगर ठीक है तो बनाने का तरीका है जिसमें कि हम लोग उसको रिपेयर करते हैं, बनाते भी हैं, अंदरूनी गड़बड़ियों को भी हम लोग ठीक करते हैं, नलियों को भी हम लोग खोलते हैं। ये सब उतना महंगा नहीं होता जितना कि IVF होता है। तो ये सारी तकनीक को अपनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर नलियाँ खुल गईं, ठीक हो गई, तो ऐसी हालत में हम लोग पति का स्पर्म लेके, धातु ले, बीज लेके उसकी सफाई करके इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन IUI जैसे सस्ते विधि का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि पति का स्पर्म धातु ले लिया, उसकी सफाई कर ली स्पर्म की और सीधे उसको हम लोग बच्चेदानी के अंदर में, गर्भाशय के अंदर में डाल देते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं, जिसमें कि करीब समझिए कि 20-25% औरतें गर्भवती हो सकती हैं। तो ये सस्ता तरीका है, इसको ज़रूर करके अपनाना चाहिए IVF करने के पहले, अगर नली एक भी खुली हुई हो तो। आप 3-4 बार IUI कर रहे हैं फिर भी अगर उसको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तब फिर अब IVF करिए, IVF करना चाहिए। तो ये हालात जिसमें कि पत्नी की दोनों नलियां बंद हों या उम्र ज़्यादा हो गई हो, अगर किसी की उम्र 45 साल की है, शादी भी आजकल बहुत देर से हो रहा है, तो ऐसी हालत में जब शादी लेट हो तो फिर बच्चा ठहरने का प्रोसेस भी लेट हो जाता है। तो पत्नी चाह रही है कि उसे बच्चा ठहरे, दंपति को बच्चा चाहिए और आप देख रहे हैं कि इनकी ओवरी का फंक्शन काफ़ी रुक गया है, तो ऐसी हालात में हम लोगों को फिर IVF करना पड़ता है। तो IVF में होता ये है कि या तो स्त्री के कुछ बचे हुए अंडे हों तो आप उनको निकाल लीजिए बाहर और उससे पति के स्पर्म को मिला करके देखिए। अगर अंडा सही नहीं हालत में है, बीमार है, तो इस स्थिति में हम लोग किसी और स्त्री से जो स्वस्थ है और कम उम्र की है उनका अंडा भी हम लोग ले सकते हैं, जिसको डोनर्स एग बोलते हैं हम लोग। तो डोनर से हम लोग डोनेट करवाते हैं अंडा, और अगर पति का स्पर्म ठीक है तो पति का ही धातु का बीज, या नहीं तो डोनर का भी हम लोग बीज लेकर के उसको मिलाते हैं, मिला करके फिर उसे भ्रूण बनता है और उस भ्रूण को हम लोग महिला के गर्भाशय में

0: डालते हैं और IVF करके देखते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे तकनीक आ गए हैं जिसकी वजह से महिला गर्भवती हो सकती है। ये तरीका बहुत ही कारगर है। इसमें करीब करीब समझिए कि 50-60% महिलाएं गर्भवती होती हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में उसे गर्भ ठहर जाए, कभी कभी 3-4 बार भी करना पड़ता है। और चूंकि ये महंगा तरीका है, इसलिए इस चीज़ को हमेशा हम लोग ध्यान में रखते हैं कि हम लोग कोई कुछ हल्का और कुछ सस्ता तरीका ढूंढें और कोशिश करें ये जानने की कि आखिर महिला या पुरुष दोनों या तो दोनों में ही कहाँ गड़बड़ी है जिसकी वजह से बच्चा ठहर नहीं पा रहा है। तो इस जानकारी के साथ जब हम लोग कोशिश पूरी मेहनत करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि शायद हम लोग को 10-15% ही ऐसी महिलाएं जिनके बच्चा नहीं ठहर रहा है उनको IVF की ज़रूरत है, और अधिकांश औरतें बिना IVF के भी गर्भवती हो जाती हैं।
1: मैडम, इन सारी प्रक्रिया को जब हम अपनाते हैं तो किन किन सावधानियों को बरतने की आवश्यकता हो जाती है महिलाओं को, क्योंकि एक बहुत चुनौती भरा कार्य हो जाता है।
0: देखिए, सावधानी, अगर बच्चा ठहर जाता है अच्छी तरह से, एक बार वो बच्चा नॉर्मल ढंग से प्राकृतिक ढंग से ठहरे या IVF या IUI के द्वारा ठहरे, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको सुला के रखते हैं 9 महीने तक। वो अपना हल्का फुल्का काम घर का कर सकती हैं, सब कुछ करेंगी, लेकिन चूंकि बच्चा ये बहुत ही प्रेशस कीमती बेशकीमती बच्चा होता है, इसीलिए घर के लोग उनको ज़्यादा काम नहीं करने देते, सीढ़ी नहीं चढ़ने देते। ये बात ठीक है, हम लोग भी कहेंगे कि बहुत ज़्यादा काम वो ना करे, बहुत भारी भारी चीज़ें ना उठाए, सीढ़ियों पे बहुत दौड़ दौड़ के ना चढ़े, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चल भी सकती है, सीढ़ी भी चढ़ सकती है, हल्का फुल्का काम भी घर का कर सकती है। हाँ, इसके साथ दवाएं हम लोग थोड़ा ज़्यादा ज़रूर देते हैं, जो कि हम लोग आमतौर पर सबको नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हार्मोन के रूप में होती हैं और यूट्रस को सावधान रखती हैं, यूट्रस में, ताकि जो बच्चा उसके अंदर में बढ़ रहा है उसको वो स्वस्थ हो सके और समय से बढ़ सके। तो स्वस्थ बच्चा पाने के लिए कुछ दवाइयाँ तो हम लोग को देनी ही होती हैं, जो हम लोग आमतौर पर दूसरों को भी देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है
1: जी।
0: और कुछ ज़्यादा सावधानी की इससे ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये औरतें जो ज़्यादा उम्र की होती हैं, जिनको हम लोग IVF से बच्चा हम लोग करवाते हैं, उन लोगों को सिजेरियन की करने का जो उनका रेट है वो थोड़ा बढ़ जाता है।
1: डॉक्टर करुणा झा, आज के 9 दंपतियों को आप क्या कहेंगे?
0: 9 दंपतियों को तो मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उन्हें हड़बड़ाना नहीं है। जब पति पत्नी साथ रहते हैं, क्या उन्हें बच्चा चाहिए या नहीं, वो उसके लिए तैयार हैं कि नहीं मन से आर्थिक तौर पे, तो उसके बाद ही वो बच्चे की तैयारी करें। और बच्चा ऐसा मजाक में नहीं ठहरना चाहिए, हमेशा पहले आप प्लानिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद आप पति और पत्नी दोनों ही अपने स्वास्थ्य का पूरा चेकअप करवा लीजिए कि आपको कहीं कोई बीमारी ना हो। अगर किसी तरह की दिक्कत है कि मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या फिर आपका जो है सो शुगर बढ़ा हुआ है या कहीं उसके अलावा और भी कोई बीमारी है, तो सारी चीज़ों को पहले आप कंट्रोल कर लें, स्वास्थ्य को बिल्कुल सही हाल में आप रखें, उसके बाद फिर बच्चे की प्लानिंग करें। बच्चा हमेशा प्लान्ड होना चाहिए, अनप्लान्ड बच्चा नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको इस बात को समझना पड़ेगा। और ये जानकारी जो मैंने आपको दी कि आप लोग साथ रहें, अगर बच्चा चाहिए तो आप इसी तरह से साथ रहिए कि ओव्यूलेशन के समय आप लोग साथ हो सकें, ये काफ़ी ज़रूरी होता है।
1: तो मित्रों, बड़ी अच्छी जानकारी आज आप तक पहुंची। IVF क्या है, किस कारण से IVF करवानी पड़ती है, कृत्रिम गर्भाधान क्या है, IUI क्या है, और कैसे हम एक नई जीवन की शुरुआत करें, माँ बनने की राह में हम आगे बढ़ें। डॉक्टर करुणा झा, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में जानकारी ले रहे थे गर्भ धारण की टेक्निक IVF, बता रहे थे डॉक्टर करुणा झा, इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल, और ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है, अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों बाद।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, अब समय हो चला है एक प्यारे से कार्यक्रम का जिसका नाम है सुबह सुरीली। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का प्यार भरा नमस्कार करते हैं और स्वागत भी करते हैं। और चलिए कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे। तो हम सबसे पहले यही कहना चाहते हैं कि इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदलता। और हम चाहते हैं कि हर इंसान अपने स्वभाव में सबसे पहले मुस्कुराहट, प्यार और दया भर के रखे, उसके बाद देखिए आपके जीवन में कैसे बाहर आते हैं।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
2: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: श्रोताओं, हमारी जिंदगी में रोटी के बाद सबसे बड़ी कीमती चीज होती है संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे संस्कार। अगर हम अपने जिंदगी में शहद की तरह मिठास चाहते हैं तो हमें मधुमक्खियों की तरह एक साथ रहना होगा, चाहे वो दोस्ती हो या परिवार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, क्या किसी ने खूब ही कहा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से, अगर अपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। इसीलिए मिलजुल कर जीने का आनंद ही कुछ और है।

जिंदगी में कोई भी खाली नहीं है, भरे हुए हैं सभी, कोई घृणा से, कोई स्मृतियों से, कोई दुख से और कोई प्रेम से। जी हाँ, किसी की मुस्कुराहट का कारण तो बनिए, उसके बाद देखिए आपकी भी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी।

कहते हैं अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आएगा वो चमकेगा। इसीलिए जब आपके पास वक्त हो अपने साथी के लिए तो उसका साथ निभाइए और अपने जिंदगी को खुशगवार बनाइए।

0: लोग भले ही पहचानते नाम से हैं, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। इसलिए अपने स्वभाव में हमेशा मुस्कुराहट रखें। और इसी के साथ दीजिए इजाजत अपनी दोस्त उषा जायसवाल को। नमस्कार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं गांधी कथा, संकलन गौरव शिखर राय का, प्रस्तुति नूतन प्रसाद की।
1: आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी कथा। संकलन और प्रस्तुति है गौरव शिखर राय की, वह वाचन स्वर है अवनीश कुमार सिन्हा का।

0: मेरे।
1: हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। गांधी जी के ये वचन उनके जीवन में पूरी तरह झलकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वकालत के पेशे में रहते हुए उन्होंने सत्य का दामन कभी नहीं छोड़ा।

प्रस्तुत है दक्षिण अफ्रीका में वकालत के पेशे में रहते हुए गांधी जी द्वारा सत्य रक्षा के कुछ प्रसंग, स्वयं गांधी जी के शब्दों में उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग से। मेरे हर्ष की सीमा न रही। मुवक्किल और बड़े वकील प्रसन्न हुए और मेरी यह धारणा दृढ़ हो गई कि वकालत के धंधे में भी सत्य की रक्षा करते हुए काम हो सकते हैं। पर यह बात याद रखनी चाहिए कि धंधे के लिए किए हुए प्रत्येक वकालत के मूल में जो दोष विद्यमान है, उसे यह सत्य की रक्षा ढांक नहीं सकती। नेटाल और ट्रांसवाल की वकालत में यह भेद था कि नेटाल में एडवोकेट और एटर्नी का भेद होने पर भी दोनों सब अदालतों में समान रूप से वकालत कर सकते थे, जबकि ट्रांसवाल में बंबई जैसा भेद था। वहां एडवोकेट मुवक्किल के साथ का सारा व्यवहार एटर्नी के मार्फत ही कर सकता था। नेटाल में मैंने एडवोकेट की सानद ली थी, ट्रांसवाल में एटर्नी की। एडवोकेट के नाते में हिंदुस्तानियों के सीधे संपर्क में नहीं आ सकता था और दक्षिण अफ्रीका में वातावरण ऐसा नहीं था कि गोरे एटर्नी मुझे मुकदमे दें। ट्रांसवाल में वकालत करते हुए मजिस्ट्रेट के इजलास पर तो मैं बहुत बार जा सकता था। ऐसा करते हुए एक प्रसंग इस प्रकार आया, जब चलते मुकदमे के दौरान मैंने देखा कि मेरे मुवक्किल ने मुझे ठग लिया है। उसका मुकदमा झूठा था। वह कटहरे में खड़ा इस तरह कांप रहा था मानो अभी गिर पड़ेगा। अतः मैंने

मजिस्ट्रेट को मुवक्किल के विरुद्ध फैसला देने के लिए कहा और मैं बैठ गया। प्रतिपक्ष का वकील आश्चर्यचकित हो गया, मजिस्ट्रेट खुश हुआ। मुवक्किल को मैंने उलाहना दिया, वह जानते थे कि मैं झूठे मुकदमे नहीं लेता था। उसने यह बात स्वीकार की और मैं मानता हूं कि मैंने उनके खिलाफ फैसला मांगा, इसके लिए वह गुस्सा न हुआ। जो भी हो, पर मेरे इस बर्ताव का कोई बुरा प्रभाव मेरे धंधे पर नहीं पड़ा और अदालत में मेरा काम सरल हो गया। मैंने यह भी देखा कि सत्य की मेरी इस पूजा से वकील बंधुओं में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी और विचित्र परिस्थितियों के रहते हुए भी उनमें से कुछ की प्रीति मैं प्राप्त कर सका था। वकालत करते हुए मैंने एक ऐसी अदालत भी डाली थी कि अपना अज्ञान न मैंने मुवक्किलों से छिपाता था और न वकीलों से। जहां जहां मुझे कुछ सूझ न पड़ता, वहां वहां मैं मुवक्किल से दूसरे वकील के पास जाने को कहता, अथवा मुझे वकील करता तो मैं उससे कहता कि अपने से अधिक अनुभवी वकील की सलाह लेकर मैं उसका काम करूंगा। अपने इस शुद्ध व्यवहार के कारण मैं मुवक्किलों का अटूट प्रेम और विश्वास संपादन कर सका था। बड़े वकील के पास जाने की जो फीस देनी पड़ती, उसके पैसे भी वे प्रसन्नतापूर्वक देते थे। इस विश्वास और प्रेम का पूरा पूरा लाभ मुझे अपने सार्वजनिक काम में मिला। दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने का मेरा केवल लोक सेवा करना था। इस सेवा के लिए भी मुझे लोगों का विश्वास संपादन करने की आवश्यकता थी। उदार दिल के हिंदुस्तानियों में पैसे लेकर की गई वकालत को भी मेरी सेवा माना, और जब मैंने उन्हें अपने हक के लिए जेल के दुख सहने की सलाह दी, तब उनमें से बहुतों ने उस सलाह को ज्ञानपूर्वक स्वीकार करने की अपेक्षा मेरे प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम के कारण ही स्वीकार किया था। वकालत के ऐसे कई मीठे संस्मरण रहे हैं। सैकड़ों आदमी मुवक्किल न रहकर मित्र बन गए थे, वे सार्वजनिक सेवा में मेरे सच्चे साथी बन गए और मेरे कठोर जीवन को उन्होंने रसमय बना दिया था। पारसी रोस्तम जी एक समय में मेरे मुवक्किल और सार्वजनिक काम के साथी बने। मैंने उनका विश्वास इस हद तक प्राप्त कर लिया था कि अपनी निजी और घरेलू बातों में भी वे मेरी सलाह लेते थे और तदनुसार व्यवहार करते थे। इन साथी पर एक बार बड़ी विपत्ति आ पड़ी। अपने व्यापार की भी बहुत सी बातें वे मुझसे किया करते थे, लेकिन एक बात उन्होंने मुझसे छिपा कर रखी थी। पारसी रुस्तम जी चूंकि की चोरी किया करते थे। वे बंबई कलकत्ते से जो माल मंगवाते थे, उसी सिलसिले में यह चोरी चलती थी। सब अधिकारियों से उनका अच्छा मेल जोल था, इस कारण कोई उन पर शक करता ही न था। वे जो बीजक पेश करते, उसी पर चुंगी ले ली जाती थी। ऐसे भी अधिकारी रहे होंगे जो उनकी चोरी की ओर से आंखें मूंद लेते होंगे, पर अखा भगत की वाणी कभी मिथ्या हो सकती है? काचो पारो खाबो अन तेबो छे चोरनू धन, कच्चा पारा खाना और चोरी का धन खाना समान ही है। पारसी रुस्तम जी की चोरी पकड़ी गई। वे दौड़े दौड़े मेरे पास आए, आंखों में आंसू बह रहे थे और वे कह रहे थे, भाई मैंने आपसे कपट किया है, मेरा पाप आज प्रकट हो गया है, मैंने चुंगी की चोरी की है, अब मेरे भाग्य में तो जेल ही हो सकती है, मैं बर्बाद होने वाला हूं, इस आफत से आप ही मुझे बचा सकते हैं, मैंने आपसे कुछ छिपाया नहीं। पर यह सोचकर कि व्यापार की चोरी की बात आपसे क्या कहूं, मैंने यह चोरी छिपाई, अब मैं पछता रहा हूं। मैंने धीरज देकर कहा, मेरी रीति से तो आप परिचित ही हैं, छुड़ाना न छुड़ाना खुदा के हाथ है, अपराध स्वीकार करके छुड़ाया जा सके तो ही मैं छुड़ा सकता हूं। इन भले पारसी का चेहरा उतर गया। रुस्तम जी सेठ बोले, लेकिन आपके सामने मेरा अपराध स्वीकार कर लेना क्या काफी नहीं है? मैंने धीरे से जवाब

केस की जांच की और कहा, यह मामला जूरी के सामने जाएगा। यहां की जूरी हिंदुस्तानी को क्यों छोड़ने लगी, पर मैं आशा कभी न छोड़ूंगा। पारसी रुस्तम जी ने ही जवाब दिया, आपका आभार मानता हूं, किंतु इस मामले में मुझे मिस्टर गांधी की सलाह के अनुसार चलना है। वे इस प्रश्न को यूं निपटाकर हम रुस्तम जी सेठ के दुकान पर पहुंचे। मैंने उन्हें समझाया, इस मामले को अदालत में जाने लायक नहीं मानता। मुकदमा चलाना न चलाना चुंगी अधिकारियों के हाथ में है, उसे भी सरकार के मुख्य वकील की सलाह के अनुसार चलना पड़ेगा। मैं दोनों से मिलने को तैयार हूं, पर मुझे तो उनके सामने उस चोरी को भी स्वीकार करना पड़ेगा जिसे वे नहीं जानते। मैं सोचता हूं कि जो दंड वे ठहराए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत करके तो वे मान जाएंगे, पर कदाचित न माने तो आपको जेल के लिए तैयार रहना होगा। मेरा यह मत है कि लज्जा जेल जाने में नहीं बल्कि चोरी करने में है। लज्जा का काम तो हो चुका है, जेल जाना पड़े तो उसे प्रायश्चित समझिए। सच्चा प्रायश्चित तो भविष्य में फिर से कभी चुंगी की चोरी न करने की प्रतिज्ञा में है। मैं नहीं कह सकता कि रुस्तम जी सेठ इस सारी बातों को भली भांति समझ गए थे। वे बहादुर आदमी थे, पर इस बार हिम्मत हार गए थे। वे बोले, मैं आपसे कह चुका हूं कि मेरा सिर आपकी गोद में है, आपको जैसा करना हो वैसा कीजिए। मैंने इस मामले में विनय की अपनी सारी शक्ति लगा दी। मैं अधिकारी से मिला और सारी चोरी की बात उससे निर्भयता पूर्वक कह दी। सब बही खाते दिखा देने को कहा और पारसी रुस्तम जी के पश्चाताप की बात भी कही। अधिकारी ने कहा, मैं इस बूढ़े पारसी को चाहता हूं, उसने मूर्खता की है, पर मेरा धर्म तो आप जानते हैं, बड़े वकील जैसा कहेंगे वैसा मुझे करना होगा। अतएव अपनी समझाने की शक्ति का उपयोग आपको उनके सामने करना होगा। मैंने कहा, पारसी रुस्तम जी को अदालत में घसीटने पर जोर न दिया जाए तो मुझे संतोष हो जाएगा। इस अधिकारी से अभयदान प्राप्त करके मैंने सरकारी वकील से पत्र व्यवहार शुरू किया, उनसे मिला। मुझे कहना चाहिए कि मेरी सत्य प्रियता उनके ध्यान में आ गई। मैं उनके सामने यह सिद्ध कर सका कि मैं उनसे कुछ छिपा नहीं रहा हूं। इस मामले में या दूसरे किसी मामले में उनके संपर्क में आने पर उन्होंने मुझे प्रमाण पत्र दिया था। मैं देखता हूं कि आप न मैं तो जवाब लेने वाले ही नहीं हैं। रुस्तम जी पर मुकदमा नहीं चला, उनके द्वारा कबूल की गई चुंगी की चोरी के दूने रुपए लेकर मुकदमा उठा लेने का हुक्म जारी हुआ। रुस्तम जी ने अपनी चुंगी की चोरी की कहानी लिखकर शीशे में मढ़वा ली और उसे अपने दफ्तर में टांग कर अपने वारिसों और साथी व्यापारियों को चेतावनी दी।

0: 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए, तथापि दक्षिण अफ्रीका में वकालत के समय के उनके संस्मरण तो अनेक थे, पर ये कुछ संस्मरण सत्य में उनके विश्वास को जीवन में कार्य क्षेत्र में कायम रखने का उत्कृष्ट उदाहरण है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गांधी कथा, संकलन गौरव शिखर राय की और प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी। आकाशवाणी का ये राजी केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात। थोड़ी ही देर में और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। इसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के

0: निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से LNG तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रूपये प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रूपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रूपये और डीजल 93.14 रूपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रूपये और डीजल 95.13 रूपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रूपये और डीजल का मूल्य 95.35 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
3: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी

0: कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
5: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
7: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहां कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रहा।
5: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। यह आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशू को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरूआत।
5: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशू में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ईडी अरेस्ट कोलकाता पुलिस डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास फॉर रनिंग एन एक्सटोर्शन सिंडिकेट. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52kg category in Sandor World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
10: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE saw sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shandi Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a decarbonizing world. Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
9: On the occasion of the Prime Minister's eighth visit to the Emirates, Indian Ambassador to the UAE, Deepak Mittal, said the visit of the Prime Minister is highly opportune.
11: UAE has emerged as a very close third largest trade partner for India. Our bilateral trade has crossed $100 billion after we have signed Comprehensive Economic Partnership Agreement in 2022. The visit of the Prime Minister is very opportune, happening at a time when the region is going through some unprecedented times. Prime Minister has been in touch with the UAE leadership. So this is a moment when it will help and enable to express our solidarity.
9: Meanwhile, UAE's Minister of State for International Cooperation, Reem Binte Ibrahim Al-Hashmi, has said the government is looking forward to the occasion with great excitement. She said that Mr. Modi is a key figure of friendship, of long-standing partnership and a true treasure to the leadership and to the people of the UAE. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi, the Prime Minister said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. Earlier in his opening remarks at the BRICS foreign ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
12: There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
9: Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira

0: India Meteorological Department has forecast heavy rainfall with thunderstorms over Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Mahe and South Interior Karnataka today. In Kerala, Met Department has issued a yellow alert indicating isolated heavy rain in 6 of the 14 districts. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Saira. Papers have widely noticed Delhi Chief Minister Rekha Gupta's push for using the metro after PM's appeal. The Pioneer writes, Delhi pushes for metro, work from home to cut fuel use. Congress Kerala suspense ends, Satheesan pips Venugopalan CM race, writes the Tribune. India voices concerns over West Asia crisis at BRICS meeting, writes the Statesman, while the Tribune writes, Indian vessels sunk off Oman as Delhi hosts Iran minister for BRICS meeting. Trump-Xi hold talks in biggest summit ever, writes the Asian Age. All newspapers have carried pictures of a man flung into air 50 feet above ground after heavy rains and storm hit Uttar Pradesh. The Statesman writes, thunderstorms, hailstorms, pummel UP, at least 104 dead. The Hindu, in its editorial titled Cooling Doctrine, writes that access to safe indoor temperatures must be a public health entitlement. What India needs is something larger and more ambitious, a national cooling doctrine, a scalable framework that treats sustained access to safe indoor temperatures as a public health entitlement to be guaranteed. And finally, the Tribune writes about 61-year-old Narinder Kaur, who scored 77% in the Punjab School Education Board Class 10 open school examination after she was encouraged by her sons. The newspaper writes, off studies for 45 years, Punjab woman scores 77%. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold in women's 52 kg category in Santa World Cup in Macau. That's all in Morning News. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में ट्रेजरी निकासी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज की ईसीआईआर। रांची, हजारीबाग और बोकारो सहित 6 जिलों में हुई है गड़बड़ी। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भ्रष्टाचार और जन समस्याओं के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय। आज सभी प्रखंडों में एक दिवसीय धरना। रांची डीसी ने तेल कंपनियों के साथ की समीक्षा बैठक। पेट्रोल पंपों पर सुचारू आपूर्ति बहाल रखने के निर्देश। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कहा, राज्य में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर कल रांची में शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन। विख्यात केडिया बंधु और श्रीजीत चटर्जी बिखेरेंगे सुरों का जादू। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग की ट्रॉफी का अनावरण। IPL की तर्ज पर 20 जून से शुरू होगा रोमांच का नया अध्याय। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में वेतन मद में हुई 40 करोड़ रुपए की फर्जी ट्रेजरी निकासी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने ईसीआईआर दर्ज की है। रांची, हजारीबाग और बोकारो ट्रेजरी से जुड़े इस घोटाले की जांच से संदिग्ध अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट के बाद राज्य के 6 जिलों में ये गड़बड़ी उजागर हुई है। प्रदेश भाजपा कोर कमेटी ने प्रदेश कार्यालय में बैठक कर राज्य सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई है। प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने बताया कि सरकार सभी मोर्चों पर विफल है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर आज से सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। यह कार्यक्रम 20 मई तक चलेगा।
3: राज्य सरकार की जो कार्य प्रणाली है, जिस तरह से भ्रष्टाचार नीचे तक ब्लॉक अंचल तक फैला हुआ है, उसको लेकर के जो आंदोलन का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने

0: अभी तय किया है, जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर के राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन या फिर अभी पानी और बिजली को लेकर के जिलों में प्रदर्शन, उसको लेकर के एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम है।
1: दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106 रुपए 68 पैसे और डीजल 93 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपए 74 पैसे और डीजल 95 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 77 पैसे और डीजल का मूल्य 95 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। रांची में पेट्रोल डीजल की सुचारू आपूर्ति के लिए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने तेल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने बताया कि घबराहट में अधिक ईंधन खरीदने से पंपों पर अस्थायी दबाव बना है। प्रशासन ने कंपनियों को निर्बाध आपूर्ति का निर्देश देते हुए जनता से केवल जरूरत भर ईंधन खरीदने की अपील की है। राज्य में ईंधन संकट की अफवाहों के बीच पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने लोगों से संयम की अपील की है। धनबाद में एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने स्पष्ट किया कि राज्य में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता और सामान्य आपूर्ति है। तेल कंपनियों ने पिछले साल से अधिक ईंधन दिया है। जनता घबराहट में आकर अतिरिक्त खरीदारी न करें।
2: पेट्रोलियम पदार्थों की कोई किल्लत नहीं है। झारखंड में किसी भी प्रकार से डीजल और पेट्रोल का कोई कमी नहीं है। कंपनियां लगातार सभी पंपों को डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति कर रही है। पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखें माहवारी के हिसाब से, तो हम पिछले वर्ष से ज़्यादा इस साल तेल की आपूर्ति कर रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने खूंटी में राज्य के पहले लाह बीज सेंटर की शुरुआत की। अब स्थानीय किसानों को यहीं से उत्तम किस्म की बीहन उपलब्ध होगी। मंत्री ने किसानों से संवाद कर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न आपदाओं में मिलने वाली मुआवजा राशि का लाभ उठाने की अपील की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में वैश्विक संकट और भारतीय युवा विषय पर एक समूह चर्चा आयोजित की गई। डॉ. अमिता कुमारी के मार्गदर्शन में शिक्षा शास्त्र विभाग के विद्यार्थियों ने वर्तमान आर्थिक चुनौतियों पर विचार साझा किए। विमर्श में युवाओं ने देश हित में सामाजिक जागरूकता, संसाधनों के संरक्षण और संयम बरतने पर बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने खजूरी बिंघमगंज मार्ग के फ्लाईओवर को पारंपरिक सोहराई पेंटिंग से सजाया है। दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियों में झारखंड की संस्कृति और प्रकृति की झलक दिखती है। NHAI का उद्देश्य आधुनिक राजमार्गों के निर्माण के साथ स्थानीय कला और कलाकारों को बढ़ावा देना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस के 1191 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयन बिना परीक्षा के 10वीं और ITI के अंकों की मेरिट पर होगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 11 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी रांची द्वारा कल शाम 4 बजे दूरदर्शन केंद्र में शास्त्रीय संगीत संध्या रागांजलि का आयोजन होगा। समारोह में देश के ख्याति प्राप्त कलाकार केडिया बंधु, पंडित मोर मुकुट केडिया, पंडित मनोज कुमार केडिया और श्रीजीत चटर्जी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसका उद्देश्य समृद्ध संगीत विरासत को बढ़ावा देना है। राज्य में 19 मई तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने आज और कल रांची, धनबाद, बोकारो समेत कई जिलों में तेज हवा, बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। एशिया कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चीन से लौटी रांची की फुटबॉलर दिव्यानी लिंडा का रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब के बच्चों और खेल प्रेमियों ने तिरंगा लहराकर उनका अभिनंदन किया। दिव्यानी ने सीमित संसाधनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर राज्य का नाम रोशन किया है। इस मौके पर दिव्यानी ने कहा कि बड़े देशों के खिलाफ खेलकर काफी अच्छा लगा।
3: अच्छा रहा, अच्छा लगा खेल के, उतना बड़ा बड़ा टीम से खेल के अच्छा लगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया, लिबोनन और चाइना, हम लोग अच्छा खेले और बहुत कम गोल खाए हम लोग उन लोग के साथ। उन लोग का गेम से लग रहा था कि हम लोग को बहुत ज़्यादा गोल मारेंगे, पर हम लोग बहुत कम खाए थे, तो अच्छा हम लोग का प्रदर्शन था।
1: रांची में झारखंड T20 क्रिकेट लीग की विजेता ट्रॉफी का अनावरण किया गया। IPL की तर्ज पर यह टूर्नामेंट 20 जून से आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और स्टार क्रिकेटर ईशान किशन के साथ JSCA अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव मौजूद रहे। मौके पर ईशान किशन ने कहा कि इस लीग से राज्य की खेल प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिलेगा।
4: अच्छी टीम्स होंगी, अच्छा क्रिकेट होगा। नॉट श्योर कि पहले साल ही बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर भी निकल जाए, बट आई एम वेरी श्योर द लुकिंग एट द टैलेंट विच जो झारखंड टीम के पास है, 100% बहुत अच्छे प्लेयर्स आगे आएंगे। और जैसे अभी आप देख रहे होंगे कितने सारे प्लेयर्स अब धीरे धीरे हमारे टीम से बाहर जा रहे हैं, IPL टीम्स में जा रहे हैं, इंडियन सेलेक्टर्स को परेशान कर रहे हैं कि हमें भी लो। सो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है।
1: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने SIR के तीसरे चरण की घोषणा की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड में 30 जून से SIR, 2,64,00,000 वोटरों की होगी जांच। प्रभात खबर लिखता है, हॉकी खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार की शिकायत, कोच सुधीर हटे। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, फर्जी निकासी की जांच ईडी करेगी, ECIR दर्ज। दैनिक जागरण के शब्द हैं, दोषी पाए गए बिजली निगम के 6 पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में ट्रेजरी निकासी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज की ECIR। रांची, हजारीबाग और बोकारो सहित 6 जिलों में हुई है गड़बड़ी। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भ्रष्टाचार और जन समस्याओं के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय। आज सभी प्रखंडों में एक दिवसीय धरना। रांची DC ने तेल कंपनियों के साथ की समीक्षा बैठक। पेट्रोल पंपों पर सुचारू आपूर्ति बहाल रखने के निर्देश। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कहा, राज्य में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर कल रांची में शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन। विख्यात केडिया बंधु और श्रीजीत चटर्जी बिखेरेंगे सुरों का जादू। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग की ट्रॉफी का अनावरण। IPL की तर्ज पर 20 जून से शुरू होगा रोमांच का नया अध्याय। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं। और श्रोताओं, आज आपके साथ है आपकी दोस्त उषा जायसवाल। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, चलिए आगे आपको सुनवाते हैं अगला कार्यक्रम, संताली लोकगीत कार्यक्रम लोक रंग के तहत। आज के कलाकार हैं मीतोन सोरेन और साथी। इसके पहले ये संदेश।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: मीतोन सोरेन और साथियों की आवाज में आप सुन रहे हैं संताली लोकगीत।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु एनसीपीसीआर द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे संताली लोकगीत, कलाकार थे मितोन सोरेन और साथी, और ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम रस रंजन। इसे लेकर हाजिर है आपके दोस्त उषा जायसवाल। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, चलिए आपको हम सुनवाते हैं ये प्यारा सा नगमा रसरंजन कार्यक्रम में।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: रस रंजन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है। आइए हम आपको सुनवाते हैं सिलसिला फिल्म का ये प्यारा सा नगमा। इसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, गीत लिखा है हसन कमाल ने और संगीत की धुन बनाई है शिव हरि ने।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं, दिल तो पागल है। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है उत्तम सिंह ने।

दिलवाले। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजों में। संगीत है प्रीतम का और गीत के बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रसरंजन कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत आइए सुनते हैं आशा भोसले और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था और धुन बनाई थी जतिन ललित ने। आवाजें थी आशा भोसले और अभिजीत भट्टाचार्य की। और इसी के साथ आज का रस रंजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं अगला कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे राग तोड़ी में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है। बोल है अब मोरे राम विराम रे। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। बोल है अल्लाह जाने। गायक कलाकार हैं राणा झा। तबले पर संगत दे रहे हैं कौशिक दास और हारमोनियम पर संचाली नाग। आइए सुनते हैं ये शास्त्रीय संगीत।

श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुन रहे थे राणा झा से राग तोड़ी में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध थी और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि 10 बजे से आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम में चर्चा सकाफती रंगारंगी और तरक्की की राहें, दहशतगर्दी समाज के लिए एक नासूर, वहमी गुफ्तगू और खादारी और अकेलियत तबला की तरक्की। इसके मकाला भी आप सुनेंगे, दहशतगर्दी किसी मसले का हल नहीं, और मकाला निकार होंगे डॉक्टर गालिब नश्तर, प्रस्तुति प्रशांत गौरव की। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे जोहार रांची कार्यक्रम, और 11 बजे आप सुनिएगा स्वर यात्रा के 90 वर्ष। इसमें नीरज नाथ पाठक, पूर्व समाचार प्रभारी और वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत करेंगे गौरव कुमार। ये कार्यक्रम आप सुनिएगा 11 बजे से। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उर्दू कार्यक्रम, प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की और स्वर है राजदा हुसैन और शगुप्ता बानू की।

0: तरक्की की राहें।
1: सही कहा आपने। हर साल 21 मई को दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है ताकि मुख्तलिफ तहजीबों, जबानों, रस्म व रिवाज और सकाफतों के दरमियान मोहब्बत, भाईचारा और बाहिमी समझ बूझ को फरोग दिया जा सके।
0: सामईन, दुनिया एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है। जिस तरह गुलदस्ते में अलग अलग रंगों के फूल उसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं, उसी तरह दुनिया में मौजूद अलग अलग संस्कृतियां इंसानियत को खूबसूरत बनाती है और हमारा मुल्क इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ अलग अलग मजहब, भाषा, पहनावा, खान पान और परंपराएं होने के बावजूद एकता में अनेकता की मिसाल देखने को मिलती है।
1: यही है कि सकाफती रंगे हमें ये सबक देती है कि हर इंसान की शनाख्त और उसकी तहजीब का एहतराम किया जाए। जब लोग एक दूसरे की सकाफत को समझते हैं तो नफरतें कम और मोहब्बतें बढ़ती हैं। आज सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने दुनिया को करीब कर दिया है, जिससे मुख्तलिफ तहजीबों को जानने और समझने के मौके बढ़े हैं।
0: बिल्कुल, तरक्की सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नाम नहीं है बल्कि इंसानी रिश्तों की मजबूती, इल्म, अमन और बराबरी भी तरक्की का हिस्सा है। अगर समाज में नफरत और भेदभाव होगा तो तरक्की रुक जाएगी, इसलिए सांस्कृतिक विविधता को अपनाना वक्त की जरूरत है।
1: यही नहीं, स्कूलों, कॉलेजों और समाजी इदारों में ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद होने चाहिए जहां मुख्तलिफ सकाफतों को पेश किया जा सके। बच्चों को कम उम्र से ही भाईचारे, रवादारी और एहतराम का दर्स देना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है।
0: बिल्कुल, और जब हम समाज की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, तो एक और बहुत ही अहम दिन 21 मई को ही आता है शगुफ्ता, और वो है नेशनल एंटी टेररिज्म डे, यानी कि हम कैसे दहशतगर्दी से अपनी इस नेशन को बचाकर रख सकते हैं।
1: हरासदा, आप सही कह रही हैं, दहशतगर्दी माशरे के लिए एक नासूर की तरह है और आज हमारा मौजू भी है।
0: बिल्कुल, तो हर साल 21 मई को भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को आतंकवाद के खतरों से आगाह करना और अमन और इंसानियत का पैगाम देना है।
1: राजदा, दहशतगर्दी इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सिर्फ इंसानों की जान नहीं लेती बल्कि माशरे में खौफ, नफरत और बेचैनी पैदा करती है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, क्योंकि हर मजहब अमन, मोहब्बत और भाईचारे की तालीम देता है।
0: जब कहीं धमाका होता है या हिंसा फैलती है तो उसका असर सिर्फ एक परिवार पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। बच्चे डर जाते हैं, नौजवान गुमराह हो जाते हैं और देश की तरक्की रुक जाती है। आतंकवाद यानी कि दहशतगर्दी समाज को अंदर से खोखला और कमजोर कर देती है।
1: इसीलिए राजदा, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों और नौजवानों को सही तालीम और अच्छे इखलाक दें, उन्हें मोहब्बत, रवादारी और इंसानियत का सबक पढ़ाएं। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों और नफरत अंगेज बातों से बचें, क्योंकि गलत मालूमात बाज औकात लोगों को तशद्दुद की राह पर ले जाती हैं। हुकूमत, पॉलिसी और सिक्योरिटी इदारे अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, लेकिन माशरे की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। अगर हमें कोई भी शक होता है, ऐसी सरगर्मी नजर आती है, तो फौरन इंतजामिया यानी के जो गवर्नमेंट है, जो इस चीज को देख रही है, उनको हमें इत्तला देनी चाहिए। साथ ही हमें आपसी भाईचारे को भी मजबूत बनाना होगा।
0: बिल्कुल सामईन, अमन से बड़ी कोई दौलत नहीं, एक शांतिपूर्ण समाज ही तरक्की कर सकता है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि नफरत नहीं मोहब्बत फैलाएंगे, हिंसा नहीं इंसानियत को अपनाएंगे।
1: क्या बात कही राजदा आपने, हमें इस बात को फॉलो करना होगा।
0: बिल्कुल,
1: और इसी के साथ राजदा, क्यों ना हम अपने सामईन को सुनाते हैं ये मकाला, दहशतगर्दी किसी मसले का हल नहीं। मकाला निगार है डॉक्टर गालिब नश्तर।
2: दहशतगर्दी किसी मसले का हल नहीं है। सामईन, मैं आपको बताता चलूं कि दहशतगर्दी की कोई ऐसी तारीफ करना कि जो हर लिहाज से मुकम्मल और हर मौका पर 100% दुरुस्त हो, अगर नामुमकिन नहीं तो कम अज कम मुश्किल ज़रूर है। अगर लोगवी माने की बात करें तो इसके माना डर, खौफ और ख़तरा के हैं। इस्तिलाही मानों में ये वसी कैनवस में फैला हुआ है। सामने की एक तारीफ तो ये है कि समाज में जिस अमल से आवाम के अंदर खौफ का माहौल पैदा हो, دہشت کہلاتا ہے. اس کی کئی شکلیں ہیں، انفرادی دہشت گردی، اجتماعی دہشت گردی، مذہبی دہشت گردی، نظریاتی دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی، معاشی دہشت گردی وغیرہ. مجموعی طور پر اس کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ اپنے مکروہ مقاصد کے لیے خواہ وہ اغوا برائے تاوان کی صورت میں ہو

0: साथ मिलता भी है तो मुकदमात सालों साल चलते रहते हैं। इसलिए मिसाल मशहूर है कि अगर दादा अपनी जायदाद के हुसूल के लिए मुकदमा करता है तो उस मुकदमे का फैसला पोते के दौर में जाकर होता है। इंतहाई माजरत के साथ वकील उन मुकदमों को अपनी ज्यादा से ज्यादा फीस के लालच में या मुखालिफ पार्टी की ख्वाहिश के पेश नज़र मुकदमात को लंबा खींचते हैं और इतने ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं कि ये मुकदमात सालों चलते रहते हैं और तारीख पर तारीख मिलती रहती है। नंबर 6, फिल्में। दुनिया में इस किस्म के फिल्में बनाई जाती हैं जिनकी वजह से दहशतगर्दी को दुनिया में फ़रोग मिलता है। उन फिल्मों के मनाजिर इतने खौफनाक होते हैं कि आम इंसान पर खौफ और दहशत तारी हो जाती है। कत्लो गारतगिरी और तबाही व बर्बादी के मनाजिर उन फिल्मों में इतने तसलसल से दिखाए जाते हैं कि इंसानी जिस्म में सनसनी दौड़ती रहती है। जराइम, मंशियात, दहशतगर्दी, जंगो जदाल, जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों और गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तबाही, असलाह के बेदरीक इस्तेमाल को फिल्मों में बहुत ही खौफनाक और दिल दहलाने वाले अंदाज में पेश किया जाता है, जिसका असर न सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों पर पड़ता है बल्कि छोटी उम्र के कच्चे जहन फिल्मों के उन मौजूआत और मनाजिर का इंतहाई मनफी असर लेते हैं और खुद भी उन फिल्मों के किरदार की तरह दुनिया में असलहा उठाकर दहशतगर्दी करते हैं। मजहबी इंतहा पसंदी। पूरी दुनिया में मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से भी दहशतगर्दी को फरोग मिला है, जबकि इसका कोई जवाज नहीं है। किसी भी मजहब में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं है बल्कि तमाम मजाहिब ने इस पर सख्त तनकीद की है। सवाल ये है कि इस मसले का हल क्या है? इस मसले का अभी तक एक ही हल सामने आया है कि मंदरजा बाला निकात पर हमें और हुकूमत को एक साथ मिलकर गौर करना चाहिए और कौम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत के साथ साथ कदम मिलाकर तआवुन करना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी किसी भी मसले का हल नहीं है।
1: तो सामईन, अभी आप सुन रहे थे मकाला दहशतगर्दी किसी मसले का हल नहीं। मकाला निगार थे डॉक्टर गालिब नश्तर। और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं सामईन बाहमी गुफ्तगू और रवादारी अमने मुआशरे की बुनियाद यानी आपसी बातचीत और सहनशीलता की शांतिपूर्ण समाज की नींव है।
2: क्या बात कही आपने राजदा। हर साल 16 मई को अमन के साथ मिलजुल कर रहने का आलमी दिन के तौर पे हम इसे मनाते हैं। इस दिन का मकसद ये पैगाम देना है कि मुख्तलिफ मजाहब नजरियात और सकाफतों के बावजूद हम एक दूसरे के साथ अमन और मोहब्बत से रह सकते हैं।
1: बिल्कुल शगुफ्ता, आज देखो ना, दुनिया में कई परेशानियां सिर्फ इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि लोग एक दूसरे की बात ही सुनना नहीं चाहते। छोटी छोटी गलत फहमियाँ बड़े झगड़ों का रूप ले लेती है। अगर हम बातचीत का रास्ता अपनाएंगे तो कई परेशानियाँ आसानी से हल हो सकती है।
2: रवादारी और बर्दाश्त एक बहुत बड़ी नेमत है राजदा। हमें ये बात सिखाती है कि अगर किसी की सोच हमसे मुख्तलिफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। हमें दूसरों के ख्यालात और जज्बात का भी एहतराम करना चाहिए।
1: बिल्कुल, घर हो, स्कूल हो या फिर समाज, हर जगह अच्छी बातचीत का माहौल होना चाहिए। जब परिवार में प्यार और समझदारी होगी तब बच्चे भी अच्छे संस्कार सीखेंगे। अगर समाज में लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो अमन कायम रहेगा।
2: हाँ, और सोशल मीडिया के इस दौर में हमें अपनी जुबान और रवैयों का खास ख्याल रखना होगा राजदा। नफरत अंगेज बातें माशरे को तकसीम करती हैं, बांटती हैं, इसलिए हमें मुसबत सोच और मोहब्बत भरे अंदाज को अपनाना चाहिए।
1: बिल्कुल शगुफ्ता, सोशल मीडिया आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सामईन, अमन सिर्फ लड़ाई ना होने का नाम नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ इज्जत और मोहब्बत से रहने का नाम है। अगर हम बाहमी गुफ्तगू और सहनशीलता को अपनाएंगे तो हमारा समाज मजबूत और खुशहाल बनेगा।
2: तो क्यों ना आज हम ये अहद करें कि नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत की जुबान बोलेंगे और अपने माशरे को अमन का गहवारा बनाएंगे।
1: और इसी के साथ ही शगुफ्ता, अब हम बात करते हैं अक्लियती तलबा की तरक्की वजीफा स्कीम का किरदार। तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन समाज में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गरीबी और पैसों की परेशानियों की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। खास तौर पर अक्लियती तबकों के बच्चों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वजीफा यानी स्कॉलरशिप स्कीम उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है।
2: اور ہماری گورنمنٹ کی مختلف اسکالرشپ اسکیمیں غریب اور محنتی طلبہ کو آگے بڑھانے کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں رازدہ. ان اسکیموں کا مقصد صرف مالی مدد دینا نہیں بلکہ تعلیم کے ذریعے معاشرے کو مضبوط بنانا بھی ہے. جب کسی طالب علم کو وظیفہ ملتا ہے تو اس کی فیس، کتابیں، یونیفارم اور دیگر ضروریات پوری ہو جاتی ہے. اس سے طلبہ اور ان کے والدین کا حوصلہ بڑھتا ہے. بہت سے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اسکالرشپ کی مدد سے ڈاکٹر، انجینئر، استاد اور افسر بننے کا خواب پورا کیا ہے.
1: لیکن افسوس کی بات ہے شگفتہ کہ آج بھی بہت سے لوگ ان اسکیموں کی جانکاری سے محروم ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اسکول، کالج اور سماج کے ذمہ دار لوگ جاگرکتا پھیلائیں، بچوں کو آن لائن آویدن کرنے اور ضروری دستاویز تیار کرنے میں مدد کی جائے.
2: ہاں، اگر ایسا کریں گے تو ان کی بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی اور سرکار کی یہ جو اسکیمیں ہیں وہ جن جن تک پہنچ جائیں گی. لڑکیوں کی تعلیم پر بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے رازدہ، کیونکہ اگر ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو پورا خاندان تعلیم یافتہ بنتا ہے. اس لیے ہمیں بیٹیوں کو پڑھانے اور آگے بڑھانے کے لیے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے.
1: تعلیم وہ طاقت ہے شگفتہ جو سماج کی تقدیر بدل سکتی ہے.
2: بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ.
1: وظیفہ اسکیم غریب اور ضرورت مند چھاتروں کے سپنوں کو نئی اڑان دیتی ہے. آئیے ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی بچہ صرف پیسوں کی کمی کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے.
2: کیا بات کہی رازدہ، آج اتنی تسلی والی اور سکون والی موضوع پہ ہم نے باتیں کی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر واقعی میں ہم ان ساری چیزوں پر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرہ کے روپ میں سامنے آئے گا.
1: بالکل، اور ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ دہشت گردی کی بات ہو، چاہے وہ تعلیم کی بات ہو. اگر ہم ایک ساتھ اکٹھا ہو کر ان تمام چیزوں پر کام کریں گے نا تو ترقی ہونی تو لازمی ہے.
2: ہاں، اور رازدہ ہم کچھ مس کر رہے ہیں.
1: او ہو، جیسا کہ تم نے کہا نا شگفتہ کہ آج ہم اتنی خوبصورت موضوعات پر بات چیت کیے تو واقعی میں میرے دماغ سے تو نکل ہی گیا کہ ہم کچھ مس کر رہے ہیں.
2: اچھا، تو بھائی نغمہ کے بنا ہم کیسے رہ سکتے ہیں.
1: بالکل بالکل، تو چلو اب دیر نہیں کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو سناتے ہیں یہ خوبصورت سا نغمہ.

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम, इसके अंतर्गत चर्चा भी आप सुन रहे थे और स्वर था राजदा हुसैन और शक गुप्ता बानो की, प्रस्तुति प्रशांत गौरव की। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में, जोहार रांची।

0: मीटर वे 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं। और श्रोताओं, अब लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जोहार रांची, और इसे लेकर हाजिर हैं आपकी दोस्त उषा जायसवाल और
1: ज्योत्सना।
0: हम दोनों का स्वीकार कीजिए
1: जोहार नमस्कार।
0: कैसी हो ज्योत्सना?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए उषा।
0: मैं भी ठीक हूँ, और हम समझते हैं कि इस प्यारे से मौसम में हमारे सभी श्रोतागण भी ठीक होंगे, है ना। और कहते हैं ना कि जीवन में कई ऐसे पल भी आते हैं जब हमें रुक कर अपने आसपास की खूबसूरती को महसूस करना चाहिए, और आज की तेज भागती दुनिया में लोग अपने काम और जिम्मेदारी में इतने मशगूल हो गए हैं कि रिश्तों और भावनाओं को समय देना भूलते जा रहे हैं।
1: हाँ, लेकिन सच्चाई यही है कि जीवन की असली खुशी छोटी छोटी बातों और अपनों के साथ बिताए गए पलों में छिपी होती है। एक प्यारी सी मुस्कान, किसी अपने की आवाज़ या फिर किसी का साथ हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना देता है।
0: और श्रोताओं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों से जुड़े होते हैं। कभी कभी किसी की याद की चेहरे पर मुस्कान ले आती है, और जब हम उसे याद करते हैं तो फिर कुछ बहुत सारी उनके साथ बिताए हुए पल भी याद आने लगते हैं, और कुछ लोग हमारी जिंदगी में एक सुकून बनकर आते हैं। अगर आप भी किसी खास इंसान को याद कर रहे हैं तो आज का यह संदेश उनके लिए ज़रूर है।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ज्योत्सना, हम संदेश के बाद अपने श्रोताओं से फिर से मुखातिब हैं और अब कुछ जानकारी देना चाहते हैं मौसम के बारे में।
6: बिल्कुल,
5: है ना? तो मौसम में आज का तापमान क्या था वो बता दो।
6: हाँ, तो आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 19 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और आंशिक बादल छाएंगे, बारिश की भी संभावना है।
5: और बारिश के बारे में ये भी बता दें कि अगले 3 घंटों में बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रांची, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम के कुछ स्थानों पर बारिश भी होंगे मध्यम दर्जे के, और गरज चमक को तो कहना ही नहीं है। तूफान के बारे में भी कुछ कहना ही नहीं कि आंधी तूफान कब कितने जोर से आ जाए, बस ये कहना है, हम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि वो सतर्क रहें।
6: हाँ, वैसे है ना, रोज
5: कि जैसे भी आंधी पानी की शुरुआत हो जाए आप तुरंत अपने बिजली के उपकरणों को बंद कर दें और अगर बाहर में हैं तो घर के अंदर में आ जाएं और किसी पेड़ के नीचे ना रहें, और जितना हो सके अपने पशुधन को भी बचा कर रखें, छोटे बच्चों के साथ रहें ताकि वो बाहर ना निकले, और खास करके जब ओले पड़ते हैं ना उस समय पर कोई बाहर ना निकले ताकि किसी को कोई हानि ना पहुंचे। तो ये तो मौसम की बात है, और एक और ख़ास जानकारी ये देखने को मिल रही है कि अपने श्रोताओं से भी साझा कर लें। SIR के लिए 20 जून से 29 जून तक तैयारी कर ली गई है, प्रशिक्षण और मुद्रण का कार्य भी किया जाना है। BLO की ओर से घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन 30 जून से 29 जुलाई तक किया जाना है। मतदान केंद्रों का युक्तिकरण भी 29 जुलाई तक किया जाना है और मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 5 अगस्त को किया जाएगा, और इसके बाद जितने भी दावे हैं लोगों के या फिर कोई आपत्तियां हैं उसे 5 अगस्त से 4 सितंबर तक तय की गई है। इसलिए झारखंड में 20 जून से SIR की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो बस ये कहना है कि आपके घर भी अगर ये आते हैं तो उनको सहभागिता उनके साथ निभाएं, उनका सहयोग करें ताकि हम अपने सरकार के कार्यों में सहभागिता दे सकते हैं, है ना? और भी हम अपने श्रोताओं को जानकारी देना चाहते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि तुम तैयारी कर रही हो गीत का ना, ताकि हमारे श्रोता
6: गीत सुहाना हुआ जा रहा है कि अब श्रोताओं को भी हम मौसम से जुड़ा एक प्यारा सा गीत क्यों नहीं सुना दे।
5: एकदम, चलो सुनाते हैं।
7: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: ज्योत्सना, इस गीत के बाद हम अगले पायदान पर चढ़ना चाहते हैं और वो है इतिहास, है ना। हम अपने श्रोताओं को आज 15 मई के इतिहास के पन्नों में क्या दर्ज है इसके बारे में बताना चाहते हैं। तो हमारे सभी श्रोता जानना चाहते हैं, तो आज के दिन 1796 ईस्वी में फ्रांस के महान सैन्य नेता नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली अभियान के दौरान महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी और उनके सैन्य जीवन की बड़ी सफलताओं में से एक मानी जाती है ये।
1: और 1940 में आज के ही दिन दुनिया की प्रसिद्ध फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स का पहला रेस्टोरेंट शुरू किया गया था, जो कि आज पूरी दुनिया में अपने भोजन और सेवाओं के लिए जानी जाती है।
0: और अगर 2005 की बात करें तो आज ही के दिन 2005 में 20 साल बाद कनाडा में भारत का विमान उतरा था और भारतीय मूल की मंजुला सूद 2008 में आज ही के दिन ब्रिटेन में मेयर बनने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची। तो हम अगले जानकारी में ये बताना चाहते हैं कि भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र का जन्म आज यानी 15 मई को 1959 में हुआ था।
1: और महान क्रांतिकारी शहीद सुखदेव का जन्म भी 1907 ईस्वी में आज ही के दिन हुआ था। और साथ ही प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का भी जन्म 15 मई 1897 ईस्वी में आज के ही दिन हुआ था।
0: और हम ये भी बताना चाहते हैं कि आज के ही दिन को यानी 15 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: बिल्कुल, और यह दिन हमें परिवार के महत्व, रिश्तों की मजबूती

0: और समाज की, समाज में परिवार की भूमिका को समझने का अवसर देता है।
1: संयुक्त राष्ट्र संगठन ने परिवार के महत्व को वैश्विक स्तर पर समझने और बढ़ावा देने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। 1993 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने आधिकारिक रूप से निर्णय लिया कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाएगा, है ना। तो फिर हम क्यों ना अपने इस परिवार दिवस को सेलिब्रेट करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।
0: को ये प्यारे से गीत सुनाते हैं।
1: हाँ।

0: श्रोताओं, इतिहास से जुड़ी एक और खबर हम आपको देना चाहते हैं। तो आज के दिन ही धक धक गर्ल के नाम से मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्म भी हुआ था
1: 1965 ईस्वी में। और हम ये भी बता दें कि माधुरी दीक्षित के जितने भी फिल्म है ना, उनके सभी फिल्मों के किरदार है, वो सभी को आज भी याद होंगे ना। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी एक डांस को याद करो तो उनका ट्रैक याद आ जाता होगा। तो चलो एक ट्रैक हम श्रोताओं को सुनवा देते हैं।

0: तो फिर हम किस काम के,
1: कोई रंग नहीं कुछ नहीं।
0: तो आँखों को बचा कर रखना है, उसे संभाल कर रखना है। आँखों को अगर संक्रमण हो जाता है किसी वायरस से या बैक्टीरिया से, तो उसको हमेशा अपने ध्यान पर रखना है और अपनी आधुनिक जीवन शैली, डिजिटल थकान और लगातार बढ़ते प्रदूषण से आँखों का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसलिए उस खतरे से अपने आप को पहले बचाएँ। और कोई भी एलर्जिक मतलब आँखों का मामला होता है तो उससे हमें संक्रमण से दूर रहने के लिए सबसे पहले तो आंखों में चश्मा लगाना चाहिए और फिर अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का आंखों का संक्रमण आगे खतरा न बन सके और हमारी आंखें जो ऊपर वाले की मूल्यवान देन है, उपहार है, उसे हम संभाल कर रखें। और जब हम ना रहें तो उसके पहले ही इन आँखों को दान जरूर कर लें, क्योंकि नेत्रदान महादान कहा जाता है। तो इसे अगर हम दान पहले से करके रखते हैं तो अपने परिवार वालों से कह कर कि ये हमारी आँखें हमारे बाद भी ज़िंदा रहें लोगों के लिए, तो फिर ऐसा संदेश अगर हम सभी एक दूसरे से पहुँचाते हैं तो ये जो आँखें हैं ना, ऊपर वाले की नेमत, इसे हम फिर से जगा कर, जिंदा रख कर एक नेक काम करके जा सकते हैं।
1: और आपकी आंखें किसी और की जिंदगी में रंग भर सकते हैं।
0: रंग भर सकती है। और ये प्यारी सी बातें हम अपने आंखों के लिए कर सकते हैं। और ये गीत भी सुनवाते हैं थोड़ा सा।

0: श्रोताओं, इसी प्यारे से लाइन के साथ हम अपने जो हरनाची कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। दीजिए इजाजत उषा जायसवाल
1: और ज्योत्सना को।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार जोहार।
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि अभी कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर यात्रा के 90 वर्ष। इसमें आज आप सुनेंगे नीरज नाथ पाठक, जो पूर्व समाचार प्रभारी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे आप सुनेंगे गौरव कुमार की बातचीत।

0: आवाज का सफर यानी आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर रही है। 90 वर्षों की यह गौरवशाली यात्रा कई पड़ावों से गुजरी है। ये सफर केवल प्रसारण का ही नहीं बल्कि भावनाओं, विश्वास और कई सुनहरी यादों का भी रहा है। वर्ष 1936 से शुरू हुई यह यात्रा अनवरत जारी है। पीढ़ियां बदली, तकनीक बदली, लेकिन रेडियो अपना आज भी कलेवर वैसे ही बनाए हुए है। रेडियो एक उत्सव की तरह है जिसके कई रंग हैं। स्वर यात्रा के 90 वर्ष कार्यक्रम के इस अंक में आज आपको मिलवा रहे हैं आकाशवाणी रांची के पूर्व समाचार प्रभारी और वरिष्ठ पत्रकार श्री नीरज पाठक से। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और मैं पूरे आकाशवाणी परिवार को, आकाशवाणी रांची परिवार को विशेष रूप से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने लगभग 26 वर्ष आकाशवाणी में सेवा की है, और ये माना जाना चाहिए कि शायद 1987 से लेकर और 2018 के बीच का

0: समय था, वास्तव में काफी चुनौतियों भरा हुआ समय था, और इसमें कोई संदेह नहीं कि आकाशवाणी ने जो तीन जो उसके उद्देश्य हैं, जो पिछले 100 से अधिक साल से किसी भी रेडियो माध्यम का उद्देश्य रहा है, टू इन्फॉर्म, सूचना देना, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम, और अंत में जो एंटरटेनमेंट का जो उसमें सामान है कि संगीत के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से जो आप अपने श्रोताओं का मनोरंजन करते हैं, तो इन तीनों माध्यमों में जो भूमिका रही है आकाशवाणी की, वो बिल्कुल सराहनीय रही है, और एक चौथाई सदी तक मैं उसका साक्षी रहा हूँ।
1: सर, एक चौथाई सदी तक आप जिस गौरवशाली परंपरा के साक्षी रहे, ये वक्त हमारी पीढ़ी के कई लोगों के लिए ये उनकी पूरी उम्र है जितना समय आपने इस संस्था को दिया है। तो सर, रेडियो के बारे में हमको बताएं, जैसा जो गौरवशाली इतिहास जिसकी बात होती रही है, उसके बारे में सर हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
0: देखिए, इसका मूल भाव कहां से आता है? असल अपने यहां की जो परंपरा है भारत की, शब्द ब्रह्म है, और शब्दों के माध्यम से ही आप लोगों तक पहुंचते हैं, वाणी के माध्यम से ही आप अपने विचार व्यक्त करते हैं, या फिर संवाद की स्थिति होती है। और एक अद्भुत बात है, अगर भारतीय मनीषा के बारे में आप सोचें, भारत का जो चाहे वेद हो, उपनिषद हो, और ज्ञान के जो ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ये सोचकर हैरत होती है कि शताब्दियों तक, शायद सहस्राब्दियों तक केवल स्मृति के माध्यम से वो चीजें रही हैं। वो क्यों रह पाई? इसलिए वो रह पाई कि हमारे पास एक लंबी परंपरा थी कि अपनी बातें हम कथाओं के माध्यम से, विचारों के माध्यम से करते रहे हैं। और शायद यही एक बड़ा कारण है कि आकाशवाणी जैसा माध्यम, जब इसको गहराई से समझा गया इस पर, और ये सौभाग्य रहा है आकाशवाणी के साथ, ये सुखद संयोग भी रहा है कि आज़ादी के समय से लेकर और बाद के कई दशकों में अगर हम देखें, तो जितने जाने माने साहित्यकार, विचारक, चिंतक, दार्शनिक और ज्ञान विज्ञान के अलावा जो कला के क्षेत्र के भी जो लोग थे, वो आने में गौरव महसूस करते थे। तो इसने एक बुनियाद रखी है। बाद के वर्षों में अगर आप देखें कि जो इन्फॉर्म करना, सूचना देने की जो बात थी, उसमें कई सारे पड़ाव आए हैं। शुरुआती चीजें थी, क्योंकि आप एक एक एक मूल बात आप देखें, अगर आप पूरी आकाशवाणी के उस दौर पर, हालिया दौर तक अगर आप अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि एक समय था जब कार्यक्रम आपका निश्चित था, श्रोता आपके पास आया करते थे। चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां सबसे बड़ी ये हैं कि अब जो एक वैश्विक चुनौती रही है, जो प्रतिस्पर्धा की स्थिति है, उसमें ये आकाशवाणी की का दायित्व है कि वो कैसे नए नए रास्ते तलाशे, जिससे कि श्रोताओं तक वो पहुंचे, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा करे, उनके जो सपने हैं उसके बारे में वो बात कर सके।
1: सर, अभी बहुत बड़ी बात आपने कही कि शब्द जो है वो ब्रह्म है। मैं यहाँ से दो बिंदुओं पर आपसे विशेष तौर पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि आकाशवाणी के संबंध में काफी समय से कहा गया कि हम तो आवाज हैं, दीवारों से भी छन जाएंगे। जो चीजें कह दी गई, जो अभी आपने स्मृतियों की बात की, वो कहीं ना कहीं श्रव्य माध्यम से, सुने हुए माध्यम से ही लोगों तक पहुंची और वो हमारी सभ्यता का अंग बन गई। इस पर मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर कि वर्तमान समय में जब शब्द की महत्ता कम होती जा रही है, तो आकाशवाणी को किस तरीके से अपनी परंपरा को लेकर आगे बढ़ना चाहिए?
0: देखिए गौरव जी, मैं शुरुआत से ही, मैं पहली बार 1987 में आकाशवाणी आया था, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में प्रशिक्षण हुआ करता था, और जाने माने कई पत्रकार, जो कई अखबारों के संपादक थे, उनके साथ बातचीत होती थी। ये चर्चा होती थी कि आखिरकार हमारी भाषा कैसी हो, चाहे वो कार्यक्रमों से संबंधित हो, या सूचना से संबंधित हो, समाचार से संबंधित हो। मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा भाषा के संबंध में, कि जब भी आप, क्योंकि मूलतः आकाशवाणी वाणी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचते हैं, इंटरैक्टिव कार्यक्रम भी हो तो भी आप वहां तक पहुंचते हैं, फिर उनकी बातें लेते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखने की है, जो आज से 100 साल पहले सच थी वो आज सच है। वो क्या है? वो ये है, कि किसी भी भाषा का जो मूल आधार, मूल उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य है कि अपने विचार को श्रोताओं तक सही तरीके से पहुंचाना। और ये अद्भुत बात है, ये मेरे 40 वर्षों के मीडिया का अनुभव बताता है कि जैसे जैसे भाषा पर आपका अधिकार होता चला जाता है, वैसे वैसे आपकी भाषा सरल होती है, वाक्य छोटे होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि अपनी बातें कहने में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना आवश्यक हो गया हो जो शायद शब्दकोश में ही मिलता हो। ये एक अद्भुत बात है। एक एक कदम और मैं आगे बढ़कर कहूं तो बहुत कम लोग हैं जो अगर भाषा पर असाधारण आपका अधिकार हो तो 10 से 12 शब्द के वाक्य होते हैं। मैं आकाशवाणी के माध्यम से और जो किस प्रकार से हम भाषा का प्रयोग करें, कैसे हम जो कार्यक्रम बनाते हों, समाचार बनाते हों, वो जो अनुभव जो हमने सीखा है कि भाषा पर जब आपका असाधारण अधिकार हो तो 10 से 12 शब्दों के वाक्य होते हैं। अगर भाषा पर अद्भुत अधिकार हो तो शायद आप 6-7 शब्दों के वाक्य कह सकें। और कोई मनीषी होगा, कोई महान चिंतक होगा, दार्शनिक होगा, विचारों का ऐसा भाव प्रवण अधिकार होगा किसी व्यक्ति का जो 2-3 शब्दों के वाक्य बना सके। अहम ब्रह्मास्मि, वंदे मातरम, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, कम शब्द हैं, क्रांतियां की हैं दुनिया भर में। क्रांतियां बोले हुए शब्दों से हुई हैं, लिखे हुए शब्दों से क्रांतियां नहीं हुई। मुझे याद है कि समाचार में जब हम बात करते थे तो समाचार वाचकों और समाचार वाचिकाओं से मैं अक्सर कहा करता था कि यह असंभावना है कि सवेरे से शाम तक तो आप अशुद्ध बोलें और अचानक माइक्रोफोन के सामने आए तो आपकी भाषा शुद्ध हो। यह असंभावना है। तो आप सपने भी देखें तो क्या आप शुद्ध सपने देख सकते हैं? तो मूल भाव क्या है? तो भाषा के संबंध में कठिन भाषा का उपयोग भाषा पर अधिकार न होने का प्रमाण है। जैसे जैसे आपके विचार पुष्ट होते हैं, जैसे जैसे आप जो आपको जो बात कहनी हो वो बात स्पष्टता से आपके मानस में है तो आपके वाक्य छोटे होंगे, सरल होंगे। और उसकी स्थिति क्या होती है? अगर ऐसी बातें आप कह सकते हैं तो वो तीर की तरह निकलती है और हृदय में वो इस प्रकार से रुक जाती है कि वर्षों वर्षों तक वो निकल नहीं पाती।
1: इससे एक बड़ी पुरानी कहावत याद आती है सर कि चूज योर वर्ड्स वाइजली। ये बात अक्सर कही गई है कि अपने शब्दों का बड़ा सावधानी पूर्वक चुनाव करना चाहिए। और ये बात तो सर्वमान्य है कि आकाशवाणी में शब्दों का चुनाव बड़ा सावधानी पूर्वक होता है। सर, आपके समय में जो रेडियो की महत्ता रही, जो सामाजिक प्रभाव रहा, उसके विषय में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: अब देखिए, ये एक अद्भुत विषय है। मैं आपको बताऊं कि समय के साथ साथ कुछ चीजें जो बिल्कुल नहीं बदली, कम से कम आकाशवाणी में, एक तो ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग है, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है, और हमारा उद्देश्य बिल्कुल रहा है कि न केवल हम सूचना दें बल्कि आज के आज का समय तो चुनौती आप देख रहे हैं, एआई जनरेटेड कई चीज़ें हो जाती हैं और उसके द्वारा बहुत मुश्किल होती है ये जान पाना कि वो सही है गलत है। इवन जो आवाज़ें हैं उसकी नकल आप कर सकते हैं। वैसी स्थिति में चुनौतियाँ बढ़ती गई हैं। एक बात तय है, जो हमारा समय था, मैं एक दशक पहले की बात अगर करूं, कई चुनौतियां उस वक्त नहीं थी, लेकिन जब आपके पास आपके आमने सामने प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, एकाधिकार है, तो एकाधिकार में जब अधिकार आपको मिलता है तो आपकी जिम्मेवारियां बहुत बढ़ जाती हैं। कल्पना करें, अब जैसे छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको आकाशवाणी समाचार से जुड़ा हुआ दूं, चूंकि मैं आपको बताऊं कि झारखंड के मामले में ये बेहद महत्वपूर्ण है कि देश में नए राज्य के निर्माण में जो कुछ चुनिंदा आंदोलन हुए हैं उनमें सबसे बड़ा आंदोलन झारखंड आंदोलन रहा है। 7 दशकों तक चला और 90 के दशक से लेकर के उसके बाद के दशक में जो है 2000 में नए राज्य का निर्माण हुआ है, 15 नवंबर 2000, तो उसके पहले तक की जो स्थिति थी उसमें चुनौतियां बहुत बढ़ी हुई थी। एक तरफ तो सरकार का अपना स्टैंड था, नए राज्य के निर्माण के कारण की जो चुनौतियां हैं वो अपने आप में अलग थीं कि एक राज्य अगर बनाते हैं, वो कहते थे ना पेंडोराज बॉक्स हो जाएगा, एक राज्य फिर नए राज्य फिर नए राज्य। तो उन स्थितियों को लेते हुए और किस प्रकार से आप कहां तक लें, कितनी बातें लें, आंदोलन को भी अगर आपको लेना है तो किस सीमा तक उसका उपयोग करें, क्योंकि आपको पब्लिक ओपिनियन क्रिएट भी करना होता है। तो आप किस प्रकार से लोग चीजों को लेते हैं, आंदोलन हिंसात्मक हो रहा है तो कहां तक सूचना आप देंगे, ट्रुथ तो आप देंगे, लेकिन उस ट्रुथ के साथ ही उसको इस प्रकार से आप सामने रखेंगे, जैसे आप दंगों के बारे में ही बड़ा स्पष्ट था हम लोगों को निर्देश कि ठीक है आपको दो धर्मों के बीच आंदोलन को बिल्कुल नहीं देना है, दो गुटों के बीच विवाद हुआ, इतने मरे, किसके मरे, किस समुदाय के मरे, इसकी चर्चा नहीं करनी है।
1: तो यही सार्थकता रही सर आकाशवाणी की।
0: बिल्कुल, तो आपने तथ्य भी दिया और तथ्य के साथ साथ आपने ऐसी स्थिति पैदा की जिससे उस समाचार के कारण जो हिंसा की स्थिति और बढ़ सकती थी उसको आपने रोका। तो ये जो चुनौतियां थी, और उसके बाद जो मैं कह रहा हूं कि स्थिति क्या होती है, अब बंद है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, अखबार नहीं पहुंच रहे हैं, और वो समय था कि आपके पास सूचना या तो आप आकाशवाणी से लेंगे या आपके पास नहीं आएगी, या बीबीसी वगैरह का शाम के वक्त, या और बहुत ही लिमिटेड उसके लिए झारखंड या बिहार या क्षेत्रीय खबरों के लिए समय बहुत कम हुआ करता था। इन स्थितियों को अगर आप देखें तो वहां जिन चुनौतियों के साथ साथ जिस जिम्मेदारी से आकाशवाणी ने काम किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है कि किस प्रकार आकाशवाणी ने उन चुनौतियों का सामना करते हुए लोगों को न केवल सूचनाएं दी बल्कि ये भी ध्यान रखा कि स्थितियां नियंत्रण में हो। ये एक बड़ी बात थी।
1: जिम्मेदारी पूर्वक किसी सूचना को पब्लिक तक पहुंचाना, जनमानस तक पहुंचाना, साथ में पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक परसेप्शन दोनों बिल्ड करना, ये जो संतुलन है सर, ये जो बैलेंस है, इसको आपने समाचार प्रभारी रहते हुए किस तरीके से साधा?
0: मुझे एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं। एक बार एक पूरे देश भर के जो आकाशवाणी के समाचार प्रभारी थे और बीबीसी के एई ओवन हमारे बाद में मित्र हुए, वो तो वो आए हुए थे थॉमसन फाउंडेशन की ओर से, और लगातार 7 दिनों तक भाषा पर किस प्रकार से काम हो उस पर चर्चा हो रही थी। किसी पत्रकार ने, किसी हमारे साउथ के एक रीजनल हेड ने पूछा कि भाई आप जो कह रहे हैं कि लोगों की समस्याओं को हमें देना चाहिए, पब्लिक ओरिएंटेड हो, तथ्यात्मक हो, क्या आपको पता है कि हम सरकार के अंदर काम करते हैं? ओवन ने एक बड़ी अद्भुत बात कही थी जो मैं कहता हूं वो सच था आज से 30 साल पहले, आज भी उतना ही सच है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि दीवार पर अंगुली से ठोकर लगाकर दीवार को तोड़ नहीं सकते, लेकिन आपको आवाज करने से कौन रोक रहा है?
1: बहुत बड़ी बात थी सर।
0: आवाज करें आप। मैं आपको बताऊं कि जब तक मैं यहां समाचार प्रभारी रहा मुझे कभी याद नहीं है कि आंदोलन, लोगों की समस्याओं से जुड़ी खबरों को देने में, मैं बेहद ईमानदारी से कहना चाहूंगा, कभी कोई नियंत्रण हुआ हो, कोई दिल्ली से निर्देश प्राप्त हो, मुझे पता नहीं है। देखिए आपको एक तरीका होता है, जैसे लोग कहते हैं सरकार की बातें आप दे रहे हैं, ये तथ्यात्मक है कि जो व्यवस्था, डेमोक्रेटिक व्यवस्था अपने यहां है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, उसमें सरकार की भूमिका विकास कार्यक्रमों में इतनी बड़ी है और लोगों की जानकारी बड़ी कम है, अखबार में बहुत कम स्पेस है या उनकी प्राथमिकताएं वैसी नहीं है। वैसी हालत में एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर आकाशवाणी बड़ी भूमिका निभाता रहा है। अगर किसी कार्यक्रम से लोगों में निराशा है, आंदोलन है, मेरा निर्देश था कभी भी आंदोलन से संबंधित खबरों को रोको मत, और विकास की ऐसी खबरें तो सामान्य हो। अब 20 सूत्री कार्यक्रम की सफलता, ये बहुत सामान्य, ये काम है डिप्टी कमिश्नर का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, ये खबर नहीं है। अगर पूरे राज्य में कोई जिला प्रथम हो जाता है तो आप देते हैं। तो आपके पास एक तरीका होता है कि कैसे आप संतुलन को साधें। आपके मानस में आपके श्रोता हमेशा रहते हैं, जितना आप लोगों के, जनमानस के करीब होंगे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे उतने आप लोकप्रिय होंगे। इसलिए आकाशवाणी समाचार इतना लोकप्रिय रहा है, मतलब उस युग में, कि मुझे याद है एक भी अगर खबर आपकी 19-20 हो गई, मैंने कमी रह गई, या कोई समाचार आपने नहीं लिया तो तुरंत फोन आते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ये महत्वपूर्ण खबर है तो आकाशवाणी में होनी चाहिए। तो इन सारी परिस्थितियों में आकाशवाणी ने एक लंबे कालखंड में, कि बहुत बड़े स्टॉलवर्ट, बड़े नामी गिरामी लोग होते थे, और उसका तरीका क्या था, लगभग हर साल एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ करता था कि हम अपने आप को अपनी परीक्षा ले सकें। यहां हमने ये किया है, आप जानते हैं आकाशवाणी में रोज मीटिंग होती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन एक साल में आपने क्या किया, छह महीने में क्या किया, तो जब उस पर ओरिएंटेशन होता है और कैसे बेहतर कर सकते हैं। सारे आरएलयू हेड बुलेटिन लेकर वहां जाया करते थे और दिखाते थे, और इसलिए बुलेटिन में संगीत का प्रयोग, वॉइस ओवर्स और बहुत सारी अन्य चीजें जो बाद में आईं, वो हम लिसनर ओरिएंटेड होते रहे हमेशा। श्रोता हमें सुने, सुनने के लिए बाध्य हो, उनकी आवश्यकताएं हम पूरी कर सकें, यही एकमात्र लक्ष्य रहा है।
1: विश्वसनीयता की जहां तक बात है सर, और न्यूज की ऑथेंटिसिटी की बात है, तो आज भी आकाशवाणी और दूरदर्शन की जो न्यूज विंग है, इसको आज भी मानते हैं कि या तो वो खबर सही होगी या वो खबर नहीं होगी। तो विश्वसनीयता का ये पैमाना तो काफी समय से यहां बना रहा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अभी तक सर एक बात समझ में आती है कि कई बार आकाशवाणी को या दूरदर्शन को केवल संचार का माध्यम मान लिया जाता है, जबकि किसी प्राकृतिक आपदा के कंटेक्स्ट में देखें या नेशनल इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में देखें तो आकाशवाणी का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसका अभी ताजा तरीन उदाहरण अगर देखें तो कोविड में हम लोग देख सकते हैं कि कोविड के टाइम सरकारी मशीनरी के साथ इसेंशियल सर्विसेज के तौर पर आकाशवाणी और दूरदर्शन की टीम्स ने बहुत अच्छा काम किया। सर इसमें एक आपका विशेष बड़ा संस्मरण इस कड़ी में हम लोग लेना चाहेंगे, जो आपकी लंदन ट्यूब वाला इंसिडेंट था सर, उसके बारे में कुछ बताएं।
0: बिल्कुल, असल 2005 और 7 अगस्त, चूंकि वो मेरा जन्मदिन है 7 अगस्त, इसलिए मैं भूल नहीं सकता हूं। तो G8 समिट में मैं गया था और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उनके साथ ही। उस समय की ये स्थिति थी कि रीजनल केंद्रों से, क्षेत्रीय जो समाचार एकांश से, वहाँ से भी लोग भेजे जाते थे, दिल्ली प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर कोई इम्पोर्टेंट डेलीगेशन अगर विदेश जाता है। तो स्कॉटलैंड में वो घटना हुई थी और मुझे याद है कि इंग्लैंड से स्कॉटलैंड एक घंटे की यात्रा है, और तो लंदन से सवेरे हम लोग चले और स्कॉटलैंड पहुंच गए। जैसे ही स्कॉटलैंड में फिनलैंड की तुरंत खबर मिली कि लंदन में बहुत बड़ा ट्यूब ट्रेन ब्लास्ट हुआ है, तो ट्यूब ट्रेन में भी और उसके अलावा कुछ बसों में, दो बसों में ब्लास्ट हुआ था, और हम लोग दो लोग थे, तो फिर चर्चा हुई, हमने जो वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण घटना है, G8 समिट भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया, मतलब कहा गया कि तुम लोग जो ठीक समझो। मैं तुरंत नेक्स्ट फ्लाइट से वापस लौटा लंदन और बाकी लोग वहाँ G8 समिट के लिए रह गए थे। लंदन में जो इसका कवरेज था, चूंकि पहली बार ये मौका हुआ था, और विदेश की जमीन पर किस प्रकार ऐसी घटनाओं में कैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, राजनीतिक दल किस प्रकार से इन चीजों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, फिर वहां पर जो प्रशासनिक ढांचा है वो कैसे काम करता है, आम लोग किस प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, ये देखने का मौका, और मुझे याद है कि आकाशवाणी के इतिहास में संभवतः ये पहला मौका था जब लाइव हुआ करते थे पूरे के पूरे बुलेटिन, चूंकि लंदन की घटना थी और भारतीय लोग लंदन की खबरों के प्रति उनकी रुचि रहती ही है, चूंकि हम तो उसमें कॉमनवेल्थ में शामिल हैं और यहाँ जो भी कारण रहा हो, तो उस बारे में लगातार जिस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और जो वहां देखा, और आकाशवाणी ने जो एक आज़ादी समाचार खबरों को लेने, प्रसारित करने, वो अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था कि आप वास्तव में जो अनुभव कर रहा है पत्रकार उस जगह, वो दे पा रहा है। इस सिलसिले में मैं एक बात केवल कहना चाहूंगा, आकाशवाणी में 90 के दशक से पहले वॉइस ओवर की प्रथा नहीं थी समाचार की। BBC हम लोग गए हुए थे, वहां देखा, वहां BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ दोइचे वेले, जापान में भी इसका प्रयोग बहुत पहले से हो रहा था, और ये चुनौती थी कि भाई हम ब्रॉडकास्टर नहीं है, जैसे ब्रॉडकास्टर आपका जो बाकी प्रोग्राम के लोग आते हैं या ब्रॉडकास्टिंग में आते हैं या फिर जो कंपेयर करते हैं, उनको खास तरह की ट्रेनिंग होती है, लेकिन भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों की ट्रेनिंग उस तरह से नहीं है कि आपको कैसे बोलना है, क्या करना है। तो उसमें बहुत हंगामा हुआ कि क्या हम वॉइस ओवर, वॉइस कास्ट, मतलब घटना स्थल से हमारा संवाददाता खबरों को दे सके, इसकी शुरुआत कैसे करें आप। और मुझे याद है कि देश के जिन दो चार पायनियर पत्रकारों ने, पायनियर आकाशवाणी के संवाददाताओं ने इसमें भूमिका निभाई, उसमें मुझे स्वीकार करना

0: होगा पूरी विनम्रता के साथ कि मैं था डीजी को मैंने कहा और मैंने एक बात कही थी जो मैं कहना चाहूंगा यहां भी बेहद महत्वपूर्ण है। होता यह है कई बार आपको लगता है कि इनकी आवाज बहुत अच्छी नहीं है, तलफुज उच्चारण बहुत स्पष्ट नहीं है। कई लोग होता है कि असम से कोई न्यूज अगर हिंदी में दे रहा है तो असमिया भाषा का असर होगा,
1: मदर टंग
0: इन्फ्लुएंस रहता ही है। बिहार में वो कहते हैं ना तमिल इंग्लिश हो जाता है, तमिलनाडु के जो तमिल इंग्लिश, जो बिहार में कोई भोजपुरी हिंदी है, मैथिली हिंदी है, कोई और हिंदी है, इस तरह की चीजें होती हैं। ये एक बड़ा विरोध था वहां। मुझे याद है एक तर्क मैंने दिया था, मैंने कहा एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इससे यहां तक कि अगर आवाज बहुत बढ़िया न हो, भाषा पर अधिकार न भी हो, लेकिन श्रोताओं के मन में ये बात आती है कि ये घटना स्थल से ये बातें उन तक आ रही हैं। नंबर वन, एक माटी की खुशबू आती है उसमें, और जो इसमें जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख है, वो बढ़ेगी। इसलिए बात के वर्षों में जो शोध हुए हैं उसमें आवश्यक नहीं है कि मेलविल डिमेलो, अमीन सैनी या कुछ खास तरह की आवाजें, नहीं, आम बोलचाल की आवाजें अगर आप ईमानदारी से कह रहे हो तो वो प्रभावी होंगी, वो सुनी जाएंगी। आवश्यक नहीं है कि उसका बोलने का अंदाज किसी खास व्यक्ति के की तरह हो। मैं अक्सर कहा करता था कि मैं नहीं जानता कि मेरी आवाज कैसी है, लेकिन हमारे जो समाचार वाचक होते थे, मैंने कहा कभी किसी की नकल मत करो, स्पष्ट हो, उच्चारण स्पष्ट हो, लोग समझ पाए, बस
1: मौलिकता
0: होनी चाहिए। बिल्कुल।
1: सर एक यहाँ प्रश्न है हमारा कि आप लोगों ने रेडियो के जिस दौर को देखा है, जिस तकनीक के तरीके से आपने काम किया, आज हम लोग जहां बैठे हैं, आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, कि सूचना प्रौद्योगिकी आज लगभग हर व्यक्ति के हाथ में है,
0: बिल्कुल,
1: इस दौर में आप रेडियो को कहां देखते हैं वर्तमान परिदृश्य में?
0: मैं एक चीज बताऊं कि लगभग आखिरी वर्षों में जब डिजिटलाइजेशन हमारे यहाँ शुरू हुआ तो मैं उसका साक्षी रहा हूँ और उसके कारण बहुत परिवर्तन हुए। मैं आपको ये भी बताऊं कि आकाशवाणी रांची देश भर के उन चुनिंदा संस्थानों में रहा जहाँ डिजिटलाइजेशन हम लोगों ने सबसे पहले किया। न्यूज में हमने म्यूजिक का उपयोग करना हो, वॉइस ओवर्स हो, पीटीसी के जो पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे सिंगर्स थे उसका काफी बड़े पैमाने पर उपयोग किया। लेकिन एक प्रश्न आपका बड़ा सार्थक है और ये जुड़ा हुआ है रेडियो के भविष्य का, आकाशवाणी के भविष्य का। देखिए, जैसा कि मैंने पहले एक बार कहा था कि वो समय चला गया जब कार्यक्रम आप लोगों के लिए बनाते थे और उनको उसी समय सुनना था, समय तय था ना। आज युग डिजिटलाइजेशन का है, पॉडकास्ट का है, उसके बाद स्मार्टफोन्स में आपके पास ऐसी चीजें हो लोग, और इस दिशा में आकाशवाणी ने मुझे लगता है हाल के वर्षों में बड़ी प्रगति की है। केवल मुझे कहीं कहीं लगता है कि आम लोगों तक पहुंचने या जो एक व्यापक प्राइवेट रेडियो का काफी फैलाव हुआ है, काफी उसको लोकप्रिय करने की कोशिश भी है, उसमें कई और कारण हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस दिशा में एक प्रोफेशनलिज्म और लाए जाने की आवश्यकता है कि लोग जाने समझें, और एक जो आशा का वातावरण है मन में, एक हम एक बड़ा काम कर रहे हैं, हम जब इन्फॉर्म कर रहे हैं हम उस पर विश्वास करते हैं, और जब हम बोल रहे हैं तो मेरे जीवन का अनुभव उन शब्दों में व्यक्त होता है। और अगर ये आम श्रोताओं में थोड़ा भी कुछ परिवर्तन कर सके, थोड़ा भी उन्हें लगे कि उनकी दिशा क्या हो सकती है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत सकारात्मक कदम होगा।
1: सर हमारा कार्यक्रम समाप्ति की तरफ है, तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि रेडियो उनके जीवन में किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है?
0: देखिए, श्रोताओं से तो मैं सीखता ही रहा हूं कि मैं एक चीज बताऊं कि हमें हमेशा याद रखना है, हम कई बार ये गलती कर जाते हैं एक्सपर्ट्स के रूप में कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हम जानते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं तो बात समझ में आएगी। मैं गांव गया था, मैट्रिक पास एक बच्चे ने मुझे कहा, क्या सुने आपका रेडियो, वही लाख करोड़ अरब की खबरें भरी पड़ी रहती हैं, हम आंकड़ों की बात करते हैं। और अचानक जैसे लगा कि जो काम हमारे तमाम एक्सपर्ट न कर पाए उस मैट्रिक पास व्यक्ति ने किया, और उसके बाद से मेरे बुलेटिन में आंकड़े कम हुए। एक तो बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आम श्रोताओं को

0: चीजों की पकड़ है,
1: फैक्ट्स मोनोटोनस हो जाते हैं
0: बिल्कुल। लेकिन एक बात श्रोताओं के लिए मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि आज बहुत तेजी से ऐसा समय आ रहा है कि जो चीजें आसान होती हैं वो हम ग्रहण करते हैं, कठिन चीजें ग्रहण नहीं करना चाहते। ये रील, ये छोटी छोटी चीजें, 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड की चीजें, आप गहराई से जाएं। एक कार्यक्रम जब आधे घंटा का तैयार होता है, जब आप जाएंगे तो एक पुस्तक पढ़ने का जो आनंद है, एक व्यक्ति के जीवन में झांकने की जो कोशिश है, वो आपको वहां ले जाएगी जो अन्यथा असंभव है। तो श्रोताओं को मैं कहूंगा कि आप थोड़ी गहराई में उतरें, जानने की कोशिश करें और लंबे कार्यक्रमों को भी देखने का आनंद लें। आखिर में मैं एक बात केवल दो पंक्तियां जोड़ना चाहूंगा। मैं जम्मू कश्मीर चुनाव कवर कर रहा था और आकाशवाणी का वो स्वर्ण युग मुझे स्वीकार करना चाहिए, पहाड़ियों की ऊंचाई पर एक व्यक्ति जो था जहाँ की बिल्कुल बहुत कम, तो उसने कुछ आवाजें सुनी थी। मैं पिछले 7-8 दिन से मैं समाचार भेज रहा था तो उसकी दो लाइनें मुझे अभी भी याद है। तुम हुए मेहमा तो रंगे बामुदर अच्छा लगा, तुम हुए मेहमा तो रंगे बामुदर अच्छा लगा, आज पहली बार हमको अपना घर अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया प्रतिक्रिया मैं किसी श्रोता की सुन नहीं सकता था।
1: श्रोताओं, आज आपके साथ मुखातिब थे श्री नीरज पाठक, जिनका संस्मरण, जिनके अनुभव आपके साथ उन्होंने साझा किए हमारे कार्यक्रम में। चलते चलते आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि यूं तो दुनिया के समंदर में कमी होती नहीं, लाख मोती हैं पर उस आव के मोती नहीं।
0: वाह।
1: आकाशवाणी के लिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई पीढ़ियों ने बनाया आकाशवाणी को, और हमारा प्रयास यही है कि जिन पीढ़ियों ने बनाया और उन्होंने जो विरासत सौंपी उसको हम लेकर आगे चलें। तो श्रोताओं, आपका इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर यात्रा के 90 वर्ष, जिसमें आज आपने सुना पूर्व समाचार प्रभारी और वरिष्ठ पत्रकार नीरज नाथ पाठक से गौरव कुमार की बातचीत। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा इंतजार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आपकी पसंद। और इस प्रोग्राम में आपकी हम सफर ज्योत्सना का आप सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं करण अर्जुन फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। इस गाने को लता मंगेशकर ने गाया है, शब्द रचना है इंदिवर की और राजेश रोशन ने संगीत तैयार किया है। इस गाने को पसंद किया है आप सब श्रोताओं ने। अपर बाजार रांची से नीरज सोनी, राजा कुमार, ज्योति कुमारी, सीमा सिंह, पिंकी रानी, राजेश, अमित, दीप्ति, सोना कुमारी और इनके ढेर सारे साथीगण। बड़काकाना रामगढ़ से अमृत सिंह, हरिहर सिंह, पीयूष कुमार, पलक कुमारी, पीहू, दिव्या, तेजस और संगीता कुमारी। तो आइए सुनते हैं आप सबों के पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

अगला गाना अभिजीत की आवाज़ में फिल्म अंजाम से है। तर्ज बनाई है आनंद मिलिंद ने और गीत लिखा है समीर ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबीहा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। तो पेश है आप सबों के पसंद का ये प्यारा सा गाना, फिल्म का नाम है अंजाम।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गाने, प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म मासूम से ये गाना। इस गाने में आवाजें हैं अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम की। गीत के बोल और धुन तैयार किया है आनंद राज आनंद ने। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं नई दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, पिंटू दीवाना, सुरिंदर कुमार सुमन और जगमोहन साहनी। राजा बाजार चौक बहिया आरा से पूनम देवी केसरी, संगीता देवी केसरी, बीना केसरी और प्रतिज्ञा केसरी। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओ, इसी प्यारे से गीत के साथ हमारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा आज का ये कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा। तो अब इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त ज्योत्सना को। नमस्कार।

0: बहनों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आज के कार्यक्रम को लेकर आपके साथ हैं हम दो सखियां राखी और खुशबू।
1: नमस्कार बहनों, और आपके स्वास्थ्य और सुख की मंगल कामना करते हैं हम बहनों, और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में, ताकि हमारा ये स्नेह भरा जो रिश्ता है वो हमेशा बना रहे।
0: हाँ हाँ सखियों, समय बदल रहा है और समाज भी, इसी के साथ बदल रही है हम महिलाओं की पहचान, हमारी भूमिका।
1: और आज की महिला केवल घर की जिम्मेदारियां निभाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह परिवार की शक्ति, निर्णयकर्ता, मार्गदर्शक और आर्थिक सहयोगी भी बन गई हैं।
0: हाँ खुशबू, ये बदलाव बहुत ही सकारात्मक है और भविष्य के लिए एक सुखद संकेत भी है।
1: किसी भी परिवार की जो नींव है वो हम महिलाएं ही होती हैं, और वो परिवार को हम ना बहुत प्यार से, विश्वास से और आपसी सामंजस्य से बना के रखती हैं, और इसमें परिवार की महिला जो होती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होती है राखी।
0: हाँ हाँ,
1: और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के बिना है ना कि घर थोड़ा सा हिल सा जाता है ना।
0: बिल्कुल, अधूरा सा भी लगता है।
1: हाँ
0: परिवार,
1: हाँ
0: महिला नहीं है तो परिवार अधूरा है। और अगर हम बात करें आधुनिक समय की, जैसे समय बदल रहा है तो महिलाओं की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मतलब वो गृहिणी भी अगर हैं तब भी वो बाहर का काम संभाल रही हैं, और अगर वो कामकाजी हैं फिर भी गृहिणी की भूमिका निभा रही हैं।
1: बिल्कुल, दोहरी भूमिका में है वो।
0: हाँ, दोहरी भूमिका है। वो शिक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हो गई हैं। और एक और, जैसा कि मैंने कहा, माँ बनकर

0: बच्चों का भविष्य गढ़ती हैं तो दूसरी ओर समाज में अपनी पहचान भी बनाती हैं।
1: बिल्कुल, और आज महिलाएं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, वैज्ञानिक हैं, अधिकारी हैं, सैनिक हैं और उद्यमी भी हैं, जो देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यानी महिलाओं की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है और हम महिलाओं के जो अधिकार है और कर्तव्य है वो भी हम अपने क्षेत्र को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ताकि हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ है करने के लिए, है ना राखी?
0: हाँ बिल्कुल, और आज के दौर की महिला घर और कार्य क्षेत्र में संतुलन बनाकर चलना भी जानती है खुशबू। चाहे बात अगर बाहर की हम करें तो लैंगिक भेदभाव की, उसका विरोध भी वो करती है, या सामाजिक कुरीतियाँ बहुत सारी हमारी हैं उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाने में वो कभी भी पीछे नहीं हटती, हर जगह आगे रहती है।
1: बिल्कुल, वैसे ही हम महिलाएं हर चीज़ का ख्याल रखती हैं, जैसे कि पर्यावरण का भी हम बहुत ध्यान रखती हैं और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी हमारी अहम भूमिका होती है, यानी महिलाओं की अहम भूमिका होती है। वैसे वृक्ष माता बनकर पेड़ लगाने की बात हो या फिर नदियों के संरक्षण की, नर्मदा बचाओ आंदोलन की, महिलाओं की अहम भूमिका है।
0: बिल्कुल सही
1: है।
0: बात कह रही हो खुशबू, ये चीज़ें हम याद करें तो एक लंबी फहरिस्त बनकर तैयार हो जाएगी, है ना। और माँ बहन पत्नी बेटी बनकर वो ममता तो लुटाते ही हैं, लेकिन घर से लेकर बाहर तक उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हम कुछ हटके करते हैं या अपनी जो भूमिका है उसका विस्तार करते हैं तो कई तरह की चुनौतियां भी आती हैं, है ना। कार्यस्थल पर भी कई बार असमानता का सामना करना पड़ता है, असुरक्षा का एहसास भी महिलाओं को होता है, लेकिन फिर भी महिलाएं कभी भी डर के पीछे नहीं हटी बल्कि आगे ही बढ़ रही हैं। अगर वो डरी भी तो फिर संभल कर आगे बढ़ी।
1: बिल्कुल, और राखी जैसा कि तुमने कहा कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, और महिलाएं जब जब आगे बढ़ती हैं तो उन्हें चुनौतियों का तो सामना करना पड़ता है, लेकिन हम बहनों को मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है बिना किसी डर के।
0: हाँ हाँ, आसमान की ऊंचाइयां छूनी हैं और जमीन पर रहते हुए भी आसमान की तरफ देखना है, अपने पंख फैलाने हैं।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इस खूबसूरत से गीत के बाद बहनों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और राखी, अब आगे कार्यक्रम में क्या है?
4: हाँ, अभी बहनों को हम सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, और आज का विषय हमने रखा है पीढ़ियों के बीच संवाद है जरूरी। और आज इस संबंध में जानकारी दे रही हैं सीता दिया, और बहनों उनसे बातें कर रही हैं हमारी प्यारी सखी खुशबू, जो अभी आपसे कार्यक्रम में मुखातिब भी हैं। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
5: आज का समय तेजी से बदल रहा है। विज्ञान, तकनीक और आधुनिक जीवन शैली ने लोगों की सोच और जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। ऐसे में पुरानी और नई पीढ़ी के बीच अंतर होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि आज की पीढ़ियों के बीच संवाद सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। आज इस विषय पर हमसे अपने विचारों को साझा कर रही हैं हमारी खास मेहमान, आप हैं डॉक्टर सीता दिया, जो कि दिया सेवा संस्थान में सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। सीता जी, आपका हमारे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहुत स्वागत है।
6: जी खुशबू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जोड़ा है बात करने के लिए। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ।
5: सीता जी,
6: जी
5: आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी है, सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को।
7: इस दिवस का मुख्य उद्देश्य परिवार के महत्व को समझाना और परिवार के सदस्यों के बीच प्यार, सहयोग और एकता को बढ़ावा देना है। लेकिन
5: परिवार जो है वो आज थोड़ा सा बिखर सा गया है, उसमें पुरानी और नई पीढ़ी के विचारों में अंतर आ गया है, तो आपके अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण क्या है?
6: देखिए,

0: खुशबू जी, मैं शुरू करती हूँ पुराने जमाने से, फिर नई पीढ़ी पे आती हूँ। पुराने जमाने में लोग एक बृहत परिवार हुआ करते थे। दादा, दादी, चाचा, चाची, बड़े पापा, छोटी मम्मी, मतलब पूरा परिवार एक साथ रहता था। उनके विचारों को एक दूसरे पे सम्मान किया करते थे। हर लोग एक गार्जियन के तौर पे उस घर के बुजुर्ग लोगों को लोग गार्जियन मानते थे, और उन्हीं के अनुसार वो लोग उस घर का संचालन करते थे। ऐसे में बच्चे भी पल जाते थे। बच्चों को संस्कार अच्छा मिलता था, जो बड़े बुजुर्गों से मिलता था, और जो अपने माँ बाप, अपने मतलब चाचा चाची, फूफा, ये सबसे जो लाड़ प्यार मिलता था, ये इसके चलते बच्चों के ऊपर थोड़े संस्कार जो है वो अच्छा आता था।
1: जी
0: और अभी के समय में क्या है, नई पीढ़ी को लगता ही है कि ये लोग पुराने जमाने के हैं। मेरे मम्मी पापा या दादा दादी जो भी है, वो लोग पुराने जमाने के, उन लोगों की सोच जो है इतना डेवलप नहीं हुआ है, मतलब उन लोगों का सोच को ये लोग अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं,
1: जी
0: एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम ज्यादा पढ़ लिए हैं। या जाहिर सी बात है, जो माँ बाप लोग कम पढ़े लिखे हैं, वो लोग अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ा रहे हैं, इसलिए दोनों के बीच में थोड़ा सामंजस्य नहीं बैठ पाता है।
1: जी तो आपको
0: जी
1: भी ऐसा महसूस होता है क्या कि आज के समय में पीढ़ियों के बीच संवाद या बातचीत जिसे कहते हैं कम हो गई है, और वो हुई
0: जी
1: है
0: बिल्कुल
1: तो क्यों हुई है?
0: जी, ये नई पीढ़ियों के बीच में जो बातचीत है, मैं हमारे घर पे ही फीलिंग करती हूँ कि जो बच्चे हैं, मैंने अभी कहा कि हमने हिंदी मीडियम से पढ़ा, बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया, तो ये जो फीलिंग जो है ना, ये फीलिंग उन लोगों को लगता ही है कि मतलब हम लोग थोड़ा ज्यादा जानकार हैं, ये है बच्चों को लगता है। और नई पीढ़ी जो यंग लोग हैं, उन लोग तो थोड़ा डिप्रेशन में भी है ना, रोजगार की समस्या है, और उसके बाद में मतलब बहुत सारी जरूरतें हैं जो नहीं पूरा हो पाने पर भी वो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, अलग कमरे में रहते हैं। अगर पढ़ाई का वो कोई रूम है तो पढ़ाई के रूम में ही रहते हैं। बड़े बुजुर्ग या अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे कम बात करते हैं, फिर तो वो लोग अपेक्षाएं रखते हैं कि मुझे ये जरूरत है, वो जरूरत मेरे को पूरा हो जाए। तो ये जो इन लोगों के बीच में बहुत तो गैपिंग हो रहा है, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस हो रहा है लोगों, मतलब विचारों का आदान प्रदान में बहुत ही खुल के नहीं बात हो पा रहा है। अब कितने आत्महत्या कर लेते हैं, कोई लव अफेयर में पड़ के अपना जान दे देता है। तो ऐसे समय में पुराने जो विचारधारा के लोग हैं, पुराने पीढ़ी वाले लोग हैं, वो लोगों से अगर बात करने पे बच्चों का या युवा पीढ़ी का जो है वो नजरिया थोड़ा साफ
1: जी
0: होगा, और वो लोग खुल के बात कर पाएंगे, अपनी समस्याओं को अपने परिवार के बीच में रख सकते हैं, और रखने के बाद में वो निराकरण निकलेगा। इन लोगों की जरूरतें बहुत ज्यादा है, और इन लोगों का जरूरत जो है वो पूरा ना हो पाने के चलते ये लोग अपने आप को खोते चले जा रहे हैं।
1: बिल्कुल। तो
0: जी
1: आप अपने परिवार में बड़ों या युवाओं के बीच समझ बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं?
0: कि हम लोग उसके समझ बढ़ाने के लिए उनके साथ काउंसलिंग हम लोग करते हैं, युवाओं को के साथ में स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग में वो बच्चे लोग सुधर भी जाते हैं। उसके लिए हम लोग समझाते हैं, बताते हैं, और उनको वैसे मतलब अकेले रहने के लिए नहीं कहते हैं कि थोड़ा आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, जो अच्छे दोस्त हैं वैसे दोस्तों के साथ में अपने विचार का आदान प्रदान करें, तब तो निष्कर्ष निकलेगा, आपके समस्या का सोल्व होगा। नहीं तो आप अगर अपने समस्या को अंदर में दबाए रखेंगे तो आपके लिए वो हानिकारक है। ये हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं युवा को, के साथ में इस बात को नहीं बता पाते हैं कि मतलब बैठ के, एक जगह बैठ के वो लोग निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। अब अभी के समय लोग अपना खाना के टेबल में भी एक साथ तो नई पीढ़ी के लोग नहीं बैठते हैं, वो लोग अपने रूम में चले जाएंगे, अपने ही रूम में ले जाके खाएंगे पियेंगे। तो वो लोग ना दादा दादी के विचारों से लोग अवगत होते हैं, अब तो दादा दादी जो कहानियां बताते थे, जो उत्साह देने वाला या प्रेरणात्मक जो भी स्टोरी बताते थे, वो सुनने के लिए या बच्चों के लिए तो कोई टाइम ही नहीं बचा है। शिक्षा का
1: जी
0: भी थोड़ा सा ज्यादा ही दबाव है ना, पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा बोझ है, तो इस वजह से थोड़ा सा पारिवारिक माहौल से भी बच्चे कटते जा रहे हैं, युद्ध कटते जा रहे हैं। हमेशा चाहते हैं कि हम अकेले रहे, अकेले में मेरा शौक पूरा होते रहे, लेकिन इसमें युवा पीढ़ी का भी दोष नहीं है। यहाँ पर जो दुनिया के

0: हिसाब से जो दुनिया चल रही है उसमें मतलब बच्चे मिल जाना चाहते हैं, और उसमें जो पारिवारिक की जो पुरानी पीढ़ी है वो लोग उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वो लोग अपने पुराने विचारों से उन अपने जो बच्चे हैं उनको पुराने विचारों से अवगत कराना चाहते हैं, और नई पीढ़ी के लोग उन पुराने विचारों को अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ये दो टकराव हो गया है।
1: जी, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच टकराव विचारों का है, समझ का है। तो ऐसे में
0: जी
1: इसका समाधान यही है कि हम बातचीत से उन प्रश्नों को हल करें जो युवा पीढ़ी के मन में चल रहा है या जो पुरानी पीढ़ी के मन में चल रहा है। बातचीत ही इसका एक सशक्त माध्यम है। आपको क्या लगता है कि नई तकनीक जैसे कि मोबाइल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ने पीढ़ियों के रिश्तों को किस हद तक प्रभावित किया है?
0: देखिए, इसको हम लोग ना ज्यादा प्रभावित भी नहीं कह सकते हैं कि दुनिया के हिसाब से ये भी बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया भी जरूरी है, हर कुछ जरूरी है। बस हमको देखना ये है कि हम सोशल मीडिया को किस तरह से लेते हैं, हम सोशल मीडिया का यूज किस तरह से करते हैं। हम अपना भविष्य के लिए सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, ना कि हम गलत कामों के लिए हम सोशल मीडिया को यूज करें। तो सोशल मीडिया को समझने की चीज है। जिस तरह से नई पीढ़ी के लोगों को पुराने पीढ़ी को समझने की जरूरत है, पुराने पीढ़ी को नए पीढ़ी को समझने की जरूरत है, उसी तरह जितने भी सोशल मीडिया है उनके गुण है उसको अपने ऊपर एक्सेप्ट करने की जरूरत है, ना कि उसके बुरे गुणों को उसका दुरुपयोग करने की जरूरत है।
1: जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी को समझने की जरूरत है और पुरानी पीढ़ी को भी नई पीढ़ी को समझने की जरूरत है। तो ऐसी दूरियों को पाटा जा सकता है। सीता जी, आपको क्या लगता है कि पीढ़ियों के बीच जो ये मतभेद आ गया है उसे कैसे कम किया जा सकता है?
0: जी, आज इंटरनेशनल परिवार दिवस है, तो इस दिवस में हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। जो मतभेद आया है उसे अभी के समय में क्या है कि इसको पाटने के लिए हम तो अपने, देखिए, हमें अगर कहीं चोट लग जाती है तो उस चोट में दर्द किसको होता है? खुद को होता है ना, ना कि दूसरे वाले को होता है। तो ये जो विचार है उसको हम लोग को संस्कार से जोड़ के देखना होगा, पुराने तौर तरीकों से जोड़ के देखना होगा, अपनी परंपराओं के साथ जोड़ के देखना होगा, बच्चों को परंपराओं के बारे में बताना होगा और संस्कार के बारे बताना होगा। पुराने पीढ़ी के जो लोग हैं वो लोग तो ऐसे समय में टकराव हो जाता है नई पीढ़ी और पुराने पीढ़ी के बीच में कि संस्कार तुमने सीख रहा है, तुम्हारे अंदर कोई संस्कार नहीं है। तो ऐसे में जो नए पीढ़ी के लोग हैं वो लोग अपने आप को परिवार से थोड़ा किनारा कटना शुरू कर देते हैं, वो लोग अकेला रहने के लिए वो लोग बाध्य हो जाते हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि क्योंकि उनको मतलब पुराने पीढ़ी के लोगों का बात जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो ये सामंजस्य को बिठाने के लिए हम लोग को तो आपस में अगर कुछ ज्यादा हो जाता है तो वैसे जो लोग पे बच्चे जो हैं जिस पे थोड़ा विश्वास करते हैं उनके साथ काउंसलिंग करवाने की जरूरत है।
1: नई पीढ़ी के लोग और पुरानी पीढ़ी के बीच सामंजस्य होना बहुत जरूरी है और बात करना बहुत जरूरी है। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे सीता जी कि अगर आपको संदेश देना हो जिससे पीढ़ियों के बीच दूरी कम हो तो वो क्या होगा?
0: हाँ, यही मैं मतलब बताना चाहती हूँ खुशमु जी, कि नई पीढ़ी जो पुराने पीढ़ी के साथ में जो दूरी बना हुआ है उस दूरी को पाटने के लिए है ना, बच्चे तो आजादी चाह रहे हैं तो उनको आजादी भी दे, लेकिन बीच बीच में उन लोगों को गाइड भी करे कि इतना आजादी भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है, है ना। उनको गाइड कीजिए, अगर वो गलत रास्ते में जाते हैं तो उसको थोड़ा सही रास्ता बताने की कोशिश कीजिए कि बेटा ये गलत है, ना कि अभी क्या है सोशल मीडिया के समय है, माँ बाप उधर अलग सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, बच्चे उधर अलग लगे हुए हैं, किसी को पढ़ना है तो पढ़े ना पढ़े मत, इस तरह से हो गया है ना, हर लोग मतलब एक ही घर में अलग अलग जगह में बैठे हुए हैं। तो कम से कम परिवार को खाने के समय एक साथ होना चाहिए, या किसी मुद्दे को चर्चा लानी, या पॉलिटिकल मुद्दा हो या कोई सामाजिक मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा में उन लोगों को आपस में घर में बातचीत करके अपना मुद्दे पे मतलब उसका निष्कर्ष निकालने की जरूरत है। यही मेरा अंत में कहना है कि बिना बैठ के परिवार के साथ ना बैठ के, अगर एक युवा पीढ़ी को तकलीफ होता है तो सबसे ज्यादा झेलता कौन है? पुरानी पीढ़ी के लोग झेलते हैं, है ना। तो इसलिए पुराने पीढ़ी के लोगों का भी युवा पीढ़ी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन इतना तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा कि बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं
1: जी।
0: तो इसको पाटने की जरूरत
1: जी, पुरानी पीढ़ी को मार्गदर्शक के रूप में नई पीढ़ी के काम करना चाहिए और साथ ही नई पीढ़ी को आजादी देनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा नियंत्रण भी होना चाहिए।
0: हाँ, नियंत्रण भी होना चाहिए।
1: पीढ़ियों के बीच संवाद केवल परिवार की आवश्यकता नहीं बल्कि समाज की भी जरूरत है। जब अलग अलग पीढ़ियाँ एक दूसरे को समझेंगी और सम्मान देंगी तभी एक मजबूत और खुशहाल समाज का निर्माण होगा। इसलिए संवाद को हमें अपनी आदत बनानी चाहिए और परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। सीता जी, आप हमारे गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में आई, अपने विचारों को हमसे साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू जी कि आपने गृह लक्ष्मी प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया, थैंक यू।
2: बहनों, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता, विषय था पीढ़ियों के बीच संवाद है जरूरी। इस संबंध में जानकारी दे रही थी सीता दिया और उनसे बातें कर रही थी हमारी रेडियो सखी खुशबू। और खुशबू, जानकारियां हमने दी बहुत सारी दिलवाई, अब बहनों को इंतजार किस बात का है?
3: एक प्यारे से गीत का, तो चलो सुनाते हैं।

0: बहनों, हम आपसे चलते चलते यही कहेंगे कि अटल पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी ले लें। इसमें आपको पेंशन मिलती है 60 साल के बाद, और विस्तृत जानकारियां आपको किसी अगले कार्यक्रम में देंगे। अब विदा होने का वक्त हो चला है। चलते चलते बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की। इसी के साथ अपनी सखी राखी
1: और खुशबू को दे इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
0: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
0: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं:
0: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव ओगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
0: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
0: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
0: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
0: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
0: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
0: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है।
0: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
0: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
0: जैसे
2: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
0: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
2: तो श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे ये

0: सूक्ष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
1: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है, और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
3: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
2: थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
3: अब सो जाओ।
2: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
1: अब अभी आपने सुना कार्यक्रम था।

0: अथु और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
4: हाँ।
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
2: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
2: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
5: सैनिक भाइयों,
4: जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सुबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
5: जी सुबेदार साहब।
4: बोले सोनिहाल।
5: सत श्री अकाल।
2: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
6: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
7: हैं साहब।

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
2: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे।

0: उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह उठा देंगे।
1: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
2: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
1: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
1: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
2: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह। आज सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
4: Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he wasn't very big, he was strong, and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin.
5: So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited.
4: On that day, the sun shone bright, and all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति कई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिंत इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक क्या है और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए

प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेन्द्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव सदन ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: NTA requires definite reforms and said steps will be taken to strengthen the examination system to prevent future irregularities. Indraprastha Gas Limited has increased the prices of compressed natural gas, CNG, by 2 rupees today. After the price hike, the new rate for 1 kilogram CNG in Delhi is 79 rupees 9 paise and 87 rupees 70 paise in Ghaziabad and Noida. In Gurugram, the new rate for 1 kilogram CNG is 84 rupees 12 paise. Earlier, oil companies raised the petrol and diesel prices by 3 rupees per litre each. Amid spike in global energy prices, the petrol price has risen from 94.77 rupees to 97.77 rupees per litre, while diesel prices have increased from 87.67 rupees to 90.67 rupees per litre in New Delhi. Similar hike in oil prices was seen in other metro cities, including Mumbai, Kolkata and Chennai. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, in collaboration with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, today launched an integrated hydrogen-powered shuttle bus service in the national capital to reduce fuel consumption and promote the use of public transport. The shuttle service will provide seamless and environment-friendly last-mile connectivity between Central Secretariat and Sevatirth Metro stations and key government establishments in the Central Vista region. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान, 21 जून को आयोजित होगी पुनर्परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, अगले सत्र से पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगी नीट यूजी परीक्षा। कोयला राज्य मंत्री ने बोकारो के जारंगडीह सीसीएल क्षेत्र में वैज्ञानिक खनन और पुनर्वास की समीक्षा की। सीएमपीडीआई और एमईसीएल के बीच हुआ महत्वपूर्ण समझौता। रांची प्रदेश कार्यालय में भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक जारी, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा। राज्य में एसआईआर के तहत 2,64,00,000 से अधिक मतदाताओं का होगा भौतिक सत्यापन। सीईओ ने कहा, मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा कोई भी योग्य नागरिक। और जमशेदपुर के क्रिकेटर कुमार कुशाग्र का इंडिया ए टीम में चयन, जून में श्रीलंका में खेलेंगे त्रिकोणीय श्रृंखला। और अब समाचार विस्तार से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। सरकार की मंजूरी के बाद अब यह परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। 3 मई को हुई प्रारंभिक परीक्षा को पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया था। परीक्षा देने वाले छात्रों को अगले महीने की 14 तारीख तक परीक्षा का एडमिट कार्ड मिल जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि छात्र सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके प्रति संवेदनशील है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि अगले वर्ष से नीट यूजी परीक्षा मौजूदा ओएमआर आधारित पद्धति के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति से आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी योग्य विद्यार्थी फर्जी उम्मीदवारों की धांधली या शिक्षा माफिया की साजिशों के कारण अपने अधिकारों से वंचित हो जाए।
3: अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से हो, एनटीए में जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है। जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
2: केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे की उपस्थिति में रांची स्थित सीएमपीडीआई मुख्यालय में एमईसीएल के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य देश में ऊर्जा और गैर ऊर्जा खनिजों की संयुक्त खोज को बढ़ावा देना है। बैठक में मंत्री ने बंद खदानों में मत्स्य पालन और मशरूम खेती के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर विशेष जोर दिया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने बोकारो जिले के जारंगडीह सीसीएल परियोजना क्षेत्र का दौरा कर वैज्ञानिक खनन, पर्यावरण संरक्षण और पुनर्वास नीतियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने वहां कौशल विकास केंद्र के युवाओं से संवाद करते हुए आधुनिक और पारदर्शी कार्य संस्कृति अपनाने का आह्वान किया। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू कर रहे हैं। इसमें राज्य सरकार की विफलताओं, भ्रष्टाचार और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए जन समस्याओं के खिलाफ आगामी राज्यव्यापी आंदोलनों को धार देने की रणनीति बनाई जाएगी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बालमुचे ने झामुमो पर पिछले तीन चुनावों में हकमारी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संख्या बल के आधार पर झामुमो सिर्फ एक सीट का हकदार है और दूसरी सीट पर कांग्रेस का पुख्ता दावा बनता है।
4: 5 वोट लेके अब दूसरा उम्मीदवार दीजिएगा, 16 वोट लेके हम उम्मीदवार नहीं देंगे। बड़ा अजीब गरीब है, आप कैसे सोचते हैं? इसलिए हमने कहा कि इन लोगों की मंशा ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं अपनी चलाकी के चलते बीजेपी को सीट दे दें, लेकिन बीजेपी को जिता के भेजेंगे। देखिए अब देखिएगा, हमको लगता है ऐसे, मैंने कहा कि मेरा अपना पर्सनल, इसलिए अगर हम लोग को दोनों सीट निकालना है तब अंडरस्टैंडिंग करके ही लड़ना पड़ेगा।
2: राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 लागू करने के लिए विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें सभी जिलों में वैज्ञानिक तरीके से कचरा संग्रहण और प्रोसेसिंग व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए। गांव स्तर पर डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए ई रिक्शा के उपयोग पर जोर दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत राज्य के 2,64,00,000 से अधिक मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इस वृहद अभियान के लिए प्रदेश भर में 29,500 से ज्यादा BLO और विभिन्न दलों द्वारा 21,600 BLA तैनात किए जाएंगे। मामले पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि इस देशव्यापी विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य 100% शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना है, ताकि कोई भी योग्य नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
5: हम लोग प्रत्येक घर पर हम लोग सर्वे करते हुए, प्रत्येक व्यक्ति का जानन करते हुए हम लोग योग्य व्यक्ति का सबका नाम सूची में आएगी। किसका योगदान नहीं है, मतलब क्लियर कट काम, मतलब है उनका भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 उम्र के ऊपर होना चाहिए, झारखंड में रहना चाहिए, उनका सबका नाम रोल में आएगी। इसलिए किसी का भी चिंता करने की आवश्यक नहीं है, हम लोग उसका इंश्योर करेंगे।
2: पेट्रोलियम कंपनियों ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। इस पर झामुमो ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल षडंगी ने भाजपा पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव समाप्त होते ही कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जिससे आम जनता पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।
6: सरकार 5 राज्यों के चुनाव में लगी रही और अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं तो धीरे धीरे जो असलियत है वो जनता के समक्ष आ रही है और अब जो जिम्मेदारी है वो जनता पर डालने का काम अब किया जा रहा है। पहले से ऐसी परिस्थिति के साथ निपटने के लिए जो तैयारी की कमी, उस पर कोई काम नहीं हुआ।
2: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,50,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 3,02,000

हजार रुपए प्रति किलो है। मौसम। रांची सहित राज्य के 14 जिलों में 17 और 18 मई को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और कहीं कहीं वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पलामू और गढ़वा को छोड़कर राज्य के लगभग सभी जिलों में आज और कल तेज हवा और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सचेत रहने की अपील की है। 20 मई तक राज्य के सभी जिलों का मौसम बदला रहेगा। क्रिकेट। जमशेदपुर के प्रतिभाशाली विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र का चयन भारतीय ए क्रिकेट टीम में हुआ है। वह 9 जून से श्रीलंका में आयोजित होने वाली एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला में हिस्सा लेंगे। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत के साथ मेजबान श्रीलंका और अफगानिस्तान ए की टीमें खेलेंगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान। 21 जून को आयोजित होगी पुनर्परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, अगले सत्र से पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगी नीट यूजी परीक्षा। कोयला राज्य मंत्री ने बोकारो के जारंगडीह सीसीएल क्षेत्र में वैज्ञानिक खनन और पुनर्वास की समीक्षा की। सीएमपीडीआई और एमईसीएल के बीच हुआ महत्वपूर्ण समझौता। रांची प्रदेश कार्यालय में भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक जारी। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा। राज्य में एसआईआर के तहत 2,64,00,000 से अधिक मतदाताओं का होगा भौतिक सत्यापन। सीईओ ने कहा, मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा कोई भी योग्य नागरिक। और जमशेदपुर के क्रिकेटर कुमार कुशाग्र का इंडिया ए टीम में चयन। जून में श्रीलंका में खेलेंगे त्रिकोणीय श्रृंखला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गिरजा देवी से राग देव गांधार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, जिसके अंतर्गत आज आपने गिरजा देवी से राग देव गांधार सुना। और इसी के साथ हमारा अनुरंजनी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नमस्कार, अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा इंतजार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे गजल। तो पेश है मिताली सिंह की आवाज में ये प्यारा सा नगमा।

0: celebrations of Sikkim in Gangtok. Governor and Chief Minister of Sikkim Union Donor Minister are also likely to attend the event that is to be held at Manan Kendra at Gangtok. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma, Union Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav and Environment Minister Bhupendra Yadav today virtually laid the foundation stone and dedicated multiple projects worth over 400 crore rupees in Rajasthan. The projects are related to semiconductor, railway and sewage water treatment plant. Speaking on the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnav said India has made significant strides in electronics manufacturing over the past 12 years. He noted that the electronics sector has expanded sixfold, with total production now reaching 13 lakh crore rupees. The industrial city of Ludhiana in Punjab has now been connected to India's commercial aviation network with the arrival of the first Air India flight at Halwara Airport early this morning. The development has brought cheer among industrialists and residents, fulfilling a long-pending demand of nearly three decades. Prime Minister Narendra Modi had inaugurated the terminal building of Halwara Airport on the 1st of February this year. Ganesh Vasudev Mavalankar, the first Lok Sabha Speaker of Independent India, assumed the responsibility of the Lok Sabha Speaker's position on this day in 1952. Extending salutations to him in a social media post, Lok Sabha Speaker Om Birla said his significant contribution to systematically shaping Indian parliamentary traditions remains notable. He added that Mr. Mavalankar played a crucial role in establishing rules, procedures and traditions of decorous dialogue for conducting parliamentary proceedings. In the press, the Gas Limited has increased the prices of compressed natural gas CNG by 2 rupees today. After the price hike, the new rate for 1 kilogram CNG in Delhi is 79 rupees 9 paise and 87 rupees 70 paise in Ghaziabad and Noida. In Gurugram, the new rate for 1 kilogram CNG is 84 rupees 12 paise. Earlier, oil companies raised the petrol and diesel prices by 3 rupees per litre each. Amid spike in global energy prices, the petrol price has risen from 94 rupees 77 paise to 97 rupees 77 paise per litre, while diesel prices have increased from 87 rupees 67 paise to 90 rupees 67 paise per litre in New Delhi. Similar hike in oil prices was also seen in other metro cities, including Mumbai, Kolkata, Hyderabad, Bengaluru and Chennai. On increased fuel prices, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that as the world battled rising fuel costs after the West Asia conflict, India stood apart. In a social media post, the Union Minister said while several countries witnessed petrol and diesel hikes ranging from 20 to nearly 100%, India limited the increase to just plus 3.2% for petrol and plus 3.4% for diesel. Benchmark domestic equity indices were trading moderately higher in afternoon trade. The ASX rose 165 points to 75,563, while the Nifty added 47 points to 23,737 when reports last came in. Meanwhile, in the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 was trading flat, while the small-cap 100 dipped nearly 0.2% a short while ago. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, in collaboration with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, today launched an integrated hydrogen-powered shuttle bus service in the national capital to reduce fuel consumption and promote the use of public transport. The shuttle service will operate on all working days during peak office hours. It will provide seamless and environment-friendly last-mile connectivity between Central Secretariat and Sevatirth Metro stations and key government establishments in the Central Vista region. In badminton, India's top men's doubles pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vidithsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekhana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchanged key MOUs in defense, petroleum and investments. BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosu elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और बिंदन का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
3: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा अड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वर्नर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित

0: करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कम्प्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ न आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर निर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
5: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई 12 वर्ष, जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई

0: अब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में एफसीआरए अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बसु बिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम विधानसभा के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार है। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार खड़ी चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेन्द्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दोस्तों आइए सुनते हैं अब फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना, ऐ भारत माँ मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, अभी आप अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म हॉलीडे से ये गाना सुन रहे थे, जिसे संगीत से संवारा था प्रीतम ने और शब्द रचना थी इरशाद कामिल की। अगला गाना है फिल्म एलओसी कारगिल से सोनू निगम की आवाज में, धुन है अनु मलिक की और जावेद अख्तर ने इस गाने को लिखा है।

अगली पेशकश है शंकर महादेवन की आवाज में फिल्म मणिकर्णिका से। शंकर एहसान लॉय ने संगीत तैयार किया है और बोल हैं प्रसून जोशी के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती, और इस कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म मिशन रानीगंज से। स्वर है बी पराग के, धुन बनाया है आरको ने, और ये रचना है डॉक्टर कुमार विश्वास की।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2025-2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी योग्य विद्यार्थी फर्जी उम्मीदवारों की धांधली या शिक्षा माफिया की साजिशों के कारण अपने अधिकारों से वंचित हो जाए।
2: CBI तहत तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है CBI के ऊपर। सरकार की पूरा नेतृत्व सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों में जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को फिलहाल जमानत नहीं मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख निर्धारित की है। विनय चौबे पिछले लगभग एक वर्ष से न्यायिक हिरासत में है और उन्होंने जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। दुमका जिले में सखी मंडल की दीदियां आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। जिले के रानीश्वर प्रखंड में आज 4 महिलाओं को JSLPS की सामुदायिक निवेश निधि ऋण योजना के तहत बैटरी चलित रिक्शा उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और पंचायत स्तर तक आजीविका गतिविधियों का विस्तार करने के उद्देश्य से इस तरह की ऋण आधारित योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बिजली, पानी, भ्रष्टाचार और धान खरीद जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर आज स्वास्थ्य विभाग ने हजारीबाग जिलेवासियों से डेंगू जैसे मच्छर जनित बीमारी की रोकथाम के लिए सतर्क रहने और साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि वर्षा ऋतु के दौरान डेंगू का प्रभाव बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए समय रहते आवश्यक सावधानियां अपनाना जरूरी है। हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में आज इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि मरीज की मौत किन परिस्थितियों में हुई है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की।
3: लापरवाही से जान जा रहा।

डॉक्टर राजकुमार के चैम्बर का घेराव किया और नो पे नो वर्क के नारे लगाए। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से वेतन आवंटन नहीं होने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान झारखंड के कई जिलों में मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम में बारिश के साथ साथ गरज चमक और तेज हवा की प्रबल संभावना जताई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। चलिए अब सुनते हैं आप सबों का पसंदीदा कार्यक्रम नॉन स्टॉप अंताक्षरी। हमेशा की तरह अंताक्षरी की शुरुआत करने के लिए जो अक्षर हमने चुना है वो है म, और म अक्षर से मैंने जो गाना सेलेक्ट किया है वो है ये।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

श्रोताओं, घड़ी की सुई अब हमें ये इजाजत नहीं दे रही कि हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सके, तो अपनी दोस्त ज्योत्सना को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम नॉन स्टॉप अंताक्षरी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज ज्योत्सना के साथ। रब भी न जाने कैसे रिश्ते बना देता है, कब कहाँ कैसे किससे मिला देता है। जिसको हम कभी जानते भी नहीं थे, उसी इंसान को हमारे जीने की वजह बना देता है।

दोस्तों, अभी आप केशरी फिल्म का ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे, जिसे अरिजीत सिंह और आशीष कौर ने गाया था। धुन और रचना थी तनिष्क बागची की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको सुनिधि चौहान की आवाज में चमेली फिल्म का ये गाना। शब्द रचना है इरशाद कामिल की और संगीत से संवारा है संदेश शांडिल्या ने।

श्रोताओं, अगला गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है फिल्म संघर्ष से, सोनू निगम की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।

चोरी चोरी, ये है उस फिल्म का नाम जिसका गाना अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गाने को गाया है बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक ने, रचना है आनंद बख्शी की और धुन है साजिद वाजिद की।

दोस्तों, वैसे तो अब हमारे जाने का समय हो गया है, पर जाने से पहले आप सबों के लिए ये खूबसूरत सा गीत पेश है। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। जावेद अख्तर ने इस गाने को लिखा है और तर्ज बनाई है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है पापा कहते हैं।

प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में आज रांची में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता गणेश मिश्र ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी SIR की प्रक्रिया होनी है। राज्य के बहुचर्चित ग्रामीण विकास विभाग टेंडर घोटाला मामले में आरोपित अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने आज रांची स्थित PMLA की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए पासपोर्ट जमा करने और न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। इस मामले में ED पहले ही प्रमोद कुमार समेत 14 आरोपितों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और अब तक झारखंड, बिहार तथा दिल्ली में 52 ठिकानों पर छापेमारी कर करीब 44 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। रांची में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। रांची जिला बल के 7 पुलिस अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेवारियां सौंपी गई है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम। कंपेयर है राजदा हुसैन और सगुफ्ता बानो और ये प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण कुछ इस प्रकार है। अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 से आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम। शाम 5 बजे होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार। 5:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, परिवार को एकजुट रखने में युवाओं का योगदान। साथ ही आप आज जान सकेंगे इतिहास में आज का दिन। इसके साथ आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोक। चर्चा का विषय होगा सशक्त परिवार सुरक्षित बचपन, मन की बात से जन की बात, पीएम सुरक्षा बीमा योजना जनहित की पहल एवं स्वस्थ शरीर के लिए फलों का सेवन जरूरी। शाम 6 बजे होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा सिंचाई के लिए सोलर पंपों का महत्व। साथ से आप सुन सकेंगे कुछ प्रश्नोत्तरी। खरीफ दलहनी फसलों के लिए खेत की तैयारी एवं किस्मों का चुनाव, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीरज कुमार।

6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा हमारे युवा राष्ट्रीय निर्माता। साथ ही आप सुनेंगे नागपुरी वार्ता, ग्रामीण युवा और स्वरोजगार कार्यक्रम। भेंट वार्ता का राजेश कुमार महतो एवं प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की। शाम 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर आप सुन सकेंगे हो भाषा में कार्यक्रम आदिवासी आंकड़ा। चर्चा का विषय होगा छोटी छोटी बचत भविष्य के लिए जरूरी एवं अटल पेंशन योजना।

रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा एवं 8:30 पर होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:45 पर आप सुन सकेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से।

रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुनहरी यादें आकाशवाणी रांची से। 10:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत। रात्रि 11 बजे सुनेंगे आप हिंदी में समाचार एवं 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि 11:10 पर हमारी मीडियम वेव की यह सभा समाप्त हो जाएगी। ये था आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम सांस सरगम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म सिटी लाइट्स से।

अरिजीत सिंह के स्वर में आप सुन रहे थे ये प्यारा संगीत फिल्म सिटी लाइट से, शब्द रचना रश्मि सिंह की एवं संगीत जीत गांगुली का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अजहर से।

अरमान मलिक के स्वर में आपने सुना रश्मि विराग का लिखा हुआ गीत, संगीत अरमान मलिक का एवं फिल्म का नाम था अजहर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आई हेट लव स्टोरी से।

शफाकत अमानत अली एवं सुनिधि चौहान के स्वरों में आप सुन रहे थे ये प्यारा संगीत फिल्म आई हेट लव स्टोरीज से। शब्द रचना विशाल ददलानी की एवं संगीत विशाल शेखर का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म दिल जंगली से।

जुबिन नौटियाल एवं प्रकृति कक्कर के स्वरों में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म दिल जंगली से। शब्द रचना तनिष्क बाख्शी एवं अराफत खां की, संगीत तनिष्क बाख्शी का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म चलते चलते से।

0: अभिजीत भट्टाचार्य एवं मलका याग्निक के सुरों में आप सुन रहे थे कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म चलते चलते से। शाम के 5 बज रहे हैं और आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड ट्रेजरी महाघोटाले को राज्य में

कब्जों को हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासनिक टीम पहुंचते ही कई दुकानदारों और कारोबारियों ने स्वयं अपने अस्थायी निर्माण हटाने शुरू कर दिए, जबकि कई स्थानों पर बुलडोजर चलाकर अवैध ढांचों को तोड़ा गया। खूंटी के बिरसा कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दो दिवसीय प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हो गया। समारोह के दूसरे दिन 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले करीब 1400 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। सरायकेला स्थित जिला व्यवहार न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत ने 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी परेश उरांव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोपी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी फेवरेट शो युवानी में। मैं हूं आपकी दोस्त कहकशा
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका। हम दोनों की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अगले आधे घंटे तक हम लेकर आए हैं एनर्जी, इंस्पिरेशन, मस्ती और दिल को छू लेने वाली बातें सिर्फ आपके लिए। तो चाय की चुस्की हो या ट्रैफिक का सफ़र, पढ़ाई का प्रेशर हो या ऑफिस की थकान, युवानी के साथ हर शाम बनती है थोड़ी खास। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि शुरू हो चुका है कार्यक्रम युवानी।
0: हर इंसान को ज़िंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है तो वो होता है परिवार।
1: बिल्कुल कहकशा, एक ऐसी जगह जहाँ बिना शर्तों के प्यार मिलता है, डांट में भी फिक्र होती है और खामोशी में भी अपनापन। और इसी खूबसूरत रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। एक दिन जो हमें याद दिलाता है कि बिजी लाइफ, मोबाइल स्क्रीन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना ज़रूरी है।
0: जी प्रियंका, आज हम बात करेंगे परिवार के उन अनमोल रिश्तों की, उन यादों की जो हमें मुस्कुराना सिखाती है, और उन लोगों की जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहते हैं।
1: हाँ कहकशा, आज के कार्यक्रम में होगी ब्यूटीफुल थॉट्स, फैमिली स्पेशल बातें जो आपके दिल को छू लेंगे, और साथ ही कुछ एवरग्रीन गाने जो आपको अपने घर और अपनों की याद दिला देगा।
0: जी बिल्कुल प्रियंका, कभी सोचा है दिन भर की थकान के बाद अगर घर जाकर सुकून मिलता है तो उसका नाम है फैमिली।
1: बिल्कुल, जब दुनिया समझने से मना कर दे और एक आवाज़ आए, कोई बात नहीं हम तो हैं ना, तो उस एहसास का नाम है फैमिली।
0: जी, फैमिली सिर्फ एक वर्ड नहीं होता दोस्तों, ये वो जगह होती है जहाँ हम बिना एक्टिंग के जी सकते हैं, जहाँ हमारी खामोशी भी समझ ली जाती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, बचपन में माँ का हाथ पकड़ के चलना, पापा के चुपके से हर ज़रूरत को पूरा कर देना, भाई बहन से छोटी छोटी बातों पर लड़ना और फिर एक ही प्लेट में खाना, यही तो है असली ज़िंदगी।
0: लेकिन आज बिजी शेड्यूल्स, फोन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच हम कहीं ना कहीं अपनों से

0: थोड़ा दूर हो गए हैं प्रियंका।
1: हाँ
0: कभी कभी एक ही घर में रहते हुए भी बातें कम और स्क्रीन्स ज्यादा हो गई है।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो आज इस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज पर बस इतना सा वक्त निकालिए, अपनी फैमिली के साथ बैठिए और उनसे बातें कीजिए। और अगर आप अपने घर से दूर हैं तो एक फ़ोन ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ लोग, और वो कुछ लोग हमारी फैमिली है, जो सिर्फ आवाज़ सुनकर ही खुश हो जाते हैं।
0: जी दोस्तों, और याद रखिए, ज़िंदगी में पैसा, सक्सेस और अचीवमेंट सब मिल जाते हैं, लेकिन माँ के हाथ का खाना, पापा की फिक्र और घर का प्यार, ये दोबारा कहीं नहीं मिलता।
1: तो दोस्तों चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा गाना जो हर दिल को अपने परिवार की ओर करीब ले जाएगा।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर से सावधान।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दोस्तों, परिवार को एकजुट रखने में युवाओं का योगदान कितना जरूरी है। दोस्तों, फैमिली सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं होती, ये भरोसा, प्यार और एक दूसरे के साथ का एहसास होती है।
7: बिल्कुल कहकशा, कहते हैं वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं और रिश्तों के मायने भी कहीं ना कहीं बदलते जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अगर कोई है जो परिवार को फिर से एक डोर में बांध सकता है तो वो है आज का यूथ।
6: बिल्कुल, आज का यूथ मॉडर्न जरूर है लेकिन दिल से अपने परिवार से जुड़ा हुआ भी है। वो जानते हैं कि घर में सिर्फ एक साथ रहना ही नहीं, एक दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी है।
7: बिल्कुल, कभी माँ पापा की छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखना, दादा दादी के साथ वक्त बिताना, और जब घर में पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स टेक्नोलॉजी नहीं समझ पाते हैं तो बस वही बच्चे और युवा उनका हाथ पकड़कर उन्हें दुनिया से जोड़ते हैं।
6: जी हाँ, और तो और कभी घर के टेंशन को हंसी में बदल देते हैं युवा बच्चे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही तो एक फैमिली को और करीब ले आती है।
7: हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यूथ और पेरेंट्स जनरेशन

0: युवा से बस इतनी सी गुजारिश है अपनी, इतनी सी गुजारिश है कि अपनी जो बिजी लाइफ की जो शेड्यूल्स है उससे थोड़ा वक्त अपनों के लिए भी निकालिए।
1: बिल्कुल, कभी माँ के साथ बैठकर चाय पीजिए, पापा से उनसे उनके दिन के बारे में पूछिए, दादा दादी से पुरानी कहानियाँ किससे सुनिए, और अगर आप घर से दूर हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप एक फ़ोन ज़रूर कीजिए। बस इतना करने से ही उन्हें कितनी खुशी मिलेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते।
0: और याद रखिए, दुनिया में पैसा, नाम और सक्सेस दोबारा मिल सकता है, लेकिन माँ का प्यार, दादी का वो दुलार, दादा का प्यार,
1: पापा का
0: साथ
1: और
0: घर का
1: घर
0: अपनापन, ये हर किसी के नसीब में नहीं होता।
1: बिल्कुल, किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है दोस्तों, परिवार पेड़ की उन शाखाओं की तरह होती है जो अलग अलग दिशाओं में बढ़ती जरूर है, लेकिन उनकी जड़ हमेशा एक ही होती है।
0: हर पिता अपने बच्चों से प्यार करता है, बस जताना नहीं आता।
1: हाँ दोस्तों, और हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे खुश रहे, चाहे उनकी खुद की खुशी अधूरी रह जाए। और बच्चे वो भी अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अक्सर ये बात कह नहीं पाते। तो दोस्तों, आज का दिन शायद इसीलिए है।
0: तो आप अपने लोगों को वक्त दीजिए दोस्तों, उनकी बातें को सुनिए, और कभी कभी बिना किसी वजह के ये कह दीजिए, आप मेरे लिए बहुत खास हैं।
1: दोस्तों, हम युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं होते, हम अपने परिवार की उम्मीद भी होते हैं। हमारी एक मुस्कान, एक कोशिश और साथ में बिताया गया वक्त पूरे परिवार को जोड़ सकता है।
0: तो आइए आज हम ये तय कर लें कि हम अपने परिवार को सिर्फ एक घर नहीं बल्कि प्यार, सम्मान और एकता से भरा संसार बनाएंगे।
1: क्योंकि दोस्तों, मजबूत परिवार ही एक मजबूत समाज को बेहतर भविष्य की नींव होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इतिहास में आज का दिन। हर दिन, जैसा कि हम सब जानते हैं, हर दिन अपने साथ कुछ यादें, कुछ कहानियाँ और इतिहास से कुछ सुनहरे पन्ने लेकर आता है। और आज 15 मई का दिन भी इतिहास में कई खास घटनाओं का गवाह रहा है।
0: तो चलिए जानते हैं इतिहास में 15 मई का दिन आखिर क्यों है इतना खास।
1: दोस्तों, 1925 में पहला एरोबिक कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर शुरू किया था और 1935 में मॉस्को मेट्रो लोगों के लिए खोला गया था, और 1940 में आज ही के दिन रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड नाम के दो भाइयों ने मिलकर कैलिफोर्निया में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था। आज फास्ट फूड रेस्टोरेंट की चेन दुनिया में सबसे बड़ी है। फिलहाल मैकडोनल्ड्स के 119 देशों में 35,000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं।
0: सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक लॉन्च किया। आज ही के दिन बॉलीवुड अदाकारा माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ था।
1: और दोस्तों, 2005 में 20 साल के बाद कनाडा में भारत का विमान उतरा था। तो दोस्तों, बातें तो आपसे और भी करनी है, पर आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, अब समय हो गया है उस सेगमेंट का जहां बातें होगी कुछ ऐसी जो आपको हैरान भी करेगी, मुस्कुराने पे मजबूर भी करेगी और सोचने पर भी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि शुरू हो रहा है अमेजिंग फैक्ट्स, रोचक तथ्य।
1: जी हाँ, एक बड़ा पेड़ एक साल में इतनी ऑक्सीजन देता है कि चार लोगों की सांसें आराम से चल सके।
0: और सबसे मज़ेदार बात दोस्तों, पेड़ भी एक दूसरे से बातें करते हैं। साइंटिस्ट इसे कहते हैं वुड वाइड वेब। ज़मीन के अंदर मौजूद फंगी की मदद से पेड़ एक दूसरे के खतरे की जानकारी तक भेजती है।
1: सोचिए, इंसान तो मोबाइल से जुड़े हैं, लेकिन प्रकृति बिना नेटवर्क के भी कनेक्टेड है।
0: बिल्कुल दोस्तों, इंसान का दिमाग इतना पावरफुल है ना कि उसमें लगभग 25 2.5 मिलियन GB तक की मेमोरी स्टोर हो सकती है।
1: इतनी मेमोरी में लाखों मूवीज और करोड़ों फोटोज आ जाए, और
0: और सबसे खास बात दोस्तों, जब आप किसी अपने के साथ हंसते हैं तो दिमाग हैप्पी हॉर्मोन्स निकालते हैं जो स्ट्रेस कम करता है। मतलब परिवार के साथ बिताया गया समय सिर्फ दिल नहीं, दिमाग के लिए भी दवा है। हर इंसान की दोस्तों हार्ट बीट और इमोशंस दूसरों से कनेक्ट हो जाती है। रिसर्च में देखा गया है कि जब फैमिली मेंबर्स एक साथ इमोशनल मोमेंट्स शेयर करते हैं तो उन्हें हार्ट बीट तक सिमिलर रिदम में चलने लगते हैं। ये सच में अपने सिर्फ दिल में नहीं रहते, दिल की धड़कनों में भी अपने रह जाते हैं।

0: और दोस्तों, हमारा दिल दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है और पूरे शरीर में ब्लड को पंप करने के लिए इतनी ताकत लगाता है, अगर पाइप्स जोड़ दी जाए तो ब्लड लगभग 30 फीट तक उछल सकता है।
1: जी हाँ, यानी हमारा दिल बिना छुट्टी लिए बिना रुके पूरी ज़िंदगी काम करता रहता है। सच में हमारा शरीर किसी मशीन से कम नहीं। बारिश शुरू होते ही जो मिट्टी में प्यारी की खुशबू आती है, उसका भी एक एहसास है, पेट्रियोल।
0: दोस्तों, उसका नाम है पेट्रिकोर। ये खुशबू मिट्टी में रहने वाली छोटे बैक्टीरिया और पौधों में ऑयल की वजह से आ जाती है। और दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लाइफ में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि एक सपोर्टिव फैमिली एनवायरनमेंट भी होता है, क्योंकि जब पीछे फैमिली का ट्रस्ट हो तो इंसान हर मुश्किल का सामना और कॉन्फिडेंस से कर सकता है। तो दोस्तों, साइंटिस्ट भी मानते हैं कि फैमिली हमारी इमोशनल इम्यूनिटी होती है, एक ऐसा स्ट्रेंथ जो हमें टूटने नहीं देती। इसलिए अपनों को वक्त दीजिए। और दोस्तों, ये कहते हैं ना कि दुनिया फैक्ट से भरी पड़ी है, बस ज़रूरत है जिज्ञासा की, सीखने की और हर दिन कुछ नया जानने की। तो कहकशा, अब हम बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में।
1: जी हाँ,
0: द बेंच, द बार एंड द बजेर, ये बुक तुषार मेहता द्वारा लिखी गई है।
1: महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार ने रश्मि विशेष बल का गठन किया।
0: भारत का पहला पीएम मित्र पार्क तेलंगाना के वारंगाल में शुरू किया गया।
1: भारत का पहला लो एमिशन जोन पुणे में विकसित किया जाएगा ताकि वायु प्रदूषण कम किया जा सके।
0: बिल्कुल दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें इतना व्यस्त कर देती है ना कि हम उन लोगों को ही भूलने लगते हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी खूबसूरत है।
1: जी हाँ, अब हम जानेंगे वर्तमान समय में परिवार का महत्व क्यों है।
0: एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ दोस्तों आपसे कि जब आप थककर घर लौटते हैं और कोई बस इतना पूछ ले कि थक गए ना, तो दिल को सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि वो सिर्फ एक सवाल नहीं होता है, वो अपनापन होता है और यही अपनापन हमें परिवार से मिलता है। एक समय था जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था, बातें करता था, हंसता था, और आज एक ही घर में रहते हुए भी सब अपने अपने मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं।
1: लेकिन सच यही है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, मुश्किल वक्त में सबसे पहले जो हमारा हाथ थामता है, जो हमें सपोर्ट करता है, वो होता है परिवार। जब हम हार जाते हैं तो परिवार को हिम्मत देता है, जब हम सफल होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी भी परिवार की को ही मिलती है,
0: क्योंकि परिवार सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं बल्कि विश्वास,
1: अपनापन, सुरक्षा और बिना शर्त प्यार का दूसरा नाम है।
0: आज के समय में मानसिक तनाव, अकेलापन और डिप्रेशन जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में एक मजबूत परिवार इंसान के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। एक छोटी सी बातचीत, माँ की दुआ, पिता की सलाह, भाई बहनों की नोक झोंक, ये सब हमारी ज़िंदगी को और सुनहरा बना देता है।
1: दोस्तों, पैसा कमाना ज़रूरी है, अपने सपने पूरे करना भी ज़रूरी है, लेकिन उन सपनों के बीच अगर परिवार छूट जाए तो ज़िंदगी की असली खुशी कहीं खो जाती है।
0: बिल्कुल, कभी कभी हम बस इतना करना होता है कि अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताना, उनकी बातें सुनना और उनके चेहरे की मुस्कान की वजह बनना,
1: क्योंकि रिश्ते ऑनलाइन नहीं, दिल से निभाए जाते हैं।
0: बिल्कुल, परिवार वो एहसास है दोस्तों जहाँ हमारी हर खुशी दुगनी और हर तकलीफ आधी हो जाती है। इसी खूबसूरत सोच के साथ आइए सुनते हैं एक छोटा सा गाना।

0: दोस्तों, इसी खूबसूरत सोच के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका।
1: और मैं हूं कहकशां।
0: तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम श्रमिक लोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रीति और मेरे साथ हैं
1: महिमा।
0: बिल्कुल महिमा, कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है और नमस्कार।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को महिमा का प्यार भरा नमस्कार और प्रीति को भी बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।
0: बिल्कुल
1: हाँ, और जब भी हम किसी के बारे में पहले सोचते हैं दोस्तों, तो वो होता है हमारा परिवार।
0: बिल्कुल,
1: जहाँ हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और जीवन को जीना सीखते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार की इसी महत्ता को जन जन तक पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है परिवार असमानताएं और बाल कल्याण।
1: और यह दिवस सशक्त परिवारों के माध्यम से बच्चों की सुरक्षित भविष्य, मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देता है, क्योंकि परिवार ही समाज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सहायक प्रणाली भी है।
0: सशक्त परिवार ही बच्चों को प्रेम, संस्कार और सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सकते हैं, जिससे उनका समग्र विकास होता है। परिवार नियोजन और सही पारिवारिक निर्णय बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुनहरे भविष्य की नींव रखते हैं। यह दिवस याद दिलाता है कि परिवार एकल हो या संयुक्त, सामाजिक स्थिरता की रीढ़ है।
1: और इस वर्ष इस दिवस का विषय परिवार असमानताएं और बाल कल्याण के माध्यम से बढ़ती सामाजिक आर्थिक असमानताओं को बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर करना है।
0: बिल्कुल सही कहा। जहां परिवार नहीं है, वहां आप देखेंगे कि किस तरह से बच्चे जो है समझ नहीं पाते कि आगे क्या करना है, कहाँ जाना है।
1: बिल्कुल,
0: परिवार ही एक ऐसी जगह है जहां बच्चों को हर तरह से सुरक्षा भी मिलती है, उनका जो विकास है वो भी बेहतर हो पाता है। और मुझे तो लगता है कि परिवार हम सबके लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और शिक्षा भी मिलती है और ये भी पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं या फिर जो हमारे युवा अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसे समय जो परिवार होता है वही मार्गदर्शन के रूप में काम करता है और वो सही रास्ता बताता है।
0: घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी बच्चे उनके पास बैठते हैं, बातें करते हैं ना, वो कहीं ज्यादा सक्षम होते हैं उन युवाओं से जिनके पास कोई बुजुर्ग नहीं है जो कि उनको समझा सके। तो कहेंगे कि परिवार एक बड़े वृक्ष की तरह है जिसकी छाया हम सबको मिलती है और मिलनी चाहिए और वो अच्छी होती है।
1: बिल्कुल, और गर्मियों के मौसम में परिवार का जो महत्व होता है और बढ़ जाता है, जब बच्चों की छुट्टियां होती है, वो नानी घर जाते हैं, दादी घर जाते हैं, जब एक साथ रहते हैं तो जो परिवार होता है उसका महत्व बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है।
0: तब समझ में आता है कि कितना अहमियत रखती है एक परिवार। और मुझे लगता है कि ये जो हम बातें कर रहे हैं परिवार की, तो एक खूबसूरत सा गीत भी इस पर सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।
2: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: दोस्तों, रेडियो कार्यक्रम मन की बात के व्यापक सामाजिक प्रभाव और जन भागीदारी को दर्शाता है। यह बात यह स्पष्ट करता है कि कैसे एक तरफा लगने वाला रेडियो संबोधन समय के साथ पूरे देश की आवाज़ यानी कि जन की बात में बदल गया।
3: और देखा जाए तो यह रेडियो प्रसारण है, लेकिन माई गॉव पोर्टल और नमो ऐप के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों अपने सुझाव, कहानियां और जमीनी बदलावों को प्रधानमंत्री से साझा भी कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री इस मंच से देश के सुदूर इलाकों में समाज सुधार, पर्यावरण, कृषि या नवाचार में जुटे आम नागरिकों की प्रेरक कहानियों को सामने लाते हैं, जिससे अनाम नायकों को पहचान मिलती है। लोग जो कहीं सुदूर इलाके में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कई लोग उनको जानते तक नहीं थे, आज उनको एक पहचान मिल रही है।
3: बिल्कुल। और ये जो मन की बात है वो आज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो विद्यार्थी परीक्षा लिख रहे हैं उन्हें भी बहुत मार्गदर्शन मिलता है, और ये जो रेडियो है उसकी पहुंच आज भारत के हर कोने तक है, और रेडियो पर लोगों का अटूट विश्वास है क्योंकि इस जानकारी के प्रति विश्वसनीयता रेडियो के आधुनिक प्रभाव को भी दर्शाता है। और रेडियो कल भी लोकप्रिय था और आज भी लोकप्रिय, आने वाले समय में भी लोकप्रिय ही रहेगा।
2: बिल्कुल। पहले लोग रेडियो पे रेडियो सुनते थे और अब मोबाइल के ऐप पे सुनते हैं, यानी पहुंच और भी आसान हो गई है। आप चाहे कहीं भी हो, अब रेडियो सुनना बहुत आसान होगा। तो रेडियो सुनते रहें और हमसे जुड़े रहिए। और अब आइए दोस्तों, आपको सुनवाते हैं भेंटवार्ता, बीमा योजनाओं की जानकारी। भेंटवार्ताकार हैं मनीष कुमार और इनसे बातचीत कर रही हैं दीपा घोष।
4: दोस्तों, हम सब काम करते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, साथ ही हमारा आने वाला कल बेहतर हो। जीवन में सुरक्षा बहुत जरूरी है और जीवन के विभिन्न घटनाओं के प्रति सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हम बीमा योजनाओं को अपनाएं। खास करके हमारे श्रमिक साथियों के लिए बीमा योजनाएं क्यों जरूरी है, इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं मनीष कुमार जी। नमस्कार मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
5: नमस्कार
4: मनीष जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीमा क्यों जरूरी है।
5: जीवन में होने वाले कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए बीमा जरूरी है। बीमा सामाजिक सुरक्षा का विषय है। सामाजिक सुरक्षा योजना एक सामाजिक बीमा योजना है जो व्यक्ति को संकट के समय जब उसकी कमाई कम हो जाए और जन्म मृत्यु विवाह में होने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने में मदद करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का अर्थ है कि व्यक्ति को जीवन में कुछ जोखिमों और अचानक घटनाओं के समय सुरक्षा मिलती है। ऐसे समय में जो आर्थिक परेशानी होती है बीमा उसका वहन करती है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा नुकसान होता हुआ एक सीमित हद तक उसकी भरपाई होती है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने कि बीमा हमें एक तरह से सामाजिक सुरक्षा देती है। आज हम बात कर रहे हैं श्रमिक साथियों के बारे में, जो विशेष प्रकार की बीमा योजना है उनके बारे में, तो आप हमें इस बारे में कुछ बताइए।
5: जी बिल्कुल। श्रमिकों के लिए बीमा योजनाओं पर बात करने से पहले यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत जो बीमा योजना दी जाती है उसके कई क्षेत्र हैं। उसके अंतर्गत अनिवार्य सामाजिक बीमा, एक सामाजिक बीमा भविष्य निधि का भुगतान, पारिवारिक सामाजिक सहायता, जन स्वास्थ्य सेवाएं, इस प्रकार के कुछ क्षेत्र हैं जिन क्षेत्र में बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। हमारे देश की बात करें तो हमारे यहाँ कर्मचारी प्रोविडेंट, कोयला खान भविष्य निधि, श्रमिक क्षतिपूर्ति 1984, प्रसूति लाभ अधिनियम 1961, राज्य बीमा संशोधन अधिनियम 1984, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध व्यवस्था अधिनियम 1952, वृद्धावस्था पेंशन राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 अधिनियम के अंतर्गत बीमा का लाभ लिया जा सकता है। अब हम श्रमिक की बात करें तो अभी 7 साल पहले विशेषकर श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए और उनकी जीवन की परेशानियों को समझते हुए उनके जीवन की कुछ सुरक्षा के लिए, कुछ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई बीमा योजनाएं शुरू की गई। इनके अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई है। यह तीनों योजनाएं श्रमिकों को नुकसान और वित्तीय अनुष्ठान से सुरक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई है, विशेष करके देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले के लिए यह योजनाएं शुरू की गई है। इन योजनाओं के द्वारा बीमा और पेंशन को आम आदमियों की पहुंच में लाने का प्रयास किया गया। कम लागत वाली बीमा योजना है और गारंटी युक्त पेंशन योजना यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक सुरक्षा जो पहले कुछ लोगों को उपलब्ध थी अब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रही है।
4: जी मनीष जी, आपने जिन योजनाओं की बात की जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना, तो आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन योजनाओं से जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं।
5: जहाँ तक इन योजनाओं से जुड़ने की बात है तो इनसे जुड़े सभी नियम को काफी आसान रखा गया है, जिससे कि बहुत लोग अधिक से लोग इन योजनाओं को समझ सके और इनसे जुड़कर 18 से 50 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति, बचत बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता धारक व्यक्ति इन योजनाओं से जुड़ सकता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करूं तो इस योजना के तहत पंजीकरण किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में किया जा सकता है और योजना के तहत प्रीमियम का भुगतान ग्राहक द्वारा केवल एक बार दिए गए आदेश के आधार पर बैंक खाते से स्वतंत्र द्वारा किया जाता है। जो अन्य दो योजनाएं भी हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना में भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है और बहुत कम प्रीमियम पर इन योजनाओं से लाभ लिया जा सकता है। विशेषकर अटल पेंशन योजना की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसमें जुड़ने के बाद 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर मासिक पेंशन मिलने लगता है। बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या दिव्यांगता के मामलों में 2 लाख तक का कवर दिया जाता है। इन योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा का लाभ बीमित व्यक्ति के परिवार वालों को भी मिलता है और इन योजनाओं की सबसे विशेष बात यह है कि श्रमिक बहुत आसानी से इन योजनाओं से जुड़ सकते हैं। सिर्फ उन्हें अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर इन योजनाओं के संबंध में जानकारी लेकर फॉर्म भरना होता है। इसके लिए बीमा कराने वाले श्रमिक का श्रम पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी होता है, तो कोई भी श्रमिक जो श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा चुके हैं वह इन बीमा योजनाओं से जुड़ सकते हैं और इनका लाभ ले सकते हैं।
4: यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही आसानी से श्रमिक इन योजनाओं से जुड़ सकते हैं और इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो श्रमिक साथी कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
5: आज मैं श्रमिक साथियों से यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी सुरक्षा के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किसी भी बीमा योजना से जरूर जुड़ें और इस योजनाओं में निवेश करें। ये योजनाएं आपके लिए बनाई गई है और इनका एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक श्रमिक इन योजनाओं से जुड़े और उनको इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ मिल सके। जीवन में होने वाली घटनाओं पर हमारा कोई वश नहीं होता है, इसलिए हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होता है और बीमा योजना से जुड़ना भी एक ऐसे ही तैयारी है। तो अपने आने वाले कल के लिए और आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों के सामना करने के लिए हमारी तैयारी मजबूत होनी चाहिए और इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, खास करके बीमा योजनाओं से जोड़कर हम अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर श्रमिकों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने किसी भी प्रकार की बीमा योजना नहीं ली है तो आप जल्द से जल्द अपने नजदीकी बैंक या डाकघर में जाएं और अपनी सुविधा के अनुसार अपने लिए योजना का चयन करें, उसमें निवेश करें और अपने जीवन को सुरक्षित करें।
4: बिल्कुल सही बात कही आपने मनीष जी कि हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है और बीमा कराना एक ऐसी ही तैयारी है। श्रमिकों के लिए बीमा योजनाओं के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद
2: दोस्तों, ये थे मनीष कुमार जिनसे हमने जाना कि बीमा योजना जो है वो किस तरह से हम सभी के लिए ज़रूरी है। और साथियों, कहते हैं ना कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, तो विपरीत परिस्थितियों में जब आप आ जाते हैं तो इस समय क्या काम आता है जो हमारी सेविंग्स होती है या हमने जो बीमा करा के रखा होता है वो सारी चीजें काम आती हैं।
3: और ऐसे समय में सूझबूझ से समाधान करना चाहिए, और अगर पहले तैयारी कर ली जाएगी तो कह सकते हैं कि जो समस्या है उसकी जो मतलब समस्या के जो समाधान है वो आधा मिल ही जाता है।
2: विपरीत परिस्थितियों में वित्तीय समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, और जब अंधेरा हो जाए कहीं रास्ता न मिले तो और भी बड़ी समस्या बन जाती है। वित्तीय समस्या और विपरीत परिस्थितियों के लिए बीमा एक बहुत महत्वपूर्ण सॉल्यूशन है। कह सकते हैं कि यह एक उपाय है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं और बदले में किसी नुकसान या जोखिम के समय आपको वित्तीय सहायता मिल जाती है।
3: बिल्कुल, और ऐसी एक सुरक्षा बीमा योजना है पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जो जनहित के लिए है। श्रमिक साथियों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक उपाय भी है।
2: दोस्तों, भारत सरकार की यह एक सस्ती बीमा योजना है जो आम लोगों के लिए कम पैसों में दुर्घटना के समय वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
3: और कितना अच्छा लगता है ना जब दुर्घटना या फिर बीमारियां किसी भी तरह की समस्याएं आती है और उस समय में एक वित्तीय सपोर्ट मिलता है तो लोगों को बहुत ही ज्यादा राहत भी मिलती है। और इस योजना का लाभ लेने के लिए साथियों, उम्र की बात की जाए तो 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए, और रही बात प्रीमियम की तो हर वर्ष 20 रुपए आपको देने होते हैं, और वो जो रुपए है वो भी ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाते हैं।
2: बिल्कुल, यही तो इस बीमा की खास बात है कि बहुत कम प्रीमियम में आपको दुर्घटना बीमा मिल जाती है। बहुत बार हमारे कई साथी इस योजना से जुड़ना नहीं चाहते, उन्हें बता दें कि इससे आपको दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर परिवार को 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं साथियों, विकलांगता या आंशिक विकलांगता पर आपको वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान है।
3: और इसका लाभ लेने के लिए बहुत सारे मतलब कैटेगरी है, लेकिन इसमें मजदूर, छोटे व्यवसायी, किसान, ड्राइवर सीधे बैंक में जाकर या नेट बैंकिंग से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
2: साथियों, प्रक्रिया बहुत ही सरल है और आसानी से आप इसका लाभ ले सकते हैं, इसलिए आप इस बीमा योजना से जरूर जुड़ें। और महिमा, मैं आपको बता दूं कि मैं भी जुड़ चुकी हूं और जब मेरा अकाउंट था सिर्फ और अकाउंट के माध्यम से ही उन्होंने जोड़ दिया, और ये जो पैसे हैं वो ईयरली जो है वो खुद ब खुद कट जाते हैं। तो कुछ करना नहीं, अगर आपके पास अकाउंट है तो बस आप अपने बैंक में जाइए और बस उनसे कह दीजिए कि भाई हम जुड़ना चाहते हैं।
3: तो आसानी से मतलब प्रक्रिया बहुत ही सरल,
2: क्योंकि बैंक में आपके सारे डिटेल्स तो पहले से ही होते हैं, तो बस उसी के माध्यम से आप भी जुड़ जाते हैं।
3: और कहना ये भी चाहेंगे साथियों कि आप इस बीमा योजना से जुड़े और दूसरों को भी जागरूक करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी योजना है।
2: यह आपके लिए ही है जो आपको कार्यक्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही आपको सम्मान से जीने का हौसला भी देती है। अगर आप अभी तक पीएम बीमा सुरक्षा योजना से नहीं जुड़े हैं तो आप भी जुड़ें और दूसरों को भी जागरूक करें, जैसे कि महिमा ने कहा। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती तो हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने क्या किया था इस दिन के लिए। तो बेहतर यही होगा कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो इससे पहले हम उसके लिए तैयार रहें। और जीवन है, दुर्घटनाएं लगी ही रहती हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, बहुत कुछ होता है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि बचत जो है ये बहुत जरूरी है। आप बीमा योजनाओं से जुड़ते हैं, साथ ही साथ घर में जो प्रॉपर बचत है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके हाथ में जब पैसे होंगे तो हर परिस्थिति आपको आसान लगेगी।
3: बिल्कुल, तो जिस तरह से जो बीमा योजना है आपके लिए बहुत जरूरी है, उसी तरह आपके स्वास्थ्य के लिए अगर बात की जाए तो फल जो है वो भी बहुत ही जरूरी होता है।
2: चलो, ये सही बात कही तुमने कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो है वो हम सबके लिए मैटर करता है, और कहते हैं ना कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का भी निवास होता है। तो आप स्वस्थ होंगे तब बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी क्या है? भोजन।
3: भोजन और भोजन के साथ फल।
2: बिल्कुल, क्योंकि फल भोजन को संतुलित करता है, इसमें विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं जो शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखते हैं।
3: और फलों में सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। इसमें विटामिन ए, ई, सी, बी जैसे खनिज मौजूद होते हैं, इसलिए तो डॉक्टर भी इसे खाने की सलाह देते हैं। और जब कोई मतलब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आप ये दवाइयाँ खाइए, भोजन अच्छा कीजिए और साथ ही साथ आप फल भी खाइए।
2: और मैं तो कहूंगी कि मौसमी फल,
3: बिल्कुल
2: जो हर मौसम में जो फल मिलते हैं, जो आसानी से उपलब्ध होते हैं, उनका सेवन करें। जैसे अभी गर्मी के दिनों में खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है, तो ये सारे फल मिल रहे हैं। आम मिलने लगे हैं, भाई आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे फल जो है वो उस मौसम के अनुसार मिलते हैं, तो उस वक्त मौसमी फल जो है इसका सेवन खूब करें। और साथियों, अगर आप कहीं जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, तो भोजन के साथ फल जरूर ले लें। फलों का जूस भी आप पी सकते हैं, इससे आपके अंदर जो एनर्जी है वो बनी रहेगी।
3: और प्रीति बहुत बार जब भी मैं कार्य क्षेत्र में जाती हूँ, कुछ काम से जाती हूँ, तो जूस पीती हूँ, और जूस पीने के बाद पेट भरा हुआ तो लगता है, लेकिन साथ ही साथ अंदर से बहुत ही एनर्जी महसूस होता है और लगता है कि अब बहुत ज़्यादा मुझे ताकत मिल गई, और भी काम कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, क्योंकि फल जो होते हैं ना, वे पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाते हैं। फलों से तो कब्ज जैसी समस्याएं जो है ये भी दूर रहती हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे शरीर के लिए हम कहेंगे कि फल जो है ये बहुत ज़रूरी है।
3: और अगर आज के बारे में बात करेंगे, आजकल के बहुत सारे युवा साथी है वो फलों की जो खूबियाँ होती है ना उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और सिर्फ जो युवा साथी वो नहीं, उनके बच्चे भी या फिर छोटे बच्चे हैं वो भी फलों की खूबियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फलों को नहीं खाते, वो जंक फूड को खाना पसंद करते हैं, और साथ ही जो ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसको वो पीना पसंद करते हैं और उसकी ओर अट्रैक्ट भी होते हैं।
2: लेकिन कहीं ना कहीं कारण हम ही हैं, क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि हाँ आप गन्ने का जूस पी सकते हैं, आप नारियल का पानी पी सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। जो चीजें दिखती हैं, जो एड्स नजर आते हैं उनको, वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन जरूरी है कि हम जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, वो बच्चों को समझाएं कि क्या हमारे लिए जरूरी है और क्या नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा जंक फूड जो है ये शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, और इसीलिए तो हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर सहित आज बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो आम हो गई हैं। हर तीसरे व्यक्ति में आप सुनिएगा कि इस तरह की जो बीमारियां हैं वो चल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कारण जो है वो भोजन है।
3: बिल्कुल, और फलों के नियमित सेवन से बीमारियों को दूर किया जा सकता है और खुद को मजबूत भी बनाया जा सकता है।
2: साथियों, कई बार आप अनावश्यक खर्च कर देते हैं, अगर आप उन्हें ना करें तो उनसे फल खरीद सकते हैं और खा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सही में छोटी छोटी चीजों को आप बचत करके स्वास्थ्य पर बेहतर ध्यान दे सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है महिमा की बातें हम थोड़ी ज्यादा ही कर रहे हैं, और हमारे श्रमिक साथी जो हैं उनको इंतजार होगा एक प्यारे से गीत का, तो चलो सुन लेते हैं।

0: तो दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के साथ ही हमारे कार्यक्रम का वक्त समाप्त होता है। अपनी दोस्त प्रीति
1: और महिमा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोग। शाम के 6 बज रहे हैं और आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक की वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। खूंटी जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में आज रांची खूंटी मुख्य मार्ग स्थित जायसवाल ढाबा के समीप जिला खनन पदाधिकारी ने अपनी टीम के साथ छापेमारी कर 176 CFT पत्थर चिप्स लदे एक हाफ डाला टिपर वाहन को जब्त किया। कार्रवाई सुबह लगभग 11:30 बजे की गई। प्रशासन ने मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुमला में आज जनजातीय गरिमा उत्सव 2026

से 5.8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। मामले के दूसरे आरोपी सुरमणि कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। लोहरदगा जिले में आज दोपहर बाद आई तेज आंधी और बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां मकानों पर गिरने से घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि वज्रपात की चपेट में आने से एक दुधारू पशु की मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जय जवान जय किसान।
1: कार्यक्रम सुनवाया सब भाई बहन मन के सुषमा बहन बटले जोहार और अरविंदा राउर के हूँ जोहार।
0: जोहार जोहार सुषमा बहन और कार्यक्रम सुनुया सब भाई बहन मन के हमर बटले भी बहुत बहुत जोहार। कैसन जाड़ और गर्मी कर चक्कर में कहीं जुकाम मन तो नहीं भेजा है?
1: ओहे बात है दा, देखो आज के मौसम मन बदल जाते तो ऐसा में तो का कहो जी सवांग तो तनी सुन बगड़े कर भी डर है साथे बगड़ भी जाते है इकर में बोली मन भी लड़खड़ाए के लगे।
0: हाँ एकदम सुपोर्ट कहा थी जब मौसम बदले लानी तो कखनो कखनो जर भी धर लेवेला कखनो खोखी हो एक शुरू हो जाएला कखनो सर्दी शुरू हो जाएला तो ये जो बदले वाला मौसम है नी सुषमा इकर में हमारे मन के अपन ऊपर विशेष ध्यान रखना जरूरी है।
1: नगद
0: और देखो हमारे मन सब कोई संगे रह लानी हमरे कर छोट छोट छुआ मन संगे रहना और जितना भी माल मवेशी चूंकि हमरे मन खेती हर ही
1: हाँ।
0: तो हमरे मन कर एक साथ सब परिवार के रूप में हमरे मन रह लानी तो जब मौसम बदला थे कभी बरखा हुई जाते कभी गर्मी पड़ा थे तो इकर में हमरे मन के सब कर ध्यान रखना जरूरी है। और देखो हमरे मन खेती करीला तो जैसे हमरे मन अपन खेत कर ख्याल रखीला अपन सब कर ख्याल रखीला
1: हाँ।
0: सबके जब तक बढ़िया से नहीं राखब नहीं खेती बाड़ी बढ़िया से नहीं होगी।
1: जमे का हम तो सब कर अपन साथ थे सब कर रख रखाव करे बड़ा जरूरी
0: एकदम बहुत जरूरी है। और देखो एखन गर्मी कर दिन है सुषमा बहिन देखब नहीं बहुत हिना किसान मन गर्मा खेती करे ना
1: हाँ।
0: और गर्मा खेती में सबसे बड़ जरूरी का हो
1: सिंचाई करे
0: एकदम और हमरे का राइज में बहुत देखब नहीं समस्या होएला पानी कर कचकच है नी
1: हाँ।
0: हमरे का चूंकि पठारी क्षेत्र है खास कर के ही ने अगर छोटा नागपुर कर बात कही लो तो ये बटे पठारी क्षेत्र में हमरे मन रहिला तो इकर में पानी एकदम भूया तरे घुसल पानी हमरे मन के मिलेला तो तनी सन कचकच होएला किसान मन के
1: एकदम कचकच होएला। और देखो हमरे कर सिंचाई में कचकच आवे से हमरे के बड़ा नुकसान भी होएला काले के हम कोनो फसल के उपजाए लेवा और समय से रे हमरे उकर सिंचाई नहीं करब तो हमरे के उ फसल कर मुनाफा बगरा नहीं फसल ही बेस नहीं उपजी जेकर से हमरे के अपन फसल तो बेस नहीं होवे जेकर से हमरे अपन बेस जे पूंजी लगाए रहब उकर में हमरे कर पर पूंजी कर भी मुनाफा नहीं आ
0: सके। एकदम सही कहा थी कि जितना पूंजी लाग रहेला वो भी कभी कभार हमरे मन के नहीं घूरेला तो हमरे मन के विशेष ख्याल रखने रखे है खास करके सिंचाई में देखब तो अब बहुत किसान मन तो शुरू कर दे हैं टपक विधि जेकि बूंदा बूंदा कह के पटवन करें ना और बहुत किसान मन ले फायदेमंद हुआ थे कारण है कि हमरे मन ठीना पानी बड़ा कम है सीमित है तो उसन में कैसन का हो नी कि अगर टपक विधि से हमरे मन खेती करत थी तो उपज भी बढ़िया हुआ थे और पानी कर भी कम खर्चा हुआ
1: हाँ।
0: थे
1: जेकर से हमरे कर पानी बचत भी।

0: बात है। और ऐसा में ई भी है द कि हमरे के का कब्जे एखन हमरे थोड़े दिन एखन पानी मन तो आते हैं, साथ है गर्मी खेती में होवे ला जे कुआ मन में भी पानी कर स्रोत कम हो जाए ला, और जे बोरिंग मन रहे ला उकर में भी पानी कर किल्लत आ जाए ला, जेकर से अगर हमरे मन टपक सिंचाई मन जैसन करी ला, या तो फिर जे सोलर सोलर पंप से सिंचाई करब ना, तो हमरे के जे पानी कर जो नीचे कर गहराई है अगर बिजली मन नहीं भी रही तो हमरे मन
1: पटवन कर सके,
0: पटवन कर सके।
1: ठीक है थी, हमके लगे अपन खेत में लगा ही का।
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: एकदम सही बात है, तबे रूरी इतना अनुभव के रूरी बताती, अच्छा बात है। और देखो सरकार बट्टी तो सब्सिडी में भी मिलेला सुषमा बहन, और बहुत 90% तक की कर में, प्रतिशत तक की कर में अनुदान भी सरकार बट्टी मिलेला, तो हमरे मन के जरूर कोशिश करे के चाहिए। और देखो आज कर समय है नी कि अपन जे सीमित ऊर्जा का स्रोत है उके बचाए के है, और हमरे मन के वैकल्पिक जे ऊर्जा कर स्रोत है उकर बटे हमरे मन के जायक है, और उकर में सबसे बड़ है सूर्य कर, है नी, साक्षात अगर कहूँ तो सबसे मदद करे को वाला अगर कोई है भगवान हमरे कर तो सूर्य देव है। और हमरे मन के इतना कुछ देवैना हमरे कर शरीर में एनर्जी ओहे देवैना, ओहे ताकत देवैना हमरे मन के, उनकरे से गोटा समझो कि फूल पौधा से लेके सब कर अगर जिंदगी चलत है उनकरे चलते चलते चला चलत है।
0: एकदम बड़ा नगद बात के कहली रहो रे। और ये भी बात है दादा कि देखो जहाँ एखन और ऐसा सुदूर इलाका है जहाँ बिजली कर सुविधा न थे, वहाँ ये सोलर पंप कर जो व्यवस्था है वो एक दो एगो वरदान कर काम
1: करेला। हाँ हाँ, सुपट कहा थी, और उकर माध्यम से किसान मर बढ़िया से पटवन कर लेते हैं। सुपटोरे कहली कि उकर ले बिजली कर कोनो दरकार न के, सौर्य ऊर्जा कर जरिए हमरे मन बिजली उत्पादन उकरे से हो जाते हैं और पटवन भी हो जाते हैं,
0: और अपन खेती कर जे जरिया है ओके मने बेस नगद कर भी सके।
1: एकदम सही कहती, कैठू किसान मनाई जी कर उपभोग करत भी हैं और पंप सेट के लगाए भी हैं, और बढ़िया व्यवस्था कर साथ ही खेती बाड़ी कर काम चलत है। खाली एक ठो बटन एक ठो वाइट किसान से हमर भेंट भी हुई रहे, उनके बुलाई भी रही, तो वो भी कहलें कि कुछ करे न खे, और मान लो अगर खेत तक हमरे मन अगर लाइन के खींच के लेके जाती तार के कहे धाम हमरे मन के हादसा कर भी डर रहे ला, लेकिन अगर पंप सेट है सोलर वाला तो कर में खाली बटन के दबाई दो और अब पटवन शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो ये सब बहुत फायदा
0: है, भी नहीं हो।
1: हाँ हाँ, परेशानी न खे, जीव सवांग कर भी डर भय न खे, तो बहुत तरह कर फायदा है। तो हमरे मन के आज समय है कि जे समय कर मांग है सुषमा बहिन।
0: हाँ।
1: और विकास कर डगर में हमरे मन रोज दिन आगे बढ़ते जाती, तो नवा नवा तकनीक के हमरे मन के आज अपना कर दरकार है। तो कैसन बोलते बतियात रहब कि आगे भी कुछ कार्यक्रम बटे बढ़े का
0: एकदम
1: तो का कहला, सबसे पहले देवदास विश्वकर्मा और संगी मनकर गावल एक ठो नागपुरी लोकगीत के सुन लेते।
0: जरूर सुना।

0: एखन हमारे मन सुनत रही नागपुरी लोकगीत जेके गाए रहे देवदास विश्वकर्मा और संगी मन।
1: सुषमा बहिन, एक ठो बड़ा जरूरी सूचना है हमारे मनकर किसान भाई बहिन मन वास्ते, खास करके ऐसा जे युवा किसान है जे मन प्रशिक्षण लेवे खोजे ना खेती बाड़ी से जुड़ल चाहे और भी कोई भी प्रशिक्षण, तो उमन ले खास करके बहुत नगद सूचना है। तो बताए खोजिला कि रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची बटले 18 से 35 बच्चर कर युवा साथी मन ले कृषि और कृषि संबंधी निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करल जाते, जेकर में युवा भाई बहन मन अपन हाथ के जगरनाथ बनाए सके ना, मने मजबूती दे सके ना खेती बाड़ी कर तकनीक कर जानकारी लेके, तीकर में समेकित खेती, मधुमक्खी पालक, खाद प्रसंस्करण से उद्यमिता विकास, लाह उत्पादक, मशरूम उत्पादक, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक उत्पाद, मत्स्य पालन, माली और मुर्गी कर स्वास्थ्य प्रबंधन, गोपालक, बढ़ईगिरी, इलेक्ट्रिशियन, बेल्डिंग, सुपरवाइजर, प्रशिक्षण सेवा उपलब्ध है। इकर में आय के सब भी रूढ़ मन आय के प्रशिक्षण ले सकीला। तो ये बताए खोजिले रोड़ मन के कि ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये आवासीय है, मतलब और इकर में रोड़ मन रह के और जाए के प्रशिक्षण ले सकीला, लेकिन रोड़ मन के एक पैसा भी खर्चा करे के नखे, मतलब निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो भाई बहन मन रोड़ मन के बताए खोजिला कि हर महीना कर 1 तारीख के रोड़ मन हिया नामांकन आय के करवा सकीला। अनुसूचित जनजाति कर जे भी अभ्यर्थी मन ही से मन ले प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाल जाते और इ मन ले पूरा तरह से निःशुल्क है, मतलब एक भी पैसा रूढ़ मन के देवे के नखे कोई भी प्रशिक्षण लेवे खातिर। लेकिन भाई बहन मन इकर ले कुछ जरूरी कागजात है कि लेके आवे के पड़ी रूढ़ मन के, उके नोट कर लो रूढ़ मन कोनो ठीना लिख लेव। आधार कार्ड कर दरकार लागी, जन्म और जाति प्रमाण पत्र रोड़मन के देवे पड़ी और संगे एक ठो फोटो लेके रोड़मन के जाय खोली और संपर्क कर सकेला रोड़मन रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी रांची में। तो भाई बहन मन अपन हाथ जगरनाथ के रोड़मन।

0: बनाऊ, मजबूत बनू रो रे मन, अपन कौशल के निखारू और आत्मनिर्भर बनू। तो बड़ा बढ़िया सूचना ये रहे हमरे कर, हाँ, जितना भी नौजवान किसान मन है उमन लगिन।
1: तो चलो हमरे मन यही जानकारी कर साथे, और एगो जानकारी करब मैं तो सूचना कर पीछे कि ये जानकारी है
0: खरीफ दलहनी,
1: दलहनी, हाँ, हाँ, फसलों के लिए खेत तैयारी और एकर किस्म कर चुनाव। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज कुमार और भेंट करता है कृष्ण जीवन पौराणिक।
2: किसान साथियों नमस्कार। खरीफ की फसलें मानसून के दौरान बोई जाती है और सर्दियों के दौरान काटी जाती है। इन फसलों को भारी वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रचुर मात्रा में वर्षा जल या सिंचाई सुविधाएं प्राप्त करने वाले क्षेत्र खरीफ फसलों के लिए आदर्श माने जाते हैं। रबी फसलों की तुलना में इनकी कटाई में अधिक समय लगता है। खरीफ फसलें मानसून पर निर्भर होती हैं और इनका फसल का मौसम जुलाई से अक्टूबर तक चलता है। जैसे चावल, मक्का, बाजरा, रागी, दालें, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि इन फसलों में शामिल हैं। तो इन्हीं खरीफ दलहनी फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार, दलहन वैज्ञानिक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। डॉक्टर साहब आपको नमस्कार है।
3: जी नमस्कार, जोहार किसान भाई बहनों।
2: डॉक्टर साहब, खरीफ दलहनी फसलें क्या होती हैं?
3: एक्चुअली अभी हमें खेत में खरीफ की तैयारी कर रहे हैं और बरसात गिरने से पहले थोड़ी बहुत वर्षा होती है, ऐसे में हमारे किसान भाई को दलहनी फसलें लगानी होती है और उसमें दलहनी फसलों में अरहर काफ़ी ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो अरहर दाल का है, क्योंकि इसकी जड़ें जो है काफ़ी नीचे तक जाती है और कम वर्षा में भी अच्छी उपज दे जाती है। इसके अलावा हम मूंग और उड़द की भी खेती करते हैं, साथ ही साथ अगर किसी वजह से देर हो जाने पर कुलथी की खेती भी हम खरीफ दलहनी फसल के तहत कर सकते हैं। इसमें ये ज़रूरी होता है कि जो भी हमें इंतजाम करना होता है, जो भी तैयारी करनी होती है, खास करके जो अभी थोड़ी बहुत वर्षा हो रही है, ऐसे में गहरी जुताई करके खेत को छोड़ना बड़ा ही उपयुक्त होता है, बड़ा ही सफल होता है, क्योंकि देखा जाए तो जो भी कीड़े मकोड़े हैं उनका नाश हो जाता है और जो खरपतवार की समस्याएं जो दलहनी खरीफ फसलों में जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है रबी की तुलना में
2: जी,
3: उसमें ये समस्या खरपतवार की समस्या भी कम हो जाती है। बीमारी भी देखा गया है कि जो उनके कवक हैं, जो भी फंजीसाइड्स अगर हम नहीं भी डाल रहे हैं लेकिन अगर हम ग्रीष्मकालीन जुताई अगर कर देते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े के साथ साथ बीमारी जो होता है जो फसलों को परेशान करता है उसकी समस्या भी कम हो जाती है
2: जी। खरीफ मौसम में दलहन की सफल खेती के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं?
3: खेत की नमी को देखते हुए
2: जी,
3: हमें मिट्टी को पलट के छोड़ देना है, इससे कीड़े मकोड़े की समस्या भी कम हो जाती है। और दलहनी फसल इसलिए हमारे किसान भाइयों को लगानी चाहिए कि इसमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा होती है और अगर हमारे किसान भाई इसको लगाते हैं तो पैदावार को अपने खाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और जितनी भी समस्याएं जो हमारी जो बहने माताएं और बच्चों को समस्या होती है माल न्यूट्रिशन की, जो पोषक तत्व की कमी शरीर में नजर आती है, दाल खाने से ये समस्या काफी हद तक कम हो जाती है, इसलिए दाल को जरूर लगाएं और जरूर खाएं
2: जी। दलहनी फसलों में मिट्टी की जांच की आवश्यकता होती है
3: जी,
2: लेकिन ये मिट्टी की जांच कब करनी चाहिए और इसे क्यों करना चाहिए, सो हमारे किसान भाइयों को आप बतलाएं।
3: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। मिट्टी जांच इसलिए करनी चाहिए, कई बार बहुत सारी बीमारियां आती हैं, बहुत सारे ऐसे लक्षण आते हैं जो बीमारी नहीं होते फिर भी हम समझ लेते हैं कि ये बीमारी है, वो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी की वजह से ऐसा होता है। मेरी सलाह होगी कि हर तीसरे साल मिट्टी जांच अवश्य करनी चाहिए और ये जो अभी का समय है जब रबी मौसम की कटाई हो रही है, हो गई है, खेत खाली है, खरीफ की तैयारी चल रही है, तो ऐसे ही समय में मिट्टी जांच करनी चाहिए। खेत के कई हिस्सों से मिट्टी को निकाल करके और जब भी मिट्टी जांच हमारे मृदा विभाग जो बिरसा कृषि विद्यालय है वहाँ पर किया जाता है और उसमें करने का तरीका बताया जाता है, इसमें क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि मिट्टी में आपकी अम्लीयता है या फिर मेजर न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन किस चीज़ की कमी है, वो पता लग जाता है और हम उसको फिर अपने मिट्टी में डालते हैं और तब बुआई करते हैं और तब पैदावार बहुत अच्छी

0: आती है। चूना का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ ही जिलों को छोड़ दें, एक आधा जिलों को छोड़ दें, तो लगभग अमूमन सभी जिलों में अम्लीयता की समस्या है, और डोलोमाइट या चूना का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। जी
1: डॉक्टर साहब, जैसे दलहनी फसलें हैं,
0: जी
1: कोई कोई ऐसे फसलें होते हैं जिसको किसान भाई लगाते हैं लेकिन हो नहीं पाता है,
0: जी जी
1: तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को बतलाएं कि बीज उपचार के क्या लाभ हैं,
0: हाँ हाँ
1: ये
0: हाँ हाँ
1: किसान भाई कैसे करें?
0: देखिए, बीज का अगर हम उपचार करते हैं तो बीमारी, कीड़े मकोड़े या फिर दूसरे जो राइजोबियम वगैरह है, उससे हमको बहुत फायदा मिलता है। क्योंकि बीमारी आने के बाद अगर आप इलाज करेंगे तो समस्या ज्यादा होती है। बीमारी आने से पहले एहतियात के तौर पर हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, बीज का उपचार करते हैं। पहले हम लोग सिर्फ बीमारी के लिए बीज उपचार करते थे बेबेस्टिन के द्वारा, लेकिन इन दिनों हम कीड़े मकोड़े की समस्या से भी निजात पाने के लिए हम लोग क्लोरोपायरीफास से उपचार करते हैं। फिर फास्फोरस की मात्रा बढ़ाने के लिए राइजोबियम कल्चर और पीएसबी कल्चर से भी हम उपचारित करते हैं। लेकिन ये ध्यान देना होता है कि क्रम जो है, पहले बेबेस्टीन, बाद में क्लोरोपायरीफास और सबसे आखिर में राइजोबियम कल्चर से इस्तेमाल करें। इसको हम लोग शॉर्ट में FIR भी बोलते हैं। तो क्रम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इससे अनेकों फायदे हैं। बीज जनित रोगों से आपकी फसल को बचाव हो जाता है, बीज का रक्षण होता है, अंकुरण में सुधार होता है। अगर अंकुरण 70% है, अगर आप बीजोपचार कर रहे हैं तो वो 80-85% अंकुरण जरूर हो जाएगा। मृदा कीटों का नियंत्रण होता है, जो मृदा के अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे बचाव होता है। बीज उत्पादन में जो लागत है उसमें कमी आ जाती है। बीज उत्पादन आप कर रहे होते हैं, कीड़े मकोड़े की समस्या, बीमारी की समस्या और अन्य समस्या है, तो अगर आप सिर्फ बीजोपचार कर दे रहे हैं तो बाकी अन्य समस्याएं कम आएंगी, ताकि आपका जो लागत है वो कम हो जाएगा। तो उसमें गुणवत्ता जो है, बीज आप उत्पादन करेंगे उसमें गुणवत्ता ज़्यादा रहेगा, ताकि जो अगली फसल जब आप लगाएं तो उसमें उत्पादन अच्छा मिल सके। तो ये सारे फायदे बीजोपचार के हैं।
1: जी, अभी आपने हमारे किसान भाइयों को बीज उपचार के बारे में बताया,
0: हाँ जी
1: अब आगे ये बताएं कि खरीफ फसलों के लिए खेत का चुनाव एवं इसकी तैयारी कैसे करेंगे?
0: खरीफ दलहनी फसलों के लिए हमेशा ध्यान देना होता है कि ऊपरी जमीन, जिसको हम टांड जमीन भी कहते हैं, उसी का इस्तेमाल। रबी में आप मध्यम जमीन में दलहनी फसल ले सकते हैं, लेकिन खरीफ में, बरसात में आपको ऊपरी जमीन का ही चुनाव करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जल जमाव नहीं होना चाहिए। पानी का ठहराव आपके खेत में किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारे फसल आपके सड़ गल जाएंगे। तैयारी में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मवेशी पालते होंगे, सड़ी गोबर की खाद, सड़ी गोबर पर मैं जोर दे रहा हूं, क्योंकि अगर कच्ची गोबर की खाद होगी तो दीमक की समस्या आ जाएगी। तो सड़ी गोबर की खाद का हमारे किसान भाइयों को इस्तेमाल करना चाहिए, और अनुशंसित किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी सबसे जरूरी है। जितने भी लागत होते हैं हमारे कृषि में, खेती में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुशंसित बीज की उपलब्धता। आखिर में आप जल्दी जल्दी में अगर आपको सही बीज नहीं मिलता है तो कुछ भी आप लगाते हैं, और कितना अथक प्रयास करने के बाद, सभी कुछ उसमें डालने के बाद भी उत्पादन आप नहीं ले पाते हैं, उत्पादकता अच्छी नहीं होती है। तो यही वजह है कि आप अभी ये 1 महीना आपके पास समय है, जिसमें बहुत अच्छी तैयारी आप कर लें, सब चीज़ का इंतजाम अभी कर लें, सोच लें कि कौन सी फसल, कौन सी किस्म, कौन सा दवा, कौन सा फर्टिलाइजर, रासायनिक फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन कितना डालना है, सब जोड़ करके, इंतजाम करके, खरीद करके रख लें, ताकि कोई समस्या आपको खरीफ दलहनी फसल की खेती में ना आ सके।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बता दिया कि खेत के चुनाव और इसकी तैयारी के बारे
0: हाँ
1: में,
0: जी हाँ जी
1: लेकिन आप ये भी बताएं कि खरीफ मौसम में
0: जी
1: कौन कौन सी दलहनी फसलें लगाई जाती हैं और कौन कौन से किस्मों का चुनाव हमारे किसान भाई करें?
0: ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
1: जी
0: जैसा हमने पहले कहा, अरहर, उड़द, मूंग हम अमूमन लगाते हैं। अरहर सबसे ज्यादा लगाते हैं, करीब 2 लाख हेक्टेयर में हमारे प्रदेश में अरहर लगता है। तो जो किस्में हैं अरहर की, उसकी मैं पहले चर्चा कर दूं, बाद में उड़द मूंग की चर्चा करूंगा। जो उन्नत प्रभेद हैं इसी को लगाना चाहिए। जैसे बिरसा अरहर 1 है, ये मध्यम अवधि की किस्म है, 180 दिन में तैयार हो जाती है और करीब 16 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज दे जाता है। बिरसा अरहर 2 जो हम लोगों ने अभी इसको रिलीज किया है, ये करीब 230 दिन, 235 दिन में ये तैयार होती हैं और 25 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होता है। जब अवधि हम बढ़ाएंगे तो उपज हमारा बढ़ता है। उपास 120, ये किसान भाई जो जल्दी काटना चाहते हैं 140 145 दिन में, वो इसका चुनाव कर सकते हैं। 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज आती है। IPA 203 और IPA 15-2, ये दोनों लंबी अवधि की किस्म है और ये भी अच्छी उपज 25 से 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज दे करके जाती है। अगर हम उड़द की बात करें, उड़द की अनुशंसित किस्म की बात करें, तो

0: बिरसा उरद एक, WBU वेस्ट बंगाल उरद 109, और बिरसा उरद दो IPA कोटा उरद दो। ये चार किस्में हैं। अगर हमारे किसान भाई उरद लगाना चाहते हैं तो इन्हीं किस्मों का चुनाव करें, और औसत उपज 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और ये करीब 70 से 80 दिन में 85 दिन में तैयार हो जाती हैं। मूंग की बात करें तो मूंग की अनुशंसित किस्में जो हैं वो विराट है, HUM 16, जिसको हम 16 भी कहते हैं, और IPM 2-3। ये तीन किस्में हम यहाँ पे किसान भाइयों को बताना चाहते हैं, एक बार और सुन लें, विराट, हम 16 और IPM 2-3। ये तीन किस्में हैं जो 60 से 65 दिन, कई बार ये 55 दिन में भी हो जाती हैं, और उपज देने की क्षमता इसमें 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा उपज ये निर्भर करता है कि आपने इसका मैनेजमेंट कैसे किया है। तो ये तीनों जो मुख्य दलहनी फसल है उसकी किस्में हमने आपको बताई, आपने इसी किस्मों का इस्तेमाल आने वाले खरीफ दलहनी फसल की खेती के लिए करना है। जी
1: तो आपने तो बता दिया अरहर, उड़द, मूंग, ये
0: जी,
1: सब की खेती के बारे में।
0: जी,
1: कुल्थी की भी खेती बरसात में की जाती है।
0: अगर इन फसलों को लगाने में किसी वजह से देरी हो गई, जैसे अरहर नहीं लगा पाए, उड़द नहीं लगा पाए, या तो बहुत ज्यादा बारिश हो गई या सूखा पड़ गया, किसान भाई को दिक्कतें आती हैं कई बार सरकार जो है कंटिजेंट प्लान करती है कि खरीफ में जो फसलें नहीं लग पाई, धान नहीं लग पाया, दलहन नहीं लग, तो अब क्या करें, खेत खाली कैसे छोड़े। ऐसे में कुल्थी एक ऐसी फसल है जिसको हम अगस्त सितंबर में भी लगाएंगे तो उपज कम नहीं होगा। तो अब हमें ये जानना होता है कि इसकी कौन सी किस्म हम लगाएं। तो बिरसा कुल्थी एक या VLG 19 या इंदिरा कुल्थी एक, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बिरसा कुल्थी एक, VLG 19 और इंदिरा कुल्थी एक, इसको आप कतार से कतार की दूरी 30 और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें, ये करीब 100 दिन 110 दिन के अंदर ये काटने लायक हो जाती हैं, और देर से लगाने पे भी ये 8 से 10 क्विंटल उपज जरूर मिल जाता है। तो हमारे किसान भाई को जो भी किस्में और जो भी हम लोगों ने दलहनी फसल की चर्चा की, इन्हीं को आपको आने वाले समय में आपको लगाने की आवश्यकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई को मुनाफा हो सके।
1: जी, डॉक्टर नीरज कुमार जी, आज हमारे स्टूडियो में आप आए और किसान भाइयों को
0: जी
1: खरीफ दलहनी फसलों की खेती करने के लिए और उसकी तैयारी करने के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी।
0: हाँ,
1: इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: शुक्रिया, नमस्कार, जोहार किसान भाई बहनों।
2: तो सुषमा बहन, बड़ा नगद जानकारी अखन हमरे मन के होलक, खरीफ दलहनी फसल कर खेती कर तैयारी और किस्म कर चुनाव कैसे हमरे मन कर सकेला, बड़ा बढ़िया जानकारी डॉक्टर नीरज कुमार दिले। इनका से बतियात रहे भाई कृष्ण जीवन पौराणिक।
3: हाँ देखो भाई, जानकारी कर साथे साथे अब हमरे घर खेती बाड़ी कर कार्यक्रम कर बेरा भी ही है सिरायला, और अब शुरू हुएला हमारे दुनिया युवा सभा
2: एकदम। तो सबके फिर से हमरे मन अपन कार्यक्रम में स्वागत करीला, खास करके नौजवान भाई बहन। हाँ। के और सुषमा बहन, देखो कहल जाए कि हमरे कर देश नहीं युवा मन कर देश है, और खास करके आवे वाला कुछ साल में रोरे मन देखब नहीं कि युवा मन कर जो संख्या है से यहाँ कर जनसंख्या कर कम से कम 50% ज़्यादा युवा मन कर संख्या रही। तो समझ सकेला कि जोन देश में चाहे जोन ठिना युवा मन कर शक्ति रहेला वो कितना तेजी से आगे बढ़ेला।
3: एकदम बढ़ेला भाई। और देखो यहाँ ये बात भी है कि हमारे देश भारत में जे खन कहली रवरे कि युवा मनकर सबसे बगरा राइट चलेला, और देखो और युवा मनकर जेठन बगरा जोर चली वहाँ तो देश आगे बढ़बे करी, कारे कि उमन सबके जोश से करें कोनो भी काम, अपन में ठाइन के जे चीज के करेक है तो करेक है, सन ठाइन के करें तो ऐसन में कोनो भी काम जल्दी और बढ़िया होवे कर संभावना होवे।
2: एकदम सही कहली, कोई भी काम अगर ऊर्जा से करल जाए नहीं तो जल्दी भी होवेला और काम बढ़िया भी होवेला। हाँ। नहीं सुपर टोरे कहती तो आज कर युवा के हमरे मन के कहल भी जाला कि राष्ट्र निर्माता है, आवे वाला पीढ़ी जे है ओहे आगे देश के लेके चली, लेकिन सबसे बड़ बात क्या है कि आज कर युवा के हमरे मन के जागे कर दरकार है।
3: एकदम दरकार है।
2: अब देखब नी सुषमा बहन की गाँव घर में अंदाज करत हो रोरे भी कि बहुत युवा मन नी आज अपन समय के बेकार में बर्बाद करते जाते हैं।
3: एकदम एकदम नगद बात के कहले रहो रे। देखो ओमन अपन में जे

0: काम आगे करे है ओके उकर बटे ध्यान नहीं दे के उमन अपन काम से भी भटक जात है
1: एकदम नशाखोरी सबसे बड़ा
0: जरूर
1: समस्या
0: जरूर
1: हमारे मन कर बीच में है कि युवा मन में खास करके लत लागल है कोई भी चीज़ कर नशा। देखो नशा खाली माने शराब का सेवन ना लागे, दारू का सेवन ना लागे, अलग अलग तरह का नशा है। जैसे आजकल
0: जरूर
1: देखब नहीं तो सबसे बड़ा नशा अगर कहब निरोरे तो मोबाइल का
0: मोबाइल
1: नशा
0: फोन
1: है।
0: एकदम बेस बात ये कहली रहो एकदम डुबल रहे ना चाहो ऐसा ऐसा आजकल का कब हुआ बहुते चीज आ जा है कि आदमी मन हुआ चाहे कहब इंस्टा कहो फेसबुक हो ऐसा ऐसा चीज में मोबाइल देखो बढ़िया उकर उपयोग कर ले बेसो काम करे ला और आदमी के बगड़ाई के में भी जगह उकर उपयोग करे पर निर्भर करे ला
1: कहल भी जाए नहीं कि देखो विज्ञान हमरे मन ले अगर वरदान है तो अभिशाप भी है।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: हमरे मन के मोबाइल अगर मिल है नहीं तो उकर हमरे मन के सदुपयोग करे
0: एकदम
1: है।
0: करे है
1: आज कर समय में देखो हमरे मन कितना बढ़िया से हर चीज कर उपयोग हमरे मन घर बैठले कर लेती, चाहे केकरो से दूर में रह के बतियाना हो, उकर से बात करे हो, चाहे अगर कोनो में सामान खरीदारी करना हो, चाहे बैंक का काम हो, सारा काम हमरे मन मोबाइल से कर
0: मोबाइल से
1: लेवेला।
0: करे के
1: तो
0: लायक
1: ये सब जरूरी काम है लेकिन कह धाम होवेला कि आदमी नहीं ठीक है रूड़े कहती हमरे मन सोशल मीडिया कर दौर में कहा होवेला नहीं कि बस एक ठो चीज अगर जरूरी काम के देखे शुरू कर ली तो देखते देखते देखते घंटों बीत जाते
0: एकदम
1: और
0: हाँ
1: हमारे मन का बेकार समय चल जाते।
0: जरूर
1: अब धीरे धीरे क्या हुआ था कि युवा जे शक्ति है हमारे मन के वो इकर में अपन टाइम के समय के बर्बाद
0: हाँ
1: करते
0: हाँ
1: जाते तो इकर से हमारे मन के नुकसान है। अब
0: एकदम नुकसान है
1: सोचे समझे कर क्षमता भी हमारे मन के धीरे धीरे कम होते जाते। सुषमा बहन
0: हाँ
1: याद करो रो रे भाई छोट हो अपनी से बेरा हर चीज रो के याद रहत रहे नी।
0: हाँ याद रहत रहे और हमरे का जे दौर रहे उस समय जे खन छोट रही हमरे और खेले कूदे की मोबाइल मन नहीं रहे और मोबाइल नहीं रहे ओकर से जेकर से हमरे मन अपन गांव घर में आस पड़ोस में गांव कर मैदान मन में खेलत रही जेकर में संग साथी मन अपन साथे दूगो बातचीत भी हो जात रहे और का कहब अपन आज आजीवन से मिले घूरे कर भी बेरा मिल जात रहे
1: हाँ
0: एखन तो वो
1: कहानियों
0: सब
1: सुन
0: भेटा
1: लेते रही।
0: हाँ एखन तो वो सब देख के नहीं मिले ला
1: एकदम और उकर चलते क्या होत रहे नहीं कि हमरे कर जे स्वास्थ्य भी रहे वो भी बढ़िया रहत
0: बढ़िया
1: रहे क्योंकि
0: रहते
1: हमरे मन
0: जरूर
1: बाहर खेले के लिए जात
0: हाँ
1: रही। अब क्या है धीरे धीरे चलन अब घर भीतरे और अपन एक ठो कोठरी तक में हमरे मन सीमित हुई
0: सीमित
1: जात
0: हो
1: रही।
0: जाते
1: तो
0: जरूर
1: धीरे धीरे हमरे मन कर जे क्षमता है रोग से लड़ कर जे क्षमता हमरे मन कर शरीर में है से धीरे धीरे कम होते जाते। कोई भी रोग आवत है नहीं तो बहुत जल्दी हमरे मन के धर लेते। कारण है कि हमरे मन कर जे लड़े कर क्षमता है शरीर के भीतरे में कोई भी रोग से वो धीरे धीरे कम होते
0: एकदम
1: जाते
0: सिरा
1: क्योंकि
0: जाते
1: हमारे मन तो अपन एक सीमित होते जाते छोटा सन कोठरी में एक ठो। तो भाई इकर से हमारे मन के आज निजात पावे कर दरकार है। संगे संगे एक ठो चीज हम देखी लानी कि युवा मन में सुषमा बहन सबसे बड़े एक ठो और समस्या का है कि कोई भी चीज के बचाए के ऊपर मन के ध्यान रखे।
0: एकदम ना के जे जेतई कर उमन के जरूरत ना के ओकर से बगरा उमन के खर्चा हो जात है चाहे वो बर्बादी कर और बढ़े के लाइक है
1: हाँ अब देखो नहीं छोटा सा एक तो बात हम कहा थी कि जितना सीमित संसाधन हमारे मनठीना है जैसे पेट्रोल है डीजल है
0: हाँ
1: कोयला है ये सब तो हम लोग मनकर सीमित है
0: एकदम
1: कुछ ना कुछ
0: सीमित
1: दिन बाद
0: हाँ
1: ही
0: हाँ
1: खत्म होबे
0: एकदम
1: करी
0: और एखन ये सब कर दौर देखे के लिए भी मिले के लाइक
1: मिले
0: है
1: के लाएगी। तो हमारे मन के बचत करे के चाहिए। कह दहा होला कि बेकाम कर भी हमारे मन अपन गाड़ी के निकलाइला
0: हाँ
1: और घूमे के लिए चल जाएला। तो
0: जरूर
1: आज जरूरत है कि हमारे मन के अपन जरूरत भर अपन काम के करे के है।
0: करेक्ट है
1: अब बेमतलब कर गाड़ी में हमारे मन के घूमे के नखे मान लो अगर जोन ठीना रोड़े पैदल जाए के काम कर सकी ला ठीना पैदल जाए के रोड़े करूँ
0: हाँ
1: उकर से क्या है कि पर्यावरण हमारे मन का शुद्ध रही और जो
0: साथे
1: सीमित संसाधन है उकर भी बचत हुई।
0: वो भी बचत हो भी साथे अपन जीव सवांग में जे शरीर कर कसरत भी हो जाए
1: हाँ हाँ अब है कि हमारे मन खाए खाए के सीधे मोटाते जाते।
0: वो ये है कि अपन जीव के का कब हमरे के लागत है कि हमरे मन अपन जीव के सुख देवा थे बुदा हमरे
1: अपन
0: सुख नहीं
1: जीव के
0: दे के
1: हाँ
0: अपन जीव के दुख देवे के
1: एकदम
0: लाएगी
1: एकदम ठीक कहती भाई एकर लंबा प्रभाव हमरे मन के देखे के लिए मिलेला जब हमरे मन के नाना तरह का रोग कर सामना करे के पड़ेला। तो सुषमा बहन देखो बातचीत हमरे मन कर लागल रही बड़ा दिन बाद भेटाईला तो गोठियाते गोठियाते ढेर बात निकल
0: हाँ
1: जाएला
0: अब बेरा केर पतो नहीं
1: पतो
0: चलेला
1: नहीं
0: तो चलो
1: चलेला।
0: हमरे मन ने ये जानकारी मन कर साथे साथे अब रिज रंग बटे भी बढ़ीला और सुनीला नागपुरी लोकगीत छिके गाहे एग्निश कुमार और संगी मन

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुषमा बहन, देखो हमरे मन कर जे भी गांव कर छुआ मन है, उमन पढ़ लिख के अपन स्वावलंबी भी बन सके ना, अपन से उमन कुछ भी काम शुरू कर सके ना, और उकर ले सरकार बटले भी बहुत मदद भी देवल जाएला, तो स्वरोजगार कार्यक्रम भी चलाल जाएला कि जितना भी युवा भाई बहन मन है मन ले।
4: हाँ।
3: तो कैसा हमरे मन के कुछ जानकारी भी कर ले चाहिए।
4: जानकारी है जेकर में हमने नागपुरी में जानकारी करब, ग्रामीण युवा और स्वरोजगार कार्यक्रम जिके जानकारी दे हैं राजेश कुमार महतो।
5: ग्रामीण युवा और स्वरोजगार कार्यक्रम, झारखंड में तीव्र गति से ग्रामीण युवा मनक शहर में पलायन के रोके के लिए और स्थानीय संसाधन कर उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्र कर विकास ले सरकार दन से बहुत सारा स्वरोजगार कार्यक्रम चलाल जाए है। इ कार्यक्रम मन कर माध्यम से अशिक्षित और शिक्षित दुयो तैर कर युवा के रोजगार देवे प्रयास करल जाए है। हमरे लिए कुछ कार्यक्रम देख सकेला, जैसे कि कृषि संबंधी कार्यक्रम, झारखंड में प्रचलित और परंपरागत कृषि में बदलाव लाइन के आधुनिक तकनीक कर उपयोग करते कृषि कर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई प्रयास करल जाए है। इकर ले आधुनिक यंत्र जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर, थ्रेसर आदि मशीन कर प्रयोग करल जाते है। सरकार ई यंत्र मन के किने ले अनुदान देवे लगी है ताकि नवयुवक मन नवीन कृषि तकनीक अपना के अपन स्वरोजगार अपनावें। और इकर साथ में झारखंड में कृषि उत्पादन भी बढ़ी और युवा मन के रोजगार भी मिली। इकर अलावे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, रामकृष्ण मिशन विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान केंद्र हजारीबाग और गोड्डा द्वारा झारखंड कर जलवायु कर हिसाब से नवा बीज जैसे धान, गेहूं, मटर, मकई, सूरजमुखी, मड़ुआ आदि कर बीज कर विकास करल जाए है। इकर से फसल कर उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ है। इकर से नवयुवक मन कर कृषि के प्रति रुझानों बढ़ है। इकर अलावे फूल और फल कर विभिन्न किस्म कर उत्पादन झारखंड में करल जाते हैं। दूसर हमरे देख सकीला पशुपालन में, झारखंड कृषि और सहकारिता विभाग कर प्राश्रय में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और सुअर पालन ले उन्नत नस्ल तैयार कर है। जैसे मुर्गी कर नवा किस्म झारसीम जे पहले कर तुलना में 3 गुना ज्यादा अंडा और मांस कर उत्पादन करेला। सुअर पालन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कर सहयोग और उकर देख रेख में विभिन्न जिला में पिगरी फार्मिंग के बढ़ावा दिल जाए है। इकर माध्यम से स्थानीय युवा मन रोजगार अपनाए हैं। झारखंड में मत्स्य कर उत्पादन हमेशा मांग कर तुलना में कम है। इके देखते परंपरागत मत्स्य पालन कर साथ साथ आधुनिक फिश केज तकनीक के अपनाल जाए है। इकर से मत्स्य कर उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़े है। रेशम उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड

भारत में नामी ठाव है। यहाँ केंद्रीय प्रसार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी कर स्थापना कर संगे झारखंड में तसर उत्पादन कर नवीन स्वर्णिम अध्ययकर शुरुआत होलग। आज रेशम कीट पालन से लेके धागा बनाई और वस्त्र निर्माण में स्वरोजगार कर संभावना बगरा हो जाए है। इकर ले बहुत सारा युवक मन अपन मेहनत कर माध्यम से नया अपन रोजगार खड़ा करे पाए रहे। लाह उद्योग में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान नामकुम का स्थापना से झारखंड में लाह उद्योग के बढ़ावा मिल है और इकर माध्यम से युवा मन लाह कर बहुत तरीके सामान मन बना के बाजार में बेचे लगे हैं, जेकर से युवा मन के आयकर साधन भी जुटे और बेरोजगारी भी दूर हुए हैं। झारखंड ग्रामोद्योग और खादी बोर्ड कर अगुवाई में झारखंड कर युवा मन के विभिन्न क्षेत्र में प्रशिक्षण और अपन रोजगार स्थापित करे ले परामर्श और सहयोग दिल जाते। इस संस्था ग्रामीण कारीगर द्वारा उत्पादित माल ले बाजार कर व्यवस्था भी करेला। इकर माध्यम से बहुत सारा नवयुवक मन रोजगार कर सृजन हुए है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इकर माध्यम से नवोन्मेषी युवा मन के 6 महीना से 1 साल तक कर प्रशिक्षण दिल जाएला। प्रशिक्षण कर उपरांत 8,000 रूपया प्रोत्साहन राशि और प्रशिक्षण संबंधी सर्टिफिकेट भी दिल जाएला। इकर तहत मोटर ड्राइविंग, मोटर रिपेयरिंग, टीवी और रेडियो रिपेयरिंग, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, पापड़ अचार कर निर्माण, ब्यूटी पार्लर, सिंचाई कढ़ाई, वीडियोग्राफी आदि का प्रशिक्षण दिल जाते। इस कार्यक्रम कर माध्यम से झारखंड कर ग्रामीण इलाका में बहुत सारा छुआ मन और युवा मन अपन स्वरोजगार अपनाए हैं और अपन पैर में खड़ा हो पाए हैं। इकर अलावे हमरे देख सकेले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भारत सरकार कर महत्वाकांक्षी योजना के जिके झारखंड सरकार भी लागू कर रहे। इकर माध्यम से नवयुवक मन के अपन कारोबार कर विस्तार करे ले और नया कारोबार शुरू करे ले ऋण उपलब्ध करा जाएगा। इकर तहत 3 किस्म का ऋण देवल जाएगा, जैसे शिशु ऋण ये 50,000 रूपये तक के रहेगा, किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख रूपये तक रहेला, तरुण ऋण 5 लाख रूपये से 10 लाख रूपये तक रहेला। ई योजना कर माध्यम से युवा मन अपन आवश्यकता कर मुताबिक अपन रोजगार कर शुरुआत कर रहे हैं और झारखंड में ई योजना बहुत अच्छा तरह से आगे बढ़ रहे हैं। योजना मन कर माध्यम से झारखंड कर लाखों युवा मन के रोजगार मिल है, साथ साथ रोजगार कर माध्यम से युवा मनक खास विकास हुए हैं। ग्रामीण झारखंड में नवयुवक मन के आगे बढ़ा लें, सरकार बहुत सारा योजना और भी लागू कर रहे हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना। हमरे इकर माध्यम से देख सकील किसान अपन जरूरत के मुताबिक बैंक से लोन लेवाना और अपन सुविधा अनुसार उनके समय से बैंक में वापस कराना। इकर चलते बहुत सारा किसान जे की पहले खेती बाड़ी नहीं करे पारत रहे, आज उकर सफल रूप से आगे बढ़े के लिए उनके सहायता मिल है। किसान मन इकर चलते अपन पैर में खड़ा हुए हैं और आगे बढ़े प्रयास कर रहे हैं अपन स्तर से। कृषि कर क्षेत्र में और भी बहुत सारा बदलाव आए है, जैसे हमरे देख सकील आधुनिक संसाधन के रूप में हमरे ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकल इरीगेशन आदि कर प्रचलन आगे बढ़े है, जेकर चलते किसान कम लागत में ज्यादा मूल्य कर अपने फसल का उत्पादन करे पारत हैं। इकर साथ साथ हमरे के झारखंड के जलवायु के हिसाब से फल उत्पादन और फूल का उत्पादन ये दोनों के बढ़ावा मिल है। नया तरीके से खेती के करे वास्ते पोली हाउस का निर्माण करत हैं और उकर में फूल कर और फल कर खेती करे लगे हैं। इकर अलावे कुछ फल जे की बाहर परिवेश में ही हो सके, जैसे आम है, लीची है, तो इकर भी बहुत अच्छा झारखंड में स्कोप है और युवा मन आगे बढ़ के इस काम के करे लगे हैं। झारखंड कर मिट्टी फल कर उत्पादन ले बहुत अच्छा है और यहाँ वैज्ञानिक ढंग से उकर निवेश करके उके रोप के बहुत अच्छा से इकर खेती करल जा सकेला। यहाँ कर बहुत सारा जे अनुसंधान संस्थान मन है या फिर यहाँ शिक्षा कृषि कर क्षेत्र में शिक्षा संस्थान मन है और आगे बढ़ के उमन के सहयोग करत हैं। सरकार भी युवा मन ले बहुत सारा लोन कर

0: सुविधा देवत हे या फिर उके बहुत सारा अनुदान देवे लायक है जेकर चलते किसान मन अपन से आगे बढ़ के ई काम के यानी खेती बाड़ी काम में आगे बढ़े हैं। इकर साथ साथ बहुत सारा छोटा छोटा जो पहले के व्यवसाय रहे जैसे खेती बाड़ी के साथ में ग्रामीण इलाका में परचून कर दुकान या फिर और दूसरा राशन दुकान या फिर बाजार हाट इकर माध्यम से ही बहुत सारा लड़का मन अपन स्वरोजगार अपनाए हैं। बहुत सारा युवा मन किसान और शहरी आदमी के बीच के कड़ी कर काम करे लायक हैं अपन व्यापार के माध्यम से और उके सुविधा मुहैया कराते हुए अपन आजीविका कर पालन करत हैं। हमरे देख सकेला कि झारखंड जगह बन रहे से घर से एखन तक काफी बदलाव आ जाए है। झारखंड कर शुरुआत में झारखंड जब बन रहे से घर यहाँ गरीबी और विकास दर बहुत कम रहे मुदा एखन हमरे देखी ला कि झारखंड में विकास भी काफी बढ़ है गरीबी दूर हुए है और साथ साथ इकर विकास करे आशा भी और बढ़ जाए है। हमरे देखी ला कि एक बार विकास कर गति जब शुरू हो जाएगा तो वो रुकेला नहीं। आखिरी में हमरे युवा मन के झारखंड कर ये युवा मन है से के हमरे सलाह देवे चाहिला और उमन के कहे चाहिला कि रोजगार कर तलाश में शहर बटे ना जाए। शहर में जिते भीड़ भाड़ है जिते परेशानी है वहाँ भी जीना आदमी के दुभर हो जाएगा से ले अपन रोजगार का साधन अपन गांव में अपन आसपास में तलाश में तो ज्यादा अच्छा रही है। इकर से अपन तो विकास होगी अपन परिवार के भी विकास होगी अपन राज्य के विकास होगी और सबका देख रेख भी करे पारे।
1: तो भाई बहुत नगद जानकारी होला कि ग्रामीण युवा मन ले स्वरोजगार कार्यक्रम कौन कौन चलाल जाते हैं। सरकार बटले बहुत तरह का कार्यक्रम है जेकर से युवा भाई बहन मन जुड़ सके ना और उकर फायदा भी उठा सके ना। बढ़िया जानकारी देवत रहे राजेश कुमार महतो।
2: हाँ तो हमरे मन जाते जाते बताए चाहब कि ये कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर।
1: तो सुषमा बहन अब जाए कर बेरा हुआ थे
2: सबको
1: विदा लेवे के चाहिए।
2: चलो
1: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शाम के 7 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचत को लेकर उठाया बड़ा कदम। वर्चुअल सुनवाई और कारपोलिंग समेत कई उपाय लागू। राज्य में जनगणना 2027 का अहम चरण कल से होगा शुरू। रांची सहित सभी जिलों में 14 जून तक चलेगा डोर टू डोर मकान गणना और हाउस लिस्टिंग अभियान। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्रेजरी घोटाला की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। खूंटी में 1400 मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। और झारखंड में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने 17 और 18 मई को तेज आंधी और बारिश का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपोलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है।

0: उभरा है।
1: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बम हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
0: राज्य में जनगणना 2027 का अहम चरण कल से शुरू होगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल से 14 जून 2026 तक शहर में डोर टू डोर मकान गणना और हाउस लिस्टिंग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान प्रगणक घर घर जाकर मकानों, परिवारों और रहवासियों से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे। इधर रांची नगर निगम द्वारा जनगणना कार्य में लगे पर्यवेक्षकों और प्रगणकों के बीच आधारित किट का वितरण किया गया। इधर गुमला जिले के उपायुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी दिलेश्वर महतो ने कहा कि जनगणना देश की महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से नीतियों के निर्माण, संसाधनों के समुचित वितरण और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड ट्रेजरी महाघोटाले को राज्य में संगठित भ्रष्टाचार और सरकारी धन की सुनियोजित लूट का गंभीर मामला बताया है। उन्होंने दावा किया कि अब तक करीब 14 जिलों में ट्रेजरी से लगभग 130 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले सामने आए हैं, जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता की आशंका है। बाबूलाल मरांडी ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। खूंटी के बरसा कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दो दिवसीय प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हो गया। समारोह के दूसरे दिन 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले करीब 1400 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि युवा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएं।
2: इस देश के प्रधानमंत्री ने परीक्षा पूर्व चर्चा का एक अभिनव प्रयोग करते हुए भविष्य के लिए विद्यार्थियों में एक नई विश्वास की जगाया, कॉन्फिडेंस बढ़ाया और अब भारत में शिक्षा का प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। आने वाला कल की जिम्मेदारी को लेने के लिए आप पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रयत्न आगे करते रहे।
0: राज्य के बहुचर्चित ग्रामीण विकास विभाग टेंडर घोटाला मामले में आरोपी अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने आज रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए पासपोर्ट जमा करने और न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची स्थित दूरदर्शन केंद्र में पीआईबी रांची द्वारा अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पीआईबी रांची भुवनेश्वर के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने किया। बैठक में दूरदर्शन, यूआईडीएआई, सीसीएल, एनटीपीसी, रेलवे और नाबार्ड समेत विभिन्न केंद्रीय संस्थानों ने अपनी उपलब्धियों और जनसंचार गतिविधियों की जानकारी साझा की। वक्ताओं ने स्थानीय भाषाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक तकनीक के माध्यम से सरकारी योजनाओं एवं सूचनाओं को आम लोगों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यालय प्रमुख डीसी हेम्ब्रम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव पद पर नवप्रणत अधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर नवप्रणत अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे जनहित, सुशासन और विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में आज रांची में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ

0: त्रिपाठी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता गणेश मिश्र ने संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और रणनीतियों की जानकारी साझा की।
1: स्थानीय समस्याओं में भी बहुत सारी ऐसी समस्या होती है जो स्थानीय लोग जूझते रहे, तो इन सारे चीजों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम किसानों की समस्याओं के साथ साथ स्थानीय समस्याओं को लेकर के प्रखंड कार्यालय में बहुत बड़ा धरना का आयोजन करेंगे और हम जनता की समस्या के समाधान के लिए डिमांड करेंगे। सरकार अपने ही किए गए वादों को पूरा करे, ये बात हम सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं।
0: सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां मुख्य मार्ग स्थित गोविंदपुर मोड़ पर जल्द ही आधुनिक बस पड़ाव की सुविधा उपलब्ध होगी। जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने कहा कि इस परियोजना से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ साथ जिला परिषद के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
2: गोविंदपुर ग्राम में यहाँ बस स्टैंड बनने से आसपास के सभी ग्रामीणों को इसका सुविधा होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ आवागमन का भी यहाँ सुविधा होगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि ये बस स्टैंड जो तय समय है उसी के अंदर इसको पूरा करना है। इस कार्य के लिए दोनों सांसद को इसका आवंटन किया गया है।
0: रांची में 17 मई को आयोजित होने वाली झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने जिले के 64 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज रांची सहित 14 जिलों में तेज हवा गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। इधर राजधानी रांची सहित कई जिलों में दोपहर बाद से रुक रुक कर बारिश जारी है। वहीं लोहरदगा में आज आए तेज आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने कल राज्य के उत्तर पश्चिम और उससे सटे उत्तरी हिस्सों को छोड़कर अन्य जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचत को लेकर उठाया बड़ा कदम। वर्चुअल सुनवाई और कार पुलिंग समेत कई उपाय लागू। राज्य में जनगणना 2027 का अहम चरण कल से होगा शुरू। रांची सहित सभी जिलों में 14 जून तक चलेगा डोर टू डोर मकान गणना और हाउस लिस्टिंग अभियान। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्रेजरी घोटाला की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। खूंटी में 1400 मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। और झारखंड में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने 17 और 18 मई को तेज आंधी और बारिश का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता।
1: महागांव में ठाकुरगंज में विधायक ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पिछले दिनों SIR के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच BLO प्रशिक्षण को संबोधित किया। मंत्री श्रीमती पांडे ने कहा कि लाख झंझावात भी हो, परिस्थिति विपरीत हो, बावजूद जायज लोगों का नाम किसी भी स्थिति में मतदाता से सूची से ना कटे, इस पर ध्यान रखना है। केंद्र सरकार किसी भी तरह की गलत मनसा को कार्यकर्ता पूरा नहीं होने दें। SIR सर्वे के दौरान इन सभी बातों का ध्यान रखने पर जोर देते हुए श्रीमती पांडे ने कहा कि
2: SIR चल रहा है, आपके वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा है, यह प्रक्रिया चलेगी। अभी आप खुद से ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं और आने वाले समय में और जो राजनीतिक पार्टी के DLA हैं वो लोग आप लोग से संपर्क करके आप लोगों का नाम वोटर लिस्ट में हो, सही जो मतदाता है वो छूटे नहीं, यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ये सुनिश्चित करें कि हम लोग अपने वोटों की रक्षा कर पाए और उसमें प्रशासन और DLA है वो आप लोगों के साथ काम करेंगे।
1: महागामा विधायक सह ग्रामीण विकास मंत्री

0: पांडे सिंह ने मेहगमा प्रखंड के परसा गांव में सामुदायिक आधारित क्लाइमेट स्मार्ट अवसंरचना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्घाटन के माध्यम से क्षेत्र के 60 से 70 एकड़ जमीन वाले किसानों को सुविधा मुहैया होगी। सोलर सिस्टम आधारित इस परियोजना में जीएसपीएल एवं प्रदान संस्था के सामूहिक रूप से सहयोग है। इस दौरान मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा,
1: कैसे पानी की व्यवस्था सिंचाई के लिए किसानों को उपलब्ध हो, इसका एक प्रयास है। डीएसएलपीएस और प्रधान ने मिलकर परसा गांव में सोलर लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट का हस्तांतरण किया है। अपने सीएलएफ की राशि प्रधान के सहयोग लेते हुए इसको आज पूर्ण किया है, जिससे करीब 62 एकड़ जमीन इनके गांव का सिंचित हो गया पूरे साल के लिए। मैं इसके लिए परसा गांव की सभी दीदियों को बधाई देती हूँ।
0: गोड्डा जिले के बुआरीजोर प्रखंड में दो पहाड़िया आदिवासी महिला की मौत का कारण झोलाछाप डॉक्टर बना है। 10 दिन पहले प्रसव कराने आई पहाड़िया महिला रूबी मालतो के ऑपरेशन के बाद महिला की स्थिति बिगड़ गई। घटना के बाद महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, दौरान महिला की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस घटना के ठीक 7 दिन बाद ही बुआरीजोर के कुसुम घाटी में झोलाछाप चिकित्सक के चक्र में आदिवासी महिला की जान चली गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गुरुवार की सुबह धर्मी पहाड़ को राजेंद्र शाह नामक चिकित्सक ने टाइफाइड की वजह बताकर सुई लगा दिया। इसके बाद स्थिति बिगड़ गई और महागामा रेफर अस्पताल लाने के क्रम में महिला की मौत हो गई। आरोपी चिकित्सक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोड्डा जिले में लगातार सड़क हादसे को देखते हुए प्रशासन एवं पुलिस की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है। लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए गोड्डा एसपी मुकेश कुमार के नेतृत्व में रोड सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अडानी समूह की ओर से भी आवश्यक पहल की गई। एसपी मुकेश कुमार ने लोगों को सीट बेल्ट, नशा कर वाहन न चलाने, हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने आदि की सलाह देते हुए लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि वो अपनी जान केवल इसी माध्यम से बचा सकते हैं।
2: लोगों में यह लगातार देखा जा रहा है कि वह यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से अधिकतर एक्सीडेंट हो रहे हैं। हर एक थाना में इंस्ट्रक्शन दिया गया, हर एक पेट्रोलिंग पार्टी उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रैंडमली किसी भी जगह पे चेकिंग अभियान चलाएंगे। कोशिश में है कि लोगों के दिमाग में यह बात चले, अगर सड़क पे चल रहे हैं तो किस किन नियमों का हमको पालन करना है, ताकि जो बढ़ता हुआ दुर्घटना है कम किया जा सके।
0: आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर।
3: अभी आप सुन रहे थे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: रेडियो रे होकुरु डुरु आदिवासी अखड़ा अयमतन सनाम हगांड मिसिको अलिंग सोनी कुमारी उंडो सुनाना वोय पाए तिकिन पाए ते एकेर जीवन ते एबिल सिबिल जोहार
1: जोहार
0: दादा चिल के मिना बिना बरसिंग
1: इया बढ़िया के मिना लेंगे लेकिन ए नेन गरम ते अकुल बकुल ने अटकारो तना
0: सारी काजी हगांडो मिसिको ना बरसिंग एसो पुरे गे जटे तना उंडो तरसिंगी गमा उरे तना जटे के ते गमा रे एसो उगुम उगुम गे दावा सर को जैकेट काइड दे यल का दावा
1: इया सारी गे अलिंग तिसिंगे डोंगल पाइतलिंग जुगु खने बुंडो बेटा बेटा ते सामा गरम ते उलु बुलु तन लिंग अटकार किदा अंडो ना आगामा ना तारासिंगी पे गामा किदा एंडे नंग जुको रियानो अटकार ओताना
0: सारे कजी
1: हागा अंडो मिसिको तिसिंगे टुटका जगह लोते दुरंग कोलिंग हाबुर हुजु तेडे मांगते तिसिंगे टुटका जगह छोटी छोटी बचत भविष्य के लिए जरूरी भविष्य सुरक्षित बाई लगिर ओंडो जीवन तनाव मुक्त बाई लगिन हुड़ी हुड़ी बचत ऐसो दरकार सारी चिका आगे
0: सारी गे
1: अंडो हुड़ी हुड़ी बचत गे जा मुसिंग इसु पूरे पैसा टका बाई हुआ ओंडो

0: अभी आप सुन रहे थे हो भाषा में कार्यक्रम आदिवासी आखड़ा, और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम सहिया।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार है।

0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का सहिया रेडियो कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोता भाई बहन को चंपा मुनि का जोहार। जन स्वास्थ्य से जुड़े इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे PLA की बैठक की आवश्यकता, महत्व और उनमें समाहित समुदाय हित के बारे में। इससे जुड़ी अहम जानकारियां आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग दे रही हैं हमारी पूर्णिमा बहन। जोहार पूर्णिमा बहन।
1: आपको भी जोहार चंपा मुनि दीदी। अपने श्रोता भाई बहन से PLA की बैठक से जुड़ी बातें साझा करते हुए अच्छा लग रहा है। इस बारे में हम अपने श्रोताओं को अवगत कराना चाहते हैं कि

0: न्यायालय की बैठक सहिया बहनों के सहयोग से आयोजित होती है, जिसमें समुदाय के सभी महिलाओं, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, पुरुषों और किशोर किशोरियों को बुलाकर लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं और उसके निदान पर चर्चा होती है। वही पीएलए की बैठक में लोगों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वास्थ्य विभाग की अहम योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इस बैठक में पंचायत और ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।
1: बिल्कुल पूर्णिमा बहन, इसके साथ ही श्रोताओं के लिए ये जानना भी जरूरी है कि पीएलए की बैठक में पिछड़े, कमजोर और वंचित समुदाय के लोगों की भागीदारी अधिक से अधिक हो, इसके लिए बैठक के उचित स्थान का चयन किया जाता है। वहीं पीएलए की बैठक में स्वास्थ्य और पोषण पर जोर देने के साथ साथ समुदाय के लोगों को टीकाकरण, प्रसव पूर्व जांच और संस्थागत प्रसव से जुड़ी जानकारियां दी जाती है, ताकि मां, बच्चा और गर्भवती महिलाओं को बचाया जा सके। वहीं बाल विवाह जैसी कुप्रथा के गंभीर परिणामों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाता है।
0: सही बात है चंपा मुनि दीदी, हमें लगता है कि पीएलए की बैठक के उद्देश्य और महत्व के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताने के लिए हम लोगों को बिना किसी देर के सीधे सहिया कार्यक्रम की राज्य समन्वयक अकय मिंज जी से मिलना चाहिए।
1: आप तो मेरे मन की बात कह रही हैं पूर्णिमा बहन, अब शुभ काम में देर कैसी, चलिए अकय मिंज जी से मिलकर जानकारी लेते हैं।
0: जोहार अकय दीदी, बहुत दिनों बाद आप हमें फुर्सत में मिली हैं। लगता है हमारा काम हो जाएगा।
2: आओ पूर्णिमा, सब कुशल तो है ना? बैठकर बताओ आखिर किस काम की बात कर रही हो।
0: अकय दीदी, सब कुशल ही है, बस आपसे एक जरूरी काम था। असल में आज हम सहिया रेडियो के श्रोताओं को पीएलए की बैठकों के महत्व और उससे होने वाले समुदाय के हित के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इसी बारे में आपसे विस्तार से जानकारी लेने आए हैं, ताकि हमारे श्रोता भी जान सकें।
2: पूर्णिमा, तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी लगती है कि जब भी आती हो लोगों के हित की ही बात करती हो। बताओ तो सही, क्या जानना है मुझसे?
0: पहले तो आपसे यह जानना चाहते हैं कि समुदाय के बीच में होने वाले पीएलए की बैठकों का क्या महत्व है और बैठक में समुदाय के लोगों को शामिल होने का उद्देश्य क्या है।
2: किसी भी काम को करने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी होता है। जब जानकारी होती है तो लोग स्वयं कदम उठाते हैं एक बदलाव के लिए। पीएलए बैठक पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन, पी पार्टिसिपेटरी, एल लर्निंग और ए एक्शन है, अर्थात सहभागी सीख और उसके अनुसार कदम उठाना। तो ये बैठक ऐसी बैठक है जिसमें गांव के सभी लोग आते हैं, एक साथ चीज़ों को समझते हैं, जागरूकता के साथ जानकारी बढ़ाते हैं और किसी काम के लिए वो एक साथ कार्य करते हैं। और इसके बारे में मैं आपको आज और बेहतर रूप से बताना चाहूंगी।
0: अब यह बताएं कि पीएलए बैठकों के लिए क्या कोई तय प्रक्रिया या मापदंड होते हैं जिन्हें अपनाया जाना जरूरी होता है?
2: चूंकि समुदाय के लोगों को एकजुट करना है, जागरूक करना है और उनको स्वास्थ्य के प्रति कदम उठाने के लिए उनको सहयोग करना है, यही उद्देश्य है पीएलए बैठक का। और इसलिए इस बैठक के लिए जो मापदंड या प्रक्रिया तय की जाती है वो ये होती है कि पहला चीज कि लोग आएं एक साथ और आके बैठे एक नियत तिथि में, एक नियत समय में। दूसरा है कि जो बैठक करने वाला है, जिसमें सहियाएं बैठक करती हैं, तो उसमें बैठक करने का तरीका, अब लोग अगर इधर उधर बैठेंगे तो सुनेंगे नहीं, कुछ खड़े रहेंगे तो सुनेंगे नहीं। तो पीएलए बैठक का तरीका है कि सब लोग गोल बैठते हैं और जो बोलने वाला होता है वो उनके बीच से होकर के बातों को रखता है। उस बैठक में विषय तय रहते हैं कि आज की बैठक में हम किस विषय पर बातचीत करेंगे, और सिर्फ बातचीत नहीं होती है पर उसमें कुछ खेल होते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं दिखाने के लिए, कुछ में सभी लोग एक

0: साथ मिलकर के आकलन करते हैं और उसके बाद वो पूरी गतिविधि के द्वारा लोग सीखते हैं और एक प्रतिवेदन भी तैयार करते हैं कि आज के इस विषय की बैठक में कितने लोग शामिल थे, कितनी धात्री महिलाएं थी, कितनी गर्भवती महिलाएं थी, कितनी किशोरी महिला थी, कितने बुजुर्ग लोग थे, कितने जो हमारे आदिम जनजाति समुदाय के लोग थे। तो इससे ये पता चलता है कि विभिन्न लोगों की भागीदारी में सहभागी रूप से एक साथ मिलके बैठक करके सामाजिक और जो स्वास्थ्य की बात है उसका आकलन करके एक सीख के साथ समुदाय आगे बढ़ता है।
1: अब हम यह जानना चाहते हैं कि पीएलए की बैठक में किन-किन लोगों का शामिल होना बेहद जरूरी होता है और इन बैठकों में हमारी सहिया बहनें क्या भूमिका निभाती हैं।
0: चूंकि हम पीएलए बैठक में विशेष करके मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, किशोरी स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो जिनकी हम बातें करते हैं उन्हें तो रहना बहुत जरूरी है। और इसलिए सबसे पहले समुदाय के लोग, जिसमें एक गर्भवती महिलाएं भी हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरी महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, हमारे गांव में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिन लोगों को कोई नहीं पूछता, जिन तक स्वास्थ्य की सुविधा नहीं पहुंची है, या जिन लोग अभी भी शिक्षा से दूर हैं, तो ऐसे लोगों को, सबों को एक साथ एक गुलाई में, एक लेवल में शामिल किया जाता है। और सहिया की भूमिका इसमें उत्प्रेरक रखी होती है। सहिया की भूमिका होती है कि लोगों को खेल भी खिलवाती है, खेल के माध्यम से सिखाती है, कहानी के माध्यम से सिखाती है। सहिया लोगों को प्रेरित करती है कि स्वास्थ्य की सुविधाओं को और स्वास्थ्य की समझ को अपने में बनाए और स्वास्थ्यमय जीवन का पालन कर सकें।
1: अब हमारे श्रोताओं को बताएं कि पीएलए की बैठकों के क्रियान्वयन में ऑड इवन यानी सम विषम व्यवस्था क्या है और इससे क्या सहूलियत मिलती है।
0: चूंकि हमारे राज्य में 42,000 सहिया हैं और हमारे पास बहुत अधिक गांव हैं और हर एक गांवों में बैठक होनी है और 42,000 सहियाओं को अगर हम प्रशिक्षित करते हैं तो 6 महीना का समय लगता है। उसी तरह से हमारे पास 2,500 सहिया साथी हैं। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि प्रशिक्षण करते करते सीखना, जैसे सहभागी सीख और उसके बाद एक्शन लेना, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन, ये विधि है। तो उसी तरह से हमने प्रशिक्षण के लिए भी ऑड एंड इवन मेथड चुना कि सहिया साथी को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया पीएलए की बैठकों के मॉड्यूल में और सहिया साथी अपने जो क्लस्टर है अगर उसके पास 15 गांव हैं तो ऑड गांव पहले चुनती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। तो पहले महीने में वो इन्हीं गांवों की बैठक करती है और उसमें क्या होता है, जो इवन नंबर के गांव हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये गांव में सहिया साथी नहीं जाती है, परंतु इवन गांव की जो सहिया है, एक नंबर गांव में जब सहिया साथी बैठक कर रही है तो एक नंबर गांव की सहिया साथी और 2 नंबर गांव की सहिया आके बैठक में भाग लेते हैं और ये लोग भी गांव वालों के साथ सीखते हैं सहिया साथी से। और फिर चूंकि सहिया साथी तो 3 नंबर के गांव में जाएगी तो 2 नंबर के गांव में दोनों सहिया, एक नंबर और 2 नंबर गांव की सहिया जा करके इसी बैठक को दोहराते हैं। और ये ऑड एंड इवन मेथड में एक सीख होती है कि करते करते ये सहिया साथी पहले महीने में केवल ऑड गांव में गई, दूसरे महीने में इवन गांव में गई और सभी गांवों में एक ही महीने में ये जो बैठक की विधि है, वो विषय है, वो पूरा होता है। इससे ये फायदा हुआ कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जब हम सहियाओं का पूरा प्रशिक्षण करते हैं तो जिसमें हमको लगभग 10-12 करोड़ रुपए का खर्चा होता है, 2,500 सहियाओं को सिर्फ हम 56 लाख रुपए में प्रशिक्षित करके, एक तो पैसों का भी बचत हुआ, समय का भी बचत हुआ और काम भी बेहतर हो पाया।
1: अब आखिर में एक जरूरी सवाल यह है कि समुदाय हित में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने, मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, कुपोषण दूर करने और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए पीएलए CLA की बैठकों का कितना प्रभाव

0: पड़ता है।
1: इसके लिए आपको दो तीन कहानियों को जानना जरूरी होगा। पीएलए बैठक के माध्यम से, खेल के माध्यम से, पब्लिक मीटिंग के माध्यम से लोग जब जागरूक हो गए तो लोग कदम भी उठाना शुरू किए। कोडरमा के सतगावा में ऐसा प्रखंड है जहां पर कि इसी पीएलए बैठक से 3 बाल विवाह को रोका गया। जो किशोरियां इस बैठक में आती थी उन्होंने सीखा कि बाल विवाह सही नहीं है, और इस बैठक में महिलाएं भी तैयार हुई कि वो अपने गांव में बाल विवाह नहीं होने देंगी। और उस तरह से ना सिर्फ कोडरमा में पर लातेहार में भी बाल विवाह के इस काम को पीएलए बैठक के द्वारा रोका गया। उसी तरह से मातृ मृत्यु में भी कमी आई क्योंकि महिलाएं अब अस्पताल जाने के लिए एक दूसरे को सहयोग कर रही हैं। शिशु मृत्यु में भी या न्यूट्रिशनल लेवल में भी कमी आई क्योंकि पहले होता था कि सहिया अकेले घर घर जा कर के धात्री माताओं को बोलती थी कि तुम बच्चे को दूध पिलाओ, और केवल जो कहती थी कि जन्म के तुरंत बाद स्तनपान माँ का कराना जरूरी है, 6 माह तक सिर्फ स्तनपान और 6 से 2 साल तक स्तनपान के साथ ऊपरी आहार। तो इन सब बातों को सहिया पहले अकेले बोलती थी, अब पीएलए बैठक के माध्यम से जो विभिन्न महिलाएं हैं वो सीख करके माताओं को प्रेरित कर रही हैं कि तुम भी साथ में आगे बढ़ो। और पीएलए बैठक के द्वारा एक सामुदायिक सोच और सहभागी क्रियान्वयन के द्वारा मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए महिलाएं अब अस्पतालों में जा रही हैं, एम्स से चेकअप करा रही हैं, बच्चों का टीकाकरण हो रहा है, किशोर किशोरियां अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो रही हैं, और इस तरह से विभिन्न जो सामुदायिक स्वास्थ्य की गतिविधियां हैं उसमें सुधार हो रहा है।
0: अकय मिंज जी, आज आपने हमारे श्रोताओं के साथ सामुदायिक स्तर पर होने वाली पीएलए बैठकों के बारे में जो इतनी उपयोगी जानकारियाँ दी, हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोता उसका लाभ जरूर उठाएंगे। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पूर्णिमा बहन, ये बहुत अच्छा रहा कि आज हमारे श्रोता भाई बहन को पीएलए की बैठक के बारे में अकय मिंजे से बहुत उपयोगी जानकारी मिल गई, जिससे वे इस बैठक का महत्व समझ पाएंगे।
0: हाँ चंपा मुनि दीदी, एक और बढ़िया बात ये है कि समुदाय के बीच पीएलए की बैठक कराने पर सहिया बहनों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 150 रुपए मिलता है, जिससे उनको आर्थिक मजबूती भी मिलती है और उत्साह भी बढ़ता है।
2: बिल्कुल पूर्णिमा बहन, प्रोत्साहन भी एक तरह का सम्मान होता है जिससे काम में लगन बढ़ती है।
0: अब श्रोताओं को यह जरूरी बात बता दें कि आप जन स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में किसी भी तरह की जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर फोन कर सकते हैं।
2: प्यारे श्रोता भाई बहन, अब समय का इशारा है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत।
0: जोहार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार है।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सहिया, ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज एवं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम रजनीगंधा बस थोड़ी ही देर में।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से

साथिया फिल्म से आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत साधना सरगम मुर्तुजा एवं कादिर के स्वर में, शब्द रचना गुलजार की एवं संगीत एआर रहमान का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म गुलाम से।

समीर का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे। कुमार शानू एवं मलका याग्निक के सुरों में संगीत जतिन ललित का एवं फिल्म का नाम था गुलाम। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म हम दिल दे चुके सनम से।

हम दिल दे चुके सनम, इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद सलामत एवं डोमिनिक सेरजो के स्वर में, शब्द रचना महबूब की एवं संगीत इस्माइल दरबार का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म जोड़ी ब्रेकर्स से।

0: ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म जोड़ी ब्रेकर से शफाकत अमानत अली एवं क्लिंटो सिरजो के स्वर में, शब्द रचना इरशाद कामिल की एवं संगीत सलमान सुलेमान का। और इसी गीत के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन चौधरी। आज हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन, महत्वपूर्ण चर्चाएं और प्रमुख निष्कर्ष पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर एम्बेसडर जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। सर, शुरुआत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक है, मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, तो इसके बारे में बताइए।
2: प्रधानमंत्री की अगर पांच देशों की यात्रा न होती तो भी प्रधानमंत्री इन देशों के विदेश मंत्रियों से मिलते हैं, क्योंकि ब्रिक्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इसके फाउंडर मेंबर्स में से हैं और अगर इसकी मीटिंग हो रही है जो कि आगे कल्मिनेट होगी समिट में, शीर्ष सम्मेलन में सितंबर में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, तो ये जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री इन देशों के विदेश मंत्रियों से मिलें, उनकी बात उनका रुख समझें और अपनी भारत की बात बताएं। तो ये जरूरी हो गया था, इसलिए जाने से पहले ही प्रधानमंत्री इन देशों के विदेश मंत्रियों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री ईरान से भी मिले, अराक्ची, उनसे ऐसी क्या बात हुई है, क्योंकि अभी युद्ध, अभी सीज फायर हुआ है और ब्लॉकेड भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, जहाँ पे तेल का आना जाना रहता है।
2: देखिए, हमारी सबसे बड़ी मांग जो होती है, हमारी सबसे बड़ी डिमांड या सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी का होता है क्रूड ऑयल, और वो हम 80% से ज्यादा मध्य पूर्व से लेते हैं, पश्चिम एशिया भी जिसको कहते हैं। अब इस क्षेत्र में अगर हॉर्मुज के उस पे स्ट्रेट पे पाबंदी लग जाती है, आवागमन पे रोक लग जाती है, तो हमारी ऊर्जा जरूरतें इससे बड़ी बुरी तरह प्रभावित होती है और प्रभावित हो रही। देख रही है आपने, तेल के दाम बढ़ा दिए गए, तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे टैंकर्स, भारतीय ध्वजवाहक टैंकर्स जो अगर वहां से आ रहे हो तेल लेकर के या एलएनजी लेकर के या और ऊर्जा के स्रोत लेकर के, तो उनको आने दी जाए, उनको लिए कोई परेशानी का सबब न हो। और इसलिए हम ईरान से उम्मीद करते हैं या अपेक्षा करते हैं कि ईरान एक दोस्त के तौर पे, एक मित्र राष्ट्र के तौर पे हमारे तेल वाहक टैंकर्स को आने देगा। और इसलिए आपने देखा कि शुरुआत में भी जब ये ईरान ने वहां पे माइन बिछाई, तो भी उसके बाद भी ईरान ने कहा कि हाँ, हम कुछ भारतीय, कुछ देशों के टैंकर्स को आने देंगे, उसमें भारत भी था। बीच में अब जब अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी, घेराबंदी कर दी, तब भी कुछ परेशानी हुई, लेकिन हमारी यही कोशिश थी। इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात तो जरूर कही होगी और जब मिले होंगे तो ये बात भी कही होगी उन्होंने कि ईरान और

0: यूएस के बीच में जो संघर्ष है उसका अंत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे विश्व पे और ग्लोबल साउथ पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, छोटे देशों पे ज्यादा पड़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री सर्गेय लावरोव से भी मिले हैं। रशिया के साथ हमेशा हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, डिफेंस में, ऑयल इंपोर्ट्स में भी। यहां पे उन्होंने बात की है कि हम गैस भी आपको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का क्या कहना है और हमारे प्रधानमंत्री इसको किस तरीके से देख रहे हैं?
0: देखिए, रूस के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध रहे हैं, और जब हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी थी तो पाकिस्तान तो अमेरिका ने हमें सशर्त देने के लिए कहा था गेहूं, लेकिन रूस ने उस वक्त कहा था कि आप हमें बस पोर्ट बताइए किस पोर्ट पे और कितना चाहिए, प्राइस और सारी मॉडलिटीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारे बहुत पुराने संबंध 70 साल 75 साल से ज्यादा के संबंध रहे हैं। आपने जैसे कहा कि हम डिफेंस इक्विपमेंट्स लेते हैं, हम क्रूड ऑयल लेते हैं, हम फर्टिलाइजर लेते हैं, LNG भी हमें चाहिए क्योंकि हमारी मध्य पूर्व की सप्लाई कभी कभी डिसरप्ट हो जा रही है, तो इसलिए LNG भी हमें चाहिए होगी। तो हमारे ख्याल से तो हम यही करेंगे कि अमेरिकी सैंक्शन या अमेरिकी धमकियों के बावजूद भी हम सप्लाई रूस से लेते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय हित में है और जितनी हमें जरूरत है, और रूस हमें अनवरत सप्लाई देता है और वो भी हमें अच्छे टर्म्स पे सप्लाई देता है। तो इसलिए हमें रूस से अभी जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाते हैं निकोबार की खाड़ी में, जब तक हमारे ऑयल की दोहन की प्रक्रिया चालू नहीं हो जाती, तब तक तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है, अपरिहार्य हो जाता है कि हम रूस से तेल लेते रहें।
1: प्रधानमंत्री ब्राजील के विदेश मंत्री से भी मिले हैं वियरा, ब्राजील की क्या भूमिका है ब्रिक्स में?
0: देखिए, ब्राजील एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हो जाता है, ये संस्थापक सदस्यों में से है। पांच जो संस्थापक सदस्य थे, भारत, रूस, चीन, ब्राजील और उसके बाद में साउथ अफ्रीका बना, तो ब्राजील का बहुत महत्व इसलिए भी हो जाता है कि ब्राजील ही एक ऐसा देश है जो किसी भी देश की दादागिरी के खिलाफ सबसे पहले खड़ा हो। दूसरी चीज ये है कि ब्राजील ही देखिए, जब डीडॉलराइजेशन की बात हुई ब्रिक्स में, ब्राजील ने कहा कि ठीक है, हम अपनी अपनी करेंसी में हम व्यापार करेंगे, और ब्राजील वैसे भी एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशंस तो हमारे बहुत अच्छे हैं, शुरू से ही ब्राजील से बहुत अच्छे हैं, और हमारे साथ ब्राजील हर इंटरनेशनल रीजनल प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहा है। ट्रेड रिलेशंस भी हमें बढ़ाने होंगे क्योंकि कई चीजों में ब्राजील सबसे आगे है, और इसलिए अभी से अगर हम ब्राजील का साथ कंटिन्यू करते हैं ट्रेड रिलेशंस में, तो आने वाले वक्त में हम दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद ये बात साबित होगी, इसलिए जरूरी है कि हम ब्राजील का साथ देते रहें।
1: अब हम सुनते हैं सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुधाकर दलेला प्रेस स्टेटमेंट।
2: ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टूडे फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग डिस्कशन टुक प्लेस अराउंड थ्री ब्रॉडर थीम्स, ग्लोबल एंड रीजनल मैटर्स, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस एंड मल्टीलैटरल सिस्टम एंड ब्रिक्स एट 20 अंडर द थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। दीज थ्री सेशंस अलाउड मेंबर्स टू एक्सचेंज व्यूज एंड शेयर पर्सपेक्टिव्स ऑन मेन पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, पोलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एंड कल्चरल एंड पीपल टू पीपल रिलेशंस। द सेशन ऑन द थीम BRICS at 20 allowed members to reflect on the evolution of the grouping in the last two decades and its growing relevance in addressing contemporary global challenges. Ministers also reflected on the nature of the cooperation under BRICS during India's chairship this year under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, as well as the future direction of the grouping.
1: BRICS ke theme jo hai usme kaha gaya hai ki hum koshish karenge resilience, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी, और उन्होंने बात की है कि रिफॉर्म्स, ग्लोबल गवर्नेंस और मल्टीलैटरल सिस्टम। मल्टीलैटरलिज्म पे काफी चर्चा हुई है, इसके बारे में बताइए।
0: देखिए, शुरू में दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो खेमे थे, कम्युनिस्ट खेमा और अमेरिका का खेमा, उसके बाद USSR के विघटन के बाद सिर्फ अमेरिका का खेमा बचा, और वो भी पूर्व की ओर बढ़ता गया, यहाँ तक कि यूक्रेन पहुंच गया, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, 3 साल से ऊपर यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध हो रहा है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि ऐसा सिस्टम जो कि पहले सिर्फ कुछ मुट्ठी भर देशों के फायदे के लिए बनाया गया था, एक आवरण बना करके, भले ये कहा गया था कि ये दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा और पोस्ट वर्ल्ड वार बड़ा अच्छा होगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये सिद्ध हो गया कि साहब ये सिस्टम चल नहीं सकता, खासतौर से इसलिए कि छोटे छोटे देशों या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन सबके लिए बहुत परेशानी का सबब हो जाएगा। तो ये

0: माना गया कि इस सिस्टम को बदलना चाहिए और अब मल्टीलेटरलिज्म मतलब कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के चलना, और वो तभी संभव हो सकता है जब आप उन देशों के बीच में एक कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढें जो उनके नेशनल ऑब्जेक्टिव से, नेशनल इंटरेस्ट से मेल खाता हो, वहां से हम शुरू करें और तब उस पर हम वो न्यू रहेगी और उस पर एक हम बिल्डिंग बनाएं, वो ज्यादा सस्टेनेबल होगी। अब जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कहा ब्रिक्स का इनोवेशन रेजिलियंस की आजकल बहुत बात हो रही है, इनोवेशन की ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन जो हमें चाहिए अभी ब्रिक्स कंट्रीज को क्या बल्कि जो ग्लोबल साउथ को, वो इनोवेशन ज्यादा जरूरी है। जो हमारे संसाधन है उसका प्रयोग करते हुए हमें कैसे दूसरे उपाय ढूंढने चाहिए जिनसे कि हम ज्यादा एनर्जी, ज्यादा मिनरल्स का दोहन कर सकें। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम मल्टीलेटरलिज्म, हम बहुदेशवादी या बहुक्षेत्रवादिता में विश्वास रखें।
1: अब हम सुनते हैं सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुधाकर दलेला प्रेस स्टेटमेंट।
2: The outcome documents cover common position on BRICS cooperation in areas such as global and regional matters, reform of the institution of global governance, including reforms of the UN Security Council, international financial institutions, fight against terrorism, trade, industry, finance, artificial intelligence, energy security, climate, biodiversity and sustainability, health and enhancing agriculture productivity and ensuring global food security and nutrition, supply chain resilience, disaster reduction, and of course people-to-people exchanges, which is also a very key priority for our chairship. As you are all aware, the world today is navigating a period of unprecedented geopolitical and economic uncertainty. Ongoing conflicts, economic volatility, climate-related risks, advancement in technology and associated disruption, supply chain challenges and disruptions are reshaping the global landscape. All these matters are also interlinked and have consequences for BRICS members, and I would say also for countries in the global south. There is a common view that BRICS must work purposefully in seeking common grounds for achieving practical, actionable, inclusive and development-oriented solutions through sustained engagement.
1: ये भी मांग रही है कि यूएन के प्रक्रिया में सुधार आना चाहिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबरशिप है, परमानेंट मेंबरशिप है, उनके पास वीटो पावर है, तो इसको लेके ऐसी क्या चर्चा हुई है इस बैठक में?
0: देखिए, इस बैठक में ये चर्चा हुई है कि इसको ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ को और ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस को, और उसके लिए जरूरी है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। दुर्भाग्य से पिछले शताब्दी से ही ये बात होती रही है, लेकिन देशों के अपने राष्ट्रीय हित एक दूसरे से इस तरह टकराते रहे हैं कि देश इस मामले में कहीं भी कॉन्सेंसस या सर्वसम्मति नहीं स्थापित कर पाए। वीटो सिस्टम जो है वो एक बीमारी है, मैं कहूंगा। आपने आज की दुनिया में जहां लोकतंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है, वहां पर आपने एक तरह से डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दिया है। अब होता क्या है कि जिस देश के खिलाफ कोई प्रस्ताव होता है, अब वो देश तो वीटो करेगा ही, इसलिए वहां पर वो प्रस्ताव टूट जाता, तो ऐसे में तो कहीं भी आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। इसलिए ये वीटो पावर को खत्म करना या इसको और डाइल्यूट करना, प्रतिनिधित्व पूरक करना, प्रतिनिधित्व परक करना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर यही कहा गया कि रिप्रेजेंटेटिव की सुरक्षा परिषद में बहुत प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, उनको भी पावर दी जाए, या मतलब जो वीटो पावर जो 5 कंट्रीज हैं और जो बाकी हैं उनके बीच में शक्ति का असंतुलन वहां सुरक्षा परिषद में कम किया जाए, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। और देखिए, लेकिन इसमें कहां तक प्रगति हो पाती है कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात कई वर्षों से चल रही है।
1: जियो पॉलिटिक्स का कोई समाधान है ब्रिक्स के पास?
0: देखिए, मेरे ख्याल से तो जियोपॉलिटिक्स का समाधान न संयुक्त राष्ट्र संघ के पास है और न ब्रिक्स के पास है, इसलिए कि जब तक जियोपॉलिटिक्स में देश अपने राष्ट्रीय हितों के कुछ अंशों को छोड़ना न चाहेंगे या छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, और तब तक यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में इसी तरह से लड़ाइयां होती रहेंगी कि एक दूसरे के साथ नेशनल इंटरेस्ट, एक का नेशनल इंटरेस्ट दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट में दरारें डालता है, तो ऐसे में तो ये खाई पटने के बजाय बढ़ती बढ़ती जाएगी। इसलिए समाधान ये है कि अगर देश बैठ के ये सोचें कि हमें ठीक है अपने अपने विकास के लिए दूसरे के विकास को अवरुद्ध नहीं करना होगा, तभी इसमें कुछ काम निकल सकता है।
1: अभी समस्या जो है वो है कि तेल का आना जाना मुश्किल हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ब्रिक्स क्या कर सकता है इसमें?
0: देखिए, यहाँ पे मेरे ख्याल से ईरान को ब्रिक्स ये कह सकता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट खोली जाए, क्योंकि विश्व में जो भी मैन मेड जो भी मानव निर्मित स्ट्रेट हैं, जलडमरू मध्य है, वो उस पर तो उन देशों का कब्जा हो सकता है या कंट्रोल हो सकता है जो उसके आसपास हो, जैसे स्वेज इजिप्ट का या जैसे पनामा का था चीन।
1: ये सारे मैन मेड
0: है, लेकिन जो नेचुरल है वो बाबल अंदब है या हुरमुज है, मलाका है, पाक स्ट्रेट है, ये जो है ये मैन मेड नहीं है, नेचुरल है, और इन प्राकृतिक जल मार्गों पर किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से एक क्षत्र राज्य या प्रभुत्व नहीं हो सकता। तो इस दिशा में ईरान को ये कहा जाएगा, क्योंकि अगर हम ईरान की ये बात मान लेते हैं तो ये एक नई समस्या का जन्म देगा कि जो और बाकी स्टेट्स मैंने कहा है नेचुरल, उसमें वहां के देश उन पे कब्जा करें और उन पे अपना अधिकार जमाने की बात करेंगे, और ये एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि हर कुछ किलोमीटर पे आप टोल टैक्स देना पड़ेगा कंसर्न देश को, तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोशिश यही करनी होगी ब्रिक्स को कि ये कहें कि ईरान वहां से अपना एकाधिकार न बताए, थोड़ा कंट्रोल रखे, ठीक है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और साथ ही यूएस को ये कहना पड़ेगा कि वहां पे नाकाबंदी न की जाए क्योंकि वो मैनमेड नहीं है।
1: जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज आए आकाशवाणी में और आपने बड़े चर्चा की। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन, महत्वपूर्ण चर्चाएं और प्रमुख निष्कर्ष, शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, समाचार संध्या बस थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विजन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच

0: कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आबूधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
2: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ पक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनीतिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
4: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: परीक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉन्ग के लिए नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इन इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मॉनसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया। देश के की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक

0: फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 97 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा बाद नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. Breaks Foreign Minister's call action on peace and climate. Meet UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends conditions in Jharkhand. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals. India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
3: Hormuz to free, open, or safe, but I

0: 15 kilogram. In Thailand Open Badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semifinals in Bangkok. They defeated Japanese pair of in straight games in the quarterfinal match today. However, PV Sindhu and Lakshya Sen lost the singles quarterfinal matches. In IPL cricket, Chennai Super Kings were 153 for 5 in 18 overs against Lucknow Super Giants in Lucknow when reports last came in. Earlier, Lucknow Super Giants won the toss and opted to field. The sacred Pipravar relics of Lord Buddha were accorded an emotional farewell at the Leh airport today after the conclusion of a 14-day-long grand exposition in Ladakh. Over 1 lakh devotees paid obeisance to the holy relics in territory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुर्मुज के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहीं भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने कयाम अमन और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 का सवालिया पर्चा लीक होने के केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी कर आबरूरेजी और कत्ल केस में 3 आईपीएस अफसरों को मौतल कर दिया है। मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। मकाऊ में सांडा वर्ल्ड कप में भारतीय वुशु टीम ने सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। और ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 2 और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने आबनाए हुर्मुज के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहीं भारत की हिमायत का इरादा किया है और आलमी सतह पर तवानाई और खुराक की यकीनी फराहमी के साथ साथ इलाकाई इस्तेहकाम के लिए आबनाए हुर्मुज की अहमियत को उजागर किया है। अबूजाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आला सतह की बातचीत के बाद वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमारात पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की।
2: और सेल्फ बढ़ाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। बदल भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
1: 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज सुबह मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे और वहां के आवाम के साथ भारत की यागानगत का इरादा किया। बातचीत के बाद जनाब मोदी ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं के तहीं तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि वो तवानाई, सरमायाकारी और सप्लाई निजाम समेत अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाए जाने के मुतमन्नी हैं। तफसील हमारे नामनिगार से।
3: मुज़ाकरात के नतीजे में कई मुआहदे तय पाए। इन तवानाई के शोबे में भारत के स्ट्रेटजिक पेट्रोल معاہدہ شامل ہے. اس معاہدے کا مقصد بھارت کے اسٹریٹجک پیٹرولیم کے ذخائر میں یو اے ای کی شراکت داری کو بڑھا کر 30 ملین بیرل تک کرنا شامل ہے. اس کے ساتھ ہی انڈین آئل کارپوریشن

0: और एडीएनओसी के दरमियान एक तवील मुद्दती एलपीजी सप्लाई का दिफाई शराकतदारी के लिए सलामती, साइबर दिफा और मालूमात का तबादला शामिल है। इसके अलावा भारत में यूएई के जरिए 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी का भी ऐलान किया गया। दोनों ममालिक ने वाडीनार में जहाजों की मरम्मत के लिए क्लस्टर कायम करने और बहरी शोबे में हुनरमंदी के फरोग के लिए एक फ्रेमवर्क पर भी दस्तखत किए। इसके साथ ही भारत के सीडीएसी और यूएई के G24 के दरमियान 8 एक्जाफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर को कायम करने पर भी समझौता हुआ। अबुजाबी से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचने पर सदारती हवाई अड्डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बाजाबता खैर मकदम किया गया। इस मौके पर सदर अन्नयान बजाते खुद मौजूद थे। जनाब मोदी का तैयारा जब AF-16 लड़ाका जेट तैयारों ने इसे अपनी हिफाजत में ले लिया, जिससे प्रोटोकॉल के अहम जज्बे का इजहार होता। दूसरे मरहले में नेदरलैंड्स रवाना हो गए हैं। जनाब मोदी 6 दिन के अपने दौरे में इसके बाद स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय सफीर दीपक मित्तल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अबू जाबी के दौरे में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तवानाई, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और तिजारत के शोबे में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कई कलीदी फैसले किए हैं। इस दौरे में अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक सेरेब्रास चिप पेश की। जदीद तर्ज के इन चिप्स से भारत के आइंदा कायम होने वाले 8 एक्जाफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग मराकज को तकवियत मिलेगी। इंडिया AI मिशन को नुमाया अंदाज से फरोग हासिल होगा और मुल्क के नए सिलसिले की मसनूई जहानत की सलाहियत मुस्तहकम हो सकेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद को जल्द भारत का दौरा करने के लिए मदऊ किया। ब्रिक्स के वज़ीरे ख़ारिजा ने आलमी हुक्मरानी के अमल में इस्लाहात करने और इसे मुस्तहकम बनाने के तहत अपने अहद को दोहराया है। ब्रिक्स वज़ीरे ख़ारिजा ने अपनी मीटिंग के बाद एक दस्तावेज में ज्यादा मसावियाना, जमहूरी और जवाबदेह बैनुल अक़वामी और कसीर रुखी निज़ाम की जरूरत पर जोर दिया। इन वजीरों ने आलमी सतह पर बढ़ती हुई गिरोहबंदी और बेएतमादी का नोटिस लिया और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को मुस्तहकम बनाने की खातिर इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया। इन वजीरों ने सिफारती और सियासी वसीलों के तवसुत से आलमी चैलेंजों से निमटने की जरूरत को उजागर किया ताकि महाज आराई के खतरात को कम किया जा सके। साथ ही उन्होंने बुनियादी वजूहात पर तवज्जो देकर टकराव की रोकथाम की अहमियत पर भी जोर दिया। इन वज़रा खारजा ने मुश्तरका कुर्रे अर्ज और आबो हवा की तब्दीली जैसे मुस्तकबिल को लाहक चैलेंजों से निमटने के लिए कसीर रुखे निज़ाम के तहत अपने अहद को उजागर किया। ब्रिक्स के वजीरों ने आबो हवा की तब्दीली और कुदरती आफात के खतरात से निमटने के लिए बुनियादी ढांचे के निजाम को मजीद मुस्तहकम बनाए जाने की अहमियत भी उजागर की। उन्होंने इस बात की सताइश की कि भारत की सदारत में ब्रिक्स लगातार कोशिशों और सरगर्मियों के जरिए तआवुन बढ़ाने के लिए ज्यादा बड़ा रोल अदा करेगा, जिसमें इंसानियत और आवाम को मरकजी हैसियत दी गई है। ब्रिक्स वज़रा खारजा की मीटिंग के बाद नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए वजारत खारजा में इकतसादी ताल्लुकात शोबे के सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने कहा कि सभी ब्रिक्स अराकीन और साझेदार मुल्कों ने मजबूती, इश्तराक और पायदार निजाम की तामीर के मौजू के तहत भारत की सदारत के तहत तरजीहात की काफी सताइश की और अपनी हिमायत का इजहार किया। इस दौरान वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने कहा है कि भारत इस्लाहशुदा और मौसर कसीर जहती के हदफ की जानब पेशकदमी में अपने सभी शराकतदारों के साथ काम करने के तहत अहद बस्ता है। ब्रिक्स वज़रा खारजा मीटिंग 2026 के दूसरे दिन आज नई दिल्ली में एक आम इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने

और क्यूबा के वज़राए खारजा से भी मुलाकात की। ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अराकची ने कहा है कि भारत मगरबी एशिया में कायम अमन के लिए और ज्यादा बड़ा रोल अदा कर सकता है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब अराकची ने कहा कि ईरान से मुतालिक किसी भी मामले का कोई फौजी हल नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान सभी बहरी जहाजों को अपनाए हुरमुज से होकर गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। जनाब अराकची ने कहा कि अपनाए हुरमुज की सूरत हाल अब बहुत पेचीदा हो गई है। उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया बहरान का मुजाकरात के जरिए तस्फिया करने के सिवा कोई दूसरा हल नहीं हो सकता। ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि ईरान भारत के अब अब्बास अराकची

कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के दो, चांदी का एक और कांसे के दो तमगे जीते हैं। भारतीय खवातीन एथलीट्स के 6 रुकनी दस्ते ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के खवातीन के 75 किलोग्राम जुमरे में बीएसएफ की खिलाड़ी शिवानी ने मुतासिर कुन महारत और खुद एतमादी का मुजाहरा करते हुए अपनी रूसी हरीफ को हराकर सोने का तमगा जीता। दूसरी खातून भारत के लिए दूसरा सोने का तमगा जीता है। इधर 48 किलोग्राम जुमरे में भारतीय फिजाइया के खिलाड़ी कुशल कुमार ने चीनी हरीफ को शिकस्त देकर चांदी का तमगा अपने नाम किया। उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के दो और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। भारत को कांसे के 8 तमगे भी मिले हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुरमुज़ के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहत भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने क़याम अमन और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में कार्रवाई पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 का सवालनामा लीक होने के केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी का आबरू रेजी और कत्ल केस में 3 आईपीएस अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। और मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Semiconductors, AI, resilient supply chains, defense tech, startup collaborations, these are all critical now for India's external partnerships. So now from a traditional focus on political solidarity to a far more transactional and capability-oriented engagement with major economies is what is defining India's European outreach. And I think that is what we are going to see in country after country the Prime Minister goes, whether it is Netherlands, whether then after Sweden, Norway, Italy. I think this is how we are going to see the outcome from that. We should assess the outcome from that perspective, that India is no longer content with symbolic diplomacy. It is seeking tangible gains, whether it's technology access, energy resilience, investment flows, and a strategic influence. And at a time when you have geopolitical fragmentation, India, what it is trying to do is basically leverage its growing economic weight to emerge as a pivotal actor in these two critical geographies where India has traditionally not been that important. But today, certainly, India's economic weight is giving it such a heft that it can have a bilateral partnership with the UAE and it can have a bilateral engagement with the Nordics. So we will have the India-Nordic summit happen next week. So it is, I think, in that sense, a transformative moment in India's ties with both West Asia and Europe.
1: Before we proceed further into the discussion, focusing on the second leg of the Prime Minister's visit, which is to the Netherlands, here's an interview of the Indian Ambassador to the Netherlands, Kumar Tuhin, who described the Prime Minister's visit to the country as a significant one while speaking exclusively to Akashvani correspondent Sushrut Sharma. आइए सुनते हैं इसके प्रमुख अंश.
2: प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर नीदरलैंड आ रहे हैं. इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारत के राजदूत श्री कुमार तुहिन सर. सर, कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट?
3: यह यात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हमारे संबंध नीदरलैंड से बहुत मजबूत हैं. लेकिन यह एक ऐसा मौका होगा जबकि दोनों देशों के नेता नीदरलैंड में नई सरकार बनने के बाद पहली बार सामने सामने मिल रहे होंगे. तो इस मौके पर आज तक जो हमारी प्रगति हुई है उसको रिव्यू करना, हमारी जो प्रोग्रेस है उनको कंसोलिडेट करना और आगे एक नई दिशा देने का एक बहुत बढ़िया मौका है.
2: सर, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पे दोनों देश आपसी सहयोग के मुद्दों पे बात करेंगे और उनको और एक्सप्लोर करेंगे?
3: पहले से जो हमारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, और जो पानी का क्षेत्र है और कृषि का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में तो पहले से ही बहुत कुछ काम हो रहा है. हम ये आशा करते हैं कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को मौका मिलेगा कि जो नए इमर्जिंग जो कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है या क्लीन एनर्जी का क्षेत्र है, मैरिटाइम कोऑपरेशन का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी हमारी आज की प्रगति को रिव्यू करना और हमें फिर एक नई दिशा और नए निर्देश देने का एक अवसर.
2: सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नीदरलैंड्स एक पायनियर है, उस क्षेत्र में हमारे यहाँ पे R&D के फील्ड में कुछ भारत में भी हो रहा है, तो क्या आगे हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी कुछ संभावनाएं एक्सप्लोर करते हैं?
3: जी, नीदरलैंड्स विश्व की सबसे प्रख्यात सेमीकंडक्टर कंपनियों की जगह है और पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश की जो हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को भी बढ़ाने का काफी बड़ा काम है. तो इसलिए ये कम्प्लीमेंट्री एक तरह के हम लोगों का स्ट्रेंथ है और हमारी भूमिकाएं हैं, जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि डच कंपनियां जो कि अभी भारत में मौजूद हैं लेकिन उनकी और बढ़ने की अभी आशा है और पोटेंशियल है, उसको हम लोग एक नए स्तर पर लेके जा पाएंगे.
2: ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी आजकल बहुत बात हो रही है, नीदरलैंड्स में एक पायनियर है लेकिन इंडिया भी इसमें एक उभरता हुआ लीडर नजर आ रहा है. सर, उस क्षेत्र में से कौन से फील्ड्स हैं जहाँ पे ये हमको बहुत बेनिफिट करेगा? हम सुन रहे हैं कि कुछ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में भी ग्रीन हाइड्रोजन का एक रोल है अदर देन एनर्जी सिक्योरिटी.
3: जी, सो नीदरलैंड्स क्लाइमेट के एरिया में, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के इलाके में काफी बढ़िया करते हैं. हमारे देश में भी आपको पता है कि क्लाइमेट, वातावरण और साथ साथ कृषि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं. तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो डच कंपनियों के पास जो उनकी जो तकनीक है, उनके पास जो आधुनिक तकनीक है, उनका जो ज्ञान है, उनको हम लोग भारतीय कंपनियों के साथ जोड़ सकें, यहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को हम भारत के जो शैक्षणिक संस्थान है, हमारे जो अनुसंधान संस्थान, उनसे जोड़ सकें, ताकि हम दोनों देशों के बीच में एक म्यूचुअली जो बेनिफिशियल एक तरह का जो रिलेशन है उसको हम लोग ले पाए.
2: सर, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल एनर्जी को भी नीदरलैंड जाना जाता है, उस क्षेत्र में ऐसे कुछ उदाहरण जैसे इंडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ को शुरुआत किया है, उस तरह के उदाहरण यहाँ से जो हम तब तक शोकेस कर सकते हैं?
3: प्रधानमंत्री जी के जो मिशन लाइफ है उसके संबंध में मैं कहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि हम लोग उसको देख सकते हैं और बहुत तरीके से हम लोग उसको अपने आप ही ला सकते हैं. जैसे अगर आपको उदाहरण साइकिल, तो साइकिल का इस्तेमाल यहाँ पे इतना बढ़िया है, इतना ज्यादा है कि आप

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं सुनते हैं कुछ प्यार भरे गीत कार्यक्रम सुनहरी यादों के साथ। पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म नूरी से।

लता मंगेशकर के स्वर में आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत फिल्म नूरी से। शब्द रचना नश्क लैलपुरी की एवं संगीत खयाम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म अनुराग से।

अनुराग फिल्म से आप सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में, शब्द रचना आनंद बख्शी की एवं संगीत एस डी वर्मन का। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म नसीब से।

लता मंगेशकर के स्वर में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत फिल्म नसीब से, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरी यादें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से।

शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में, फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से, संगीत शंकर जयकिशन का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म तेरे घर के सामने से, स्वर मोहम्मद रफी का।

हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, फिल्म तेरे घर के सामने से, संगीत एस डी बर्मन का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म यादों की बारात से।

आशा भोसले एवं मोहम्मद रफ़ी के सुरों में आप सुन रहे थे ये प्यारा संगीत फिल्म यादों की बारात से। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की एवं संगीत आर डी बर्मन का। और इसी गीत के साथ श्रोताओं कार्यक्रम सुनहरी यादें अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सारंगी पर राग पुरिया कल्याण। विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। कलाकार है उस्ताद शब्बीर शबरी खान।

अभी आप सुन रहे थे सारंगी पर राग पूरिया कल्याण, विलंबित रचना एक ताल में थी और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी। और आइए अब सुनते हैं सारंगी पर राग मारू विहाग, विलंबित रचना एक ताल व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।

0: अभी आप सुन रहे थे सारंगी पर राग मारू विहाग, विलंबित रचना एक ताल में व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी। कलाकार थे उस्ताद शब्बीर खान। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह आयोजन यही संपन्न होता है। आइए सुनते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत समाधान के लिए और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री ओपन और सेल्फ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में तीन आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है।

0: personalities like Hema Malini, Harsimrat, Kumar Badal and Iqra Chaudhary. In IPL cricket, chasing a target of 188 runs set by Chennai Super Kings, Lucknow Super Giants were 164 for 3 in 16 overs at Ighana Cricket Stadium, Lucknow, when reports last came in. Chennai Super Kings scored 187 for 5 in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 504.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर हमारी आज की मीडियम वेव की समा अब यहीं समाप्त होती है, लेकिन सुबह 6 बजे तक FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे दिल्ली FM गोल्ड के कार्यक्रमों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। प्रातः 5:55 पर पुनः उपस्थित होंगे प्रातःकालीन कार्यक्रमों के साथ। अब हमें दीजिए आज्ञा, शुभरात्रि, जय हिंद।